0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: अर्रहमान,
0: वो जो निहायत मेहरबान है।
1: अल्लमल कुरआन,
0: उसी ने कुरान की तालीम फरमाई।
1: खलकल इंसान,
0: उसी ने इंसान को पैदा किया।
1: अल्लमहुल बयान,
0: उसी ने उसको बोलना सिखाया।
1: अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान,
0: सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं।
1: वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान,
0: और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: मन।
1: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं।

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस वार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ऐ करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: 101 FM.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
5: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101, tune in to the one above.
6: Back to back, back to back, hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned, stay tuned.

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी हैं कुशादा दामन दिल और जबीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुसरत बलोच।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

101 FM。

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: shit sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: You're listening to FM 101, अबले बले ओशा ओशा।

0: चाय बने बस कपाल दाने दार।
1: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
2: सोना यूरिया ग्रैनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मेयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मत

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn.
2: I bane bas tapal danedar.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार
3: सोना से है

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: सोना से
2: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: देर

0: दोबारा से रीच फातिमा की तरफ और उनसे पूछेंगे कि ये हमें हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में क्या क्या बताना चाहती हैं।
1: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: There's music.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो FM 101 से मैं हूं आपकी होस्ट हमना सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं जश्न आज़ादी की खसूसी ट्रांसमिशन हम एक हैं। लिसनर्स, ये गीत सुनने से पहले हम अरीज से बात कर रहे थे और अरीज हमें बताने वाली थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो क्योंकि वक्त की किल्लत है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली अरीज के पास आएंगे। जी अरीज, प्लीज़ हमें कुछ डिटेल्स बताइए, हमें कुछ एंटरटेन कीजिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताइए। जी
1: अच्छा, डिटेल्स आपने बात की, डिटेल्स से पहले मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो इस खित्ते की तारीख से शुरू होती है और जो हमारी इंडस वैली है, हमारी तहजीब वहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, कहीं 5-6 हज़ार साल पीछे जाना पड़ेगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो हमारी इंडस रिवर के साथ की तहजीब थी सिंध में और पंजाब के भी कुछ इलाकों में है, तो मोहनजोदड़ो का नाम आपने बचपन में सुना ही होगा,
0: वो सोशल स्टडीज की किताबों में तो मैंने सुना
1: बिल्कुल
0: था।
1: तो मोहनजोदड़ो जो है वो एक्चुअली सिंध में हिस्टोरिकल साइट है और वो उसको यूनेस्को ने अप्रूव किया है। वो बेसिकली इंडस रिवर
0: मोहनजोदड़ो के बारे में मुझे एक चीज़ याद है कि उसके स्पेलिंग्स मुझे याद नहीं होते थे।
1: अच्छा, मोहनजोदड़ो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको ना माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है।
0: अच्छा, वो
1: और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे मतलब वो जो टीले हैं और उनका ग्रेवयार्ड की वजह से बेसिकली उसकी वजह से जो है उसको माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। इसके साथ क्योंकि वो इंडस रिवर के अलोंग है तो उनकी जो ड्रेनेज नेटवर्क था वो बहुत शानदार किस्म का था और उसकी बिना पर ही उसको जो है वो एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया और उसकी जो है वो आयरन ग्रिड स्ट्रीट्स उसके अंदर बनाई गई थी। और उसकी सबसे शानदार बात यह है कि उसके अंदर क्योंकि ड्रेनेज नेटवर्क है तो उसमें एक बहुत कदीमी बाथ का सिस्टम था, मतलब वो हमाम जिस तरह शाही हमाम है, बल्कि शाही हमाम तो रह ही गया जब हम बात कर रहे थे अपने उसके बारे में, तो हमाम जो है वो वहाँ पे बनाया गया था। तो उसकी वजह से उसको एक पूरी तहजीब डेवलप हुई और वो लोग तकरीबन कोई 800 साल वहाँ पर रह कर गए।
0: तो
1: और
0: मोहनजोदड़ो की तहजीब जो, क्योंकि ये तो बहुत कदीम तहजीब है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे अपने सोशल स्टडीज़ की किताब से याद आ रहा है कि वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम्स वगैरह थे, वहाँ पर जो रहने सहने के तरीके थे वो बहुत एडवांस्ड थे।
1: जी बिल्कुल,
0: वहाँ पर बहुत से औजारों का जो इस्तेमाल है किया जाता था। तो हाउ डू यू थिंक कि वहाँ पे इतने साल पहले, अब पता नहीं इतने हज़ार साल हैं, इतने सैकड़ों साल हैं, इतने साल पहले वहाँ पर इन सारी टेक्नोलॉजी ही बोलेंगे ना इसको भी,
1: तो ये उस दौर की टेक्नोलॉजी,
0: उस दौर की टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली, तो उस टाइम पे वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी किस तरह से आई और वहाँ पे ये जैसे आपने ड्रेन सिस्टम्स वगैरह की बात की, ये क्या वाकई वहाँ पे मौजूद थी इतनी टेक्नोलॉजी?
1: जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में इंसान जो है ना वो बहुत बड़ा फनकार है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अल्लाह ताला ने जो उसको सलाहियत दी है, जो शऊर दिया है, वो उसको इस्तेमाल किए बगैर, वो उसको अमल में लाए बगैर रह नहीं सकता।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके पास वसाइल मौजूद हों और वो कुछ टेक्नोलॉजिकली काम ना करे। अब हमने देखा कि जो स्टोन एज है, स्टोन एज में हमारे पास जो है वो आग जलाने का की तकनीक आ गई, उसके बाद गाड़ी बनाने की तकनीक आ गई, पहिया ईजाद हुआ, इसके साथ साथ इंसान ने जो है वो एवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन का प्रोसेस सारा चलता रहा। तो ये एडवांसमेंट तो हर दौर में आती रही है। तो हमने ये जो मैं बात कर रही हूँ मोहनजोदड़ो की तहजीब की, ये बेसिकली आगाज है इंसान की तहजीब का, इंसान की टेक्नोलॉजी का, इंसान की ये आगाज है, नुक्ता आगाज जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ से आगे चलते चलते तो ऑब्वियसली हम आज कहाँ पर पहुँच गए हैं। तो
0: अच्छा, अभी आपने दरमियान में बात की, तो शाही हमाम जो यहाँ पे मस्जिद वजीर खान के करीब मौजूद है, क्योंकि ये मुझे बहुत हमेशा से फैसिनेट करता रहा है और मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री मुझे पता है, तो वो मैं आपसे ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें कि ये शाही हमाम जो दिल्ली गेट के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में वज़ीर ख़ान मस्जिद के करीब है, इसका क्या मकसद था और किस किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता था, इसकी हिस्ट्री वगैरह जो इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या है, तो इस बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताइएगा ज़रूर।
1: اچھا شاہی حمام جو ہے وہ بیسیکلی رائل باتھ کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا, اور جو مغل ایرا کے جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ جو ہے وہاں جا کر پراپر جو ہے وہ باتھ لیا کرتے تھے. تو
0: اس کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک چار دیواری ہوتی تھی شہر کے چاروں طرف, اور دروازے تھے, اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنے کے لیے بیابانوں سے ہو کے آنا پڑتا تھا, اور ظاہر ہے جو دلی دروازے کے پاس ہے نا یہ حمام, تو یہ وہی والا ایریا تھا جہاں پہ جو دلی کی طرف سے آتا تھا, دلی کی طرف سے جو راستہ آتا تھا. تو ظاہر ہے جو شخص, جو مسافر یا جو قافلہ دلی سے ٹریول کر کے آ رہا ہے وہ ایک بہت لمبے سفر سے آ رہا ہے, تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے رستے کی جو مٹی اور کیچڑ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے گزر کے آنا ہوتا ہے. تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا کہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ شہر کے اندر داخل ہوئے, اور داخل ہونے سے پہلے آپ کا, آپ نے جو بھی مٹی اور جو بھی جراثیم وغیرہ جو بھی قسم کس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں وہ آپ شہر کے دروازے پہ ہی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس شاہی حمام میں غسل کرتے تھے, اور پھر بادشاہ کے سامنے جو ہے آپ پیش ہوتے تھے. اس بادشاہ کے سامنے اپیئرنس جو تھی وہ اتنی ضروری تھی کہ آپ اس سے پہلے ایک پراپر حمام میں جا کے غسل کر رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں, استراحت جسے بولتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہیں وہ آپ وہاں پہ بادشاہ کے سامنے جو ہے پیش ہوتے ہیں.
1: اچھا وہ اس ٹائم کی ایک لگژری تھی.
0: بالکل,
1: جس طرح آج کل سپا ہوتا ہے یہ اس ٹائم کی لگژری,
0: یہ اس ٹائم کا سپا تھا. بالکل.
1: اچھا یہ بیسیکلی 17ویں صدی میں جو ہے وہ شاہ جہان بادشاہ نے بنوایا تھا, اور اس کو وزیر خان حمام بھی کہا جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ صرف حمام نہیں تھا, یہ وقف ڈپارٹمنٹ کے انڈر بھی آتا تھا, اور یہاں پہ جو چیریٹی ہے وہ بھی کلیکٹ کی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ کیونکہ مسجد بھی ہے تو وہ نماز اور وہ عبادت کا اہتمام بھی ہوتا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ جو اس حمام کی بات ہے وہ نا اس کی ہائیڈرولک انجینئرنگ ہے, کہ اس کے اندر جو پانی کا نظام ہے وہ بہت ایک باریک بینی سے بنایا گیا تھا.
0: وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اس طرح سے کہ فرش کے نیچے سے وہ گرم پانی کے پائپ گزر رہے ہیں تاکہ جو مسافر ہیں وہ فرش پہ پاؤں بھی رکھیں تو ان کو فرش ٹھنڈا نہ لگے.
1: ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اسی نظام کی وجہ سے جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں مسجد وزیر خان کی, تو وہ جو ہے وہ بھی اپنی تاریخی حیثیت رکھتی ہیں.
0: مسجد وزیر خان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم سنیں گے ایک پرومو, اور پرومو کے بعد ہم سنیں گے وائٹل سائنس کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت جو کہ میرا بھی بہت فیوریٹ ہے, دل دل پاکستان. لسنرز اس کو سنیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ٹھیک 10 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا.
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.
3: جشن آزادی کی خصوصی نشریات 1 اگست سے 14 اگست تک FM 101 سے براہ راست. ہم عہد کرتے ہیں
4: میں دل لگا کر پڑھوں گی اور ملک کا نام روشن.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो FM 101 से मैं हूं आपकी होस्ट हमना सिद्दीकी। हमारी ट्रांसमिशन का चूंकि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम अपने इंटर्नी से थोड़ी थोड़ी देर की बात करेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि ये जश्न आज़ादी के हवाले से जो हमारी ट्रांसमिशन चल रही है ये इसका हिस्सा रहीं, यौम आज़ादी के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से आप अपनी कौम की यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी। जी राबिया।
1: अच्छा हमना, क्योंकि हमारा टॉपिक हिस्टोरिकल बेसिस पे था, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप टूरिज़म को प्रमोट करें और ऐसे जगहों पर जाके आपने साफ़ सुथरा रखना है जगह, ये नहीं। और आपने लोगों को भी, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है कि लोग ये कहते हैं दूसरे मुल्क जाते हैं टूरिज़म करने, तो आप अपने मुल्क को टूरिज़म को प्रमोट करें। और मुझे लगता है कि आगे हमें आमना बताएंगी।
0: जी आमना, आप क्या कहना चाहेंगी कि आप अपने ये जो इंडिपेंडेंस का हमारा महीना चल रहा है, आप इस हवाले से अपने कौम की यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी?
2: अच्छा हमना, मुझे ये लगता है कि हम समझते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करना है तो लाजमी कुछ बड़ा करना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। मेरी नज़र में एक स्टूडेंट का ऑनेस्टली पढ़ना, एक टीचर का सिंसेरली पढ़ाना, एक जर्नलिस्ट का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से निभाना, ये सब भी कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। और डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखना और अपना काम ईमानदारी से करना, अगर हर बंदा करे तो कलेक्टिवली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है।
0: जी आमना, बहुत शुक्रिया। हम अरीज से आखिर में बात करेंगे, वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। जी अरीज।
3: अच्छा, इख्तिताम में मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने जो है वो इकदाम लिए इन हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए और हमारी टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा आर्किटेक्चर है वो डिपार्टमेंट भी बहुत काम कर रहा है और वर्ल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो इसको प्रमोट करना
0: जी बहुत शुक्रिया रीच लिसनर्स। ये था हमारा प्रोग्राम, आप सुन रहे थे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो FM 101 से। मैं हूँ आपकी होस्ट हमना सिद्दीकी। हमना सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। आप ठीक 10 बजे FM 101 के स्टूडियो से खबरें सुनेंगे।
4: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मनाजिर हुसैन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने जदीद और मयारी तालीम के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के हुकूमती अज़्म का इजहार किया है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने खुसूसन दिफा और हवाबाजी के शोबों में दो तरफा तआवुन को मजीद फरोग देने का अज़्म जाहिर किया है। अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल पर जोर दिया है कि वो गजा में इसराइली जारहियत रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल चैंपियंस कप का दूसरा मैच आज पाकिस्तान ब्लूज और पाकिस्तान गोल्ड के दरमियान खेला जाएगा।
5: This is FM 101.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: FM 101 की लाइव ट्रांसमिशन एंड शो का नाम है दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस। ट्रांसमिशन का नाम है हम एक हैं एंड इस शो को हम और बेहतर से बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेलकम टू द लाइव ट्रांसमिशन ऑफ हम एक हैं एंड हमारे साथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाइमा का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं एंड देन हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अमाइमा आप कैंडी जल्दी से रैप अप कर दें कि आपका क्या बेसिक पॉइंट
1: शहीर। हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के रंगों की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान का शुमार मतलब पाकिस्तान ही आता है इसमें, इसको मिलकर पाकिस्तान बनता है। तो हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान की, जिसको लैंड ऑफ बीच भी कहा जाता है, जहाँ पर हमारे पास बहुत से नामवर बीच जो आते हैं और लोग वहाँ पर सैयाह जो हैं वो सफ़र भी करते हैं। तो हम इसका जिक्र करने वाले हैं आज अपनी ट्रांसमिशन के अंदर।
0: जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की खूबसूरत वादियों से कौन किसे अपनी वाकफियत नहीं है। बलूचिस्तान की खूबसूरत वादियाँ अपने आप को अपने आप में एक शान है।
2: सबसे पहले तो आप सुन रहे हैं FM 101 लाहौर। तो जहाँ खाने को और वहाँ की मेहमान नवाजी और कल्चर का जो वो एक खूबसूरती है उसे नहीं भूल सकते। किसी भी इलाके के जो जायके हैं वो किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं।
0: जी बिल्कुल, जैसा कि हमने शो के आगाज में बात की थी कि आप सुनने वाले हैं चार डिफरेंट पर्सनैलिटीज का चार आइडियोलॉजी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक मौजूद है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद फिर से एंड देन हम सुनेंगे अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हम आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए मेरा नाम है शहीर सफदर एंड हमारे एक्सपीरियंस साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर से

दास्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: वेलकम बैक टू द शो। मेरा नाम शहीद एंड आज हमने ऑलरेडी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया फ्रॉम उमाइमा एंड अबू बकर। अभी हमारे साथ अहमद मौजूद हैं। उमाइमा ने अपनी जो सियाहती अपनी ट्रेवल जीम का जो अमली नमूना है वो हमारे सामने ऑलरेडी शो में पेश कर दिया है। अबू बकर ने बता दिया है कि ही इज नो लेस देन अ फूड ब्लॉगर। तो डेफिनेटली हमारे पास एक और आइडियोलॉजी मौजूद थी एंड उनके बगैर इस शो में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अहमद बताइएगा।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और यहाँ पे बात हो रही थी बलूचिस्तान की। तो मैं बताना चाहूँगा बलूचिस्तान को सिर्फ उसके पहाड़ों और सहराओं की वजह से नहीं याद रखा जाता, बल्कि बलूचिस्तान की एक अहम चीज़ ये भी है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का म्यूजिक और वहाँ पे जो ट्रक्स चलते हैं अपनी एक मुनफरिद पहचान लेकर, हमें उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आई गोट ऑल ऑफ योर पॉइंट्स। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जो ट्रक आर्ट्स हैं, डिफरेंट जो क्ले पोर्ट हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, इसके बारे में मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं। बगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो कल्चरल स्टोरीज हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। दुल्ला भट्टी की कहानी हो, वो सोनी माहिवाल की कहानी हो, वो हीर रांझा की कहानी हो, ये तमाम कहानियां ही ऐसी कहानियां, ऐसी फोक स्टोरीज हैं जिन्हें सुन सुन कर हम बड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई भी पाकिस्तानी कहीं पर भी मौजूद हो उन्होंने ये तमाम कहानियां लाजमी सुनी होंगी। वेल, हम अनाउंस करते चलें कि जितने भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं वाया 04221100101। आज हम खेल रहे हैं गेम, क्योंकि पाकिस्तान की 79th जो बर्थ एनिवर्सरी है तो आपको दिए जाएंगे 79 सेकंड्स एंड आपने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ उर्दू में। रेडियो भी एक इंग्लिश का वर्ड है, किसी भी ओल्ड जो लैंग्वेज है उसका वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी कॉल हम लाजमी लेंगे। कॉल का एक ही तरीका है, अस्सलाम वालेकुम बोलने के बाद से अगले 79 आपने करनी है सिर्फ और सिर्फ उर्दू में बात। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आप किसी और लैंग्वेज का वर्ड बोलेंगे वी हैव टू डिस्कनेक्ट द कॉल एज पार्ट ऑफ द रूल। So it is basically team listeners versus the team RJs. So first of all, मैं अपने कुलीक से पूछ लूँ, are you ready guys?
2: Yes, we are sure ready.
3: We are excited.
0: We are definitely excited. इसी के साथ साथ अपने मौजू को भी आगे बढ़ाते जाएं। आप हमें कॉल कर सकते हैं जब हमारा दिल किया हम कॉल ले लेंगे एंड वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आप हमारे इस शो का पार्ट रहे हैं। तो डिस्कस कर रहे थे हम पाकिस्तान की वादियों को, पाकिस्तान के कल्चर को और पाकिस्तान के खानों को, क्योंकि खाने के बगैर तो कोई बात खत्म ही नहीं हो सकती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मेहमान नवाजी का भी वो एक स्पेसिफिक अंदाज है कि आप खाएं, तीन दफा मना करने के बाद आप जब मना करते हैं फाइनली वो आता है एंड उसके आने के बाद भी आप नॉन स्टॉप उनसे ये पूछते हैं कि आपने इसके अलावा क्या खाना है।
2: बिल्कुल,
0: खाने की बात मैं करता हूँ अच्छा नहीं लगता, हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं।
2: बिल्कुल शहीर, आपने दुरुस्त फरमाया, किसी भी इलाके या जगह की सकाफत उसके खाने के बिना तो एक अधूरी सी चीज़ प्रेजेंट करती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ फीका सा है उसमें कुछ मसाला। तो पाकिस्तान में तो खानों के मामले में वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, पूरा पाकिस्तान का कल्चर खानों से भरपूर है और हमारे पास जितने हमारे इलाके सूबे शहर हैं और हर शहर का खाना एक से बढ़कर एक है, वो चाहे लाहौर, कराची, पिशावर या इस्लामाबाद कोई भी जगह हो।
0: अहमद, आप काइंडली बताएंगे आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है?
1: अगर मैं अपनी बात करता चलूं तो मेरी जो सबसे फेवरेट चीज है ना वो है निहारी, और निहारी के मामले में कराची सबसे आगे है। उसका टेस्ट और उसकी जो कुजीन की एक वाइब है ना वो डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाती
0: है। अहमद, आपको
1: निहारी काइंड ऑफ लाइक मे टेस्ट बड्स बहुत एक्साइटिंग है निहारी को
3: लेकर जा रहे हैं, मुझे भी बात करने दे। कहां से खाई जाती है और कहां से बहुत खूब मिलती है, जरूर क्यों ना करें कि जो लाहौर है वो खानों का शहर है, वो बागों का शहर है और वहां पर मुख्तलिफ इकसाम के जो है हमारे रिवायती खाने موجود ہوتے ہیں. تو ہم جب لاہور میں آتے ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ جو لاہور وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا, جو لاہور آیا ہی نہیں ابھی تک. تو ہم ذکر کرنے والے لاہور کا بھی, جو کہ خاص پہچان ہے ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آج
1: جہاں لاہور کے آرکیٹیکٹ کو کیسے بھول سکتے ہیں, جیسے کہ دلی گیٹ کے اندر آ کے بس کتنی ہسٹوریکل ہمارے لاہور میں پلیسز
3: موجود ہیں,
1: وزیر خان ہو گیا,
0: اپنی گیم کھیلتے ہیں. السلام علیکم ون او ون, لگتا ہے کولر ہمارے سے ناراض ہیں. ایگزیکٹلی,
2: ہسٹری اتنی پرانی ہے جتنا کہ پاکستان, اور جیسے اندرون کے کھانے اور جو اندرون کا آرکیٹیکچر جب ہم جاتے ہیں قدم رکھتے ہیں اندرون میں, وہ جس طرح سے وہ گلیاں اور وہ مناظر پیش کرتے ہیں, لیکن اسی انہیں گلی کوچوں میں جو چھوٹے چھوٹے کھانے کے پوائنٹس ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں. ہاں وہ صبح کا ناشتہ ہو, کا کھانا ہو, یا رات کا پراپر ڈنر کیوں نہ ہو,
3: آپ وہاں سفر کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو وہ پرانی تہذیب میں پہنچ گئے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
0: بالکل, لاہور ایک ایسی جگہ ہے ہمارے لیے جو کہ پورے پاکستان میں کلچرل ہب مانا جاتا ہے.
3: بالکل,
0: اینڈ جہاں پہ لاہور کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت ہم موجود بھی لاہور میں ہیں, تو لاہور ہم کرتے ہی رہیں گے اینڈ یہ سما ایسے ہی ختم ہو جائے گا.
2: بالکل, اور ہم آج پاکستان پہ ہی بات کریں گے, اور اپنا کلچر اپنا کھانا پریزنٹ کرتا ہے کہ دیکھتے ہی دل کو نا ایک سکون سا ملتا ہے کہ ہمارا پاکستان ہے.
3: ہر شہر کا اپنا رنگ ہے اور وہ اس رنگ کو ملا کر ہی ایک پاکستان بنتا ہے, تو ہر رنگ میں پاکستان ہمیں نظر آتا ہے.
0: بالکل جی, ہر رنگ میں ہمیں پاکستان نظر آتا ہے, اور یہاں پہ بات ہو رہی تھی لاہور کی, کریں گے ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں, بٹ اسے ڈسکس کرنے میں بھی کچھ سمے ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک کمرشل بریک موجود ہے. چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف. کمرشل بریک سے جیسے ہی ہم واپس آئیں گے ہم پاکستان کی ڈفرینٹ کلچرل ہیریٹیجز کو ڈسکس کریں گے, ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں کال کر رہے ہیں, کالنگ لائنز اوپن ہوں گی 10:30 کے بعد. 10:30 کے بعد ہم ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, اینڈ جتنے وی ول ٹرائی کہ ہم میکسیمم لوگوں کی کال. رولز آر سمپل, کوئی ورڈ کسی اور لینگویج کا نہ بولیں. اپ نیکسٹ وی ہیو ا بریک, پھر سے ساتھ رہیے گا.
4: پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کپال دانے دار.
5: This is FM 101.

0: वेलकम बैक टू 101 आजादी स्पेशल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन पाकिस्तान एक्सपीरियंस एंड दिस इज योर तीन आइडियोलॉजी जिन्हें मैं इनके नामों से अलावा हम बात करेंगे इनकी आइडियोलॉजीज पे। हमारे साथ बकर मौजूद हैं हु इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर
1: एग्जैक्टली खाना। खाना मेरी जान है और खाने के बारे में बात करने का एक अलग ही मजा है।
2: आप हमारे मुंह में पानी लेकर आ रहे हैं,
1: आना भी चाहिए।
0: मेरा

0: प्ले करते हैं, गाने के साथ ही बढ़ते हैं। लेट्स सी हु इज ऑन द कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: कैसे हैं सर आप?
1: सलीम टेलर इच्छे बाजार से, बिल्कुल ठीक।
0: सलीम सर
1: जी, आपकी बातें सुन के बहुत ठीक हो गए हैं, काफी
0: ठीक है। सलीम साहब, आप एक गलती ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने टेलर बोल दिया, टेलर इज एन, लेकिन क्योंकि आज आप हमारे सबसे पहले कॉलर हैं, आपको एक और हम चांस दे रहे हैं, तो बताइएगा पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: सर पाकिस्तान के बारे में हम यही कहेंगे कि हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत ज़रखेज़ है, और इसमें हमें चार मौसम मिलते हैं, और खाने पीने की बहुत चीज़ें माशाल्लाह यहाँ पे मुयस्सर हैं, जैसे नान चने हो गए लाहौर के।
2: तो सलीम साहब, खाने की बात हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको ये खाना अपना फेवरेट हमें बताते चले, लोग आपको सुन रहे हैं।
1: जी खाना फेवरेट है हमारा नान चने।
2: अरे वाह, सलीम साहब दिल जीत लिया आपने मेरा।
1: ये हमारी आपी बैठी हुई हैं, इनको हम सलूट पेश करते हैं।
0: बिल्कुल जी, आपको सलूट, आपको मैं कर दूं, मैं खड़ा होकर सलूट कर देता हूं।
2: हम भी करेंगे।
3: थैंक यू सो मच,
4: बहुत शुक्रिया आपका।
1: आप इनको भी मौका दीजिएगा एक दो मिनट की बात करने का।
0: बिल्कुल, हमारे साथ जितने लोग मौजूद हैं सबको मौका देंगे, मौके देने के लिए तो बैठे हैं हम।
1: और आप कोशिश करें कि कॉल आपने ज्यादा से ज्यादा लेनी है, आप बड़ा टाइम इसमें लगा देते हैं कॉल लेने में ना।
0: ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो
1: आपकी पूरी मैनेजमेंट को सलूट पेश करते हैं, आरजे डॉक्स
0: जी, बिल्कुल
1: उनको कि वो भी शो में नहीं आते जल्दी, तो हमें बड़ी मायूसी होती है कि वो उनकी आवाज़ सुने, उनकी बातें बहुत मजेदार होती हैं और मजा आ जाता है उनका शो सुनने में।
0: बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया सलीम साहब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मीनवाइल टॉपिक से पहले अगर हम एक गाना चला दें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं।
5: जोश तेरी पहचान है जब तक है जामे जान,
0: सुनते हैं गाना, ब्रेक में जैसे ही इट्स ऑल, हमारी वो तमाम बातें जो कि अभी रहती हैं, वक्त आपके कोर्स को भी, यू आर अवर, बट जो पैगाम

गाने के बाद हम ब्रेक चलाएंगे एंड ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का नाम है हम क्यों गाना एंड ब्रेक के बाद

0: आपने ऐसे मनोवर्तन किया।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।
3: This is FM 101 101 101.

0: वेलकम बैक टू द शो ट्रांसमिट। आज के दिन हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कल्चरल चीजों की एंड हमारे पास तीन आइडियोलॉजीज मौजूद हैं एंड उनमें से एक मैं भी हूँ क्योंकि चौथी आइडियोलॉजी जिसे ये खास जो है ना तवज्जा नहीं दे रहे बट अपनी तवज्जा हम दिला देंगे मीन कलर की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट ही हैव फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम?
1: सर मैं बोल रहा हूँ शेख सिंह से बोल रहा हूँ, सिंध का हूँ, यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ लाहौर में।
0: जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में।
1: सर पाकिस्तान माशाल्लाह हमारा प्यारा मुल्क है, चारों सूबे जैसे तो इसी तरह कोई शिकायत नहीं है, आठवां अजूबा हमारा पाकिस्तान मुल्क है भैयान।
2: तो सर पाकिस्तान के कल्चर की, हमारी खूबसूरती की, वो भले किसी इलाके की खूबसूरती हो या खाना हो या हमारे लिबास हो, तो मैं आपसे करना चाहें हमारे सामीन के लिए। जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो सर लाहौर में रह रहे हैं और आप सिंध से हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंध से लाहौर आए और लाहौर में आपको कौन सी एक ऐसी चीज अलग लगी?
1: सर ये लाहौर में यहाँ पे जो है सिंध को जो है सही नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सिंधी सही नहीं।
2: नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान हमारा एक है और
0: जितनी भी एथनिसिटीज हैं वो बिल्कुल हमारे लिए हैं एंड वो तमाम की तमाम हमारे लिए इक्वल हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, हम अपनी बात पे वापिस आते हैं। अहमद, अहमद ने ट्रक कार्ड पे ऐसी रिसर्च की है एंड स्पेसिफिकली अताउल्लाह खान साहब के बारे में, तो कि वो इस पे बात कर लें। तो यहाँ पहले जब वो फिर हमारी बात हो रही थी तो अहमद वाज टेलिंग मी कि किस तरह पाकिस्तान के तमाम सूबों के जो ट्रक कार्ड्स हैं उनके ऊपर जो मुराल्स होते हैं, उनके ऊपर जो पेंटिंग्स होती हैं, वो बाकी तमाम चीजों से डिफरेंट होती हैं। क्योंकि अहमद ने अभी तक हम तीनों में सबसे कम बोला होगा, तो अभी तो अहमद बताइएगा ट्रक कार्ड के बारे में।
3: अच्छा, अगर मैं ट्रक कार्ड के बारे में डिस्कस करता जाऊं तो मैं यहाँ पे एक चीज लाजमी बताऊंगा कि ट्रक कार्ड इज मोर लाइक अ स्टोरी टेलिंग। हमारे डिफरेंट सूबों में डिफरेंट तरीके से हमारे ट्रक्स को डेकोरेट किया जाता है और उसके ऊपर स्पेसिफिकली हमारे हर जो है सूबा है वो अलग तरीके से डेकोरेट करता है, जैसे कि सिंबल्स हो गए, ऊपर तस्वीर हो गई, पोइट्री, स्लैंग्स वगैरह सब कुछ मेंशन किया जाता है। और स्पेसिफिकली हमारे ट्रक्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है उसे बहुत ज़्यादा कलरफुल रखा जाता है कि वो हमारे जो है ना पाकिस्तान की सकाफत को रिप्रेजेंट करे।
0: पाकिस्तान के जो ट्रक कार्ड के पीछे मुराल्स होते हैं, अताउल्लाह खान साहब, खेलवी साहब के जो मुराल्स हैं, दे आर लाइक वर्ल्ड फेमस एंड आजकल इंस्टाग्राम की वजह से जनजी में भी काफी फेमस हैं। तो
2: अहमद बात कर रहे थे और अहमद तो मेरे जहन में वो आई कि कोई भी ट्रक चलता हो उसमें उनका गाना ना हो ना तो वो एक मिसिंग सी चीज लगती है वो ट्रकिंग में ना, उनका गाना वो सफर में चलते हुए और जिस तरह से वो उसमें भी एक स्टोरी बयान करते रहे थे। और अहमद तो मेरे जहन में वो आई कि कोई भी ट्रक चलता हो उसमें उनका गाना ना हो ना तो वो एक मिसिंग सी चीज लगती है वो ट्रकिंग में ना,

एंड यहाँ पे डिफरेंट आरजेस आएंगे, डिफरेंट प्रेजेंटर्स आएंगे एंड सबके साथ यहाँ पे मौजूद रहिएगा। हम मिलेंगे नदी, हम ऑन वे कहीं पे घूमने जाएंगे। फाइनली गुड बाय।

0: We'll be right back after this short commercial.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: Love you, Pakistan.

0: This is FM
1: 101.1. सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: सुनते रहिए FM 101.1.
3: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस पताल दानेदार।
4: I love FM 101।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

नाज़रीनों सामने इसके साथ साथ हम एक मिली नगमे की तरफ चलते हैं। हमारा परचम, ये प्यारा परचम।

0: वेलकम बैक सामीन, आप भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के बारे में कोई दिलचस्प बात शेयर करना चाहते हैं या हमारी गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं तो अभी हमें कॉल करें 04221100011। मैं दोबारा बता देती हूँ, 04221100011 पर आप हमसे रابطہ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, अब जरा स्टूडियो के माहौल को थोड़ा एडवेंचर से भरते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद खिता है जहाँ दुनिया के तीन अजीम तरीन और बुलंद तरीन पहाड़ आपस में जो है मिलते हैं, जिस तरह हिंदू कश, कराक्रम, सिलसिला हिमालया। जमशेद, आपके पास पहाड़ों के हवाले से कुछ जबरदस्त फैक्ट्स मौजूद थे, प्लीज उसको शेयर कीजिएगा।
2: यहाँ तो मैं बिल्कुल इसको शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो दुनिया भर में ना 8000 मीटर से बुलंद टोटल ना 14 माउंटेन्स हैं, और उसमें से 5 जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर है। आप जो सबसे जो दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी है ना कोहिनूर, वो K2, वो अब पाकिस्तान के अंदर है। इसकी लंबाई जो है वो 8611 मीटर है।
1: वाह।
2: इसके अलावा वो पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में है। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक बहुत वर्सेटाइल कंट्री है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो टोटल 5 जो है ना माउंटेन्स जो दुनिया की सबसे बड़ी हैं वो पाकिस्तान के अंदर आती हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो हम इतने मतलब कि खुश नसीब हैं कि लोग जो होते हैं वो दूर दूर से यहाँ पे आते हैं कि सियाहत करने आते हैं कि हमें कुछ एडवेंचर्स करें, और हम में से कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी कंट्रीज के अंदर चीज़ है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
3: जी जी बिल्कुल जमशेद, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जमशेद, हम इधर ग्लेशियर को तो भूल ही गए, कतबीन जैसे अजीम दरिया इधर मौजूद हैं, लाइक जैसे बिफालो ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर्स, कई तरह के ज़खीरे पाए जाते हैं इसमें। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी में ये वाक़िया हैं, यानी सियाचिन तो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन जंगी मैदान भी कहलाता है,
0: और इसी पहाड़ी सिलसिले में दुनिया का 8वां अजूबा भी तो है, यानी कि कराक्रम हाईवे। यह सड़क तकरीबन 15,300 फीट की बुलंदी पर पाक चीन सरहद पर खंजरा पाक से गुजरती है। इतनी बुलंदी पर एक पक्की सड़क बनाना बहुत मुश्किल काम था, और यह एक मौजा भी, तारीख का मौजा भी हम इसे कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान और चीन के इंजीनियर्स ने मिलकर अपनी जानों का नजराना देकर मुकम्मल किया। ये दुनिया की बुलंद तरीन बैन अल-अक़वामी पक्की सड़क है।
2: जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह पाकिस्तान के काफी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे CPC प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पता होगा।
0: बिल्कुल।
2: चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके अलावा जो पहले वन बेल्ट रोडवे होता था, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में जो है वो एक अपनी अहमियत रखती हैं।
1: वाकई हैरत अंगेज, बिल्कुल सही कहा। जब इन ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलती है तो वो पानी बनकर पाकिस्तान की रगों में दौड़ती हैं, जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं।

0: Sucre. हर चाल से चाहे तुझे मार कायदे आजम तेरा तेरा
1: वन बहुत बहुत अच्छी से आपने
2: बात आया बिल्कुल बहुत खूबसूरत यहाँ पे हमारे साथ एक कॉल लेते हैं
3: जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम
2: जी, कैसी हैं आप? आपका नाम क्या है और कहाँ से है? जर्मनी से बात कर रही हैं. वाह. और
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम
2: जी, कैसी हैं आप? आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं?

0: क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे सामने के सुनने वाले?
1: सबसे पहले तो आपको ईमान की आजादी मुबारक हो, सभी सुनने वालों को और आपको
0: खैर मुबारक।
2: खैर मुबारक।
1: और मैं भी आ रही हूँ इंशाल्लाह कल पाकिस्तान यौम आज़ादी के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं फर्स्ट टाइम वापस पाकिस्तान आई तो मेरा दिल ही ना करे जर्मनी आने को। मैंने कहा मैंने रहना ही पाकिस्तान है, इतना अच्छा मुल्क है हमारा और इतने अच्छे यहाँ के लोग हैं पाकिस्तान के, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। दिल ही नहीं करता एक बार पाकिस्तान वापस जाने को, दिल नहीं करता।
2: जी जी बिल्कुल ऐसे ही है।
1: आप मैं यही सभी सुनने वालों को कहूँगी कि यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करें जिस तरह भी हो सकता है। और चाहे मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तान से एक अलग ही मोहब्बत है।
0: क्या कहने, बहुत खूब।
1: और मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान। मैं यही कहती हूँ कि मैंने पाकिस्तान जाना है, बट कहती कहते नहीं। और मैं कहती हूँ कि क्या पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं।
2: जी जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
1: और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: और कॉल लगेगा आप इस वजह से।
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: बहुत शुक्रिया आपने मेरी।
2: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।

0: एक और कॉलर है यहाँ पे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम आपी जी।
0: वालेकुम सलाम जी, आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आपी जी? मैं राजीव कंडे से बोल रहा हूँ, बेबी जेट।
0: जी जी,
1: माशाल्लाह आपी जी, बहुत सोनी गल्ला, बहुत सोना प्रोग्राम, अल्लाह
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत।
1: अच्छा पाकिस्तान आपी जी, हमारा इस्लामाबाद।
0: जी जी, आप पाकिस्तान के हवाले से कुछ सामीन को पैगाम देना चाहेंगे?
1: हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं आपी जी, हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है और हम इतने अमन से यहाँ चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। और शुक्रिया कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का, उनको दोनों हाथों से सलूट
0: जी,
1: और आपकी पूरी टीम को सलूट आपी जी। माशाल्लाह अल्लाह पाक तुम तंदुरुस्ती सेहत देवे।
2: मुझे ये बताए कि आपको ये हमारा शो कैसा लग रहा है?
1: आप जी बहुत जबरदस्त, सुपर डुपर, और आपको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती सेहत दे, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है, यकीन मानो।
0: आमीन आमीन, शुक्रिया आपका।
1: वन वन पे आप छा गए हो जबरदस्त, आप ही आप अल्लाह पाक तंदुरुस्ती सेहत दे, तो साडे सलीम सरदी साहब भी तुहानू सुन रहे ने।
0: अच्छा अच्छा
2: जी जी, बहुत शुक्रिया आपका।
1: सर तुहानू भी सलूट, सर मैं लगया आप ही कल्ले ही ने
0: अपनी
1: पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: जी सामीन, अब यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद हम आपसे दोबारा गुफ्तगु जारी करते हैं।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: सुनते रहिए FM 101.1।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: सुनते रहिए FM 101.1।
4: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

जहांगीर। और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान

0: खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ गुज़रने की भी मजाल ना हो। अस्सलामुअलैकुम सामईन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम FM 101 से, और प्लेटफॉर्म है आप सबका अपना रेडियो पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे कदीम इदारा, या यूँ कह लीजिए कि क़याम पाकिस्तान से पहले से ये इदारा मौजूद है, और ये एक ऐसा इदारा है जहाँ से पाकिस्तान के क़याम की पहली अनाउंसमेंट भी आप लोगों की समातों तक पहुँची। मैं हूँ आपकी मेज़बान मैमूना लतीफ़ चीमा, और आज की जो हमारी आज़ादी ट्रांसमिशन जारी है FM 101 से, उसमें हमारा मौजू गुफ्तगू होगा कि बतौर पाकिस्तानी हमें किन चीज़ों पर, किन बातों पर फ़ख्र है। हम क्यों कह सकते हैं कि हम एक प्राउड पाकिस्तानी है, और हम जानेंगे कि हमारी सकाफ़त क्या है, हमारी तहजीब क्या है, और जो ज़ुबानों का एक रिच कल्चर है, नौजवानों की जो कामयाबियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो अमन के हवाले से एक कलीदी किरदार है दुनिया भर में, और बहुत सारे ममालिक ने हमें सराहा, बल्कि हर मुल्क ने ही हमारी जो कंट्रीब्यूशन है उनको सराहा। सो इस हवाले से आज के शो में हम लोग बात करेंगे। सो आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोगों ने आखिर तक हमारे साथ रहना है, हम ठीक 1 बजे तक आप लोगों के साथ होंगे, और आज मैं अकेली ही साथ नहीं होंगी, बल्कि मेरे साथ कुछ ऐसी नौजवान आवाज़ें भी आज स्टूडियो में मौजूद हैं जिनको आप अनकरीब यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, FM 101 से सुन सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी आवाज़ों को पसंद किया तो फिर ज़रूर आपकी समातों तक ये पहुँचती रहेंगी। सो मेरे साथ मौजूद हैं जी सबसे पहले साइमा इरफान। साइमा अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैमूना?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ साइमा, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: साइमा, सबसे पहले तो पहले हम बाकियों की तरफ जाते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी कि हमें बतौर पाकिस्तानी किस चीज़ पर फ़ख्र है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट अहमद बिलाल साहब, अहमद कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अहमद ने आज सफ़ेद रंग का जोड़ा पहना है और साइमा ने जो है वो सब्ज़ रंग का जोड़ा पहना है, तो ये हमारा जो आज 12 अगस्त को ही हम जो है वो 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपकी तशरीफ़ आवरी का।
2: बहुत शुक्रिया आपका।
0: हमारे साथ अगले जो शख्सियत मौजूद है, वो शख्सियत मैं इसलिए कह रही हूँ, उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो बड़ा काम कर रहे हैं, काम इस लिहाज से कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यंगस्टर्स की जो अचीवमेंट्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो नौजवान है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, वो क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। तो बिलाल की तरफ जाने से पहले जो तमहीद है वो लंबी हो गई, बिलाल कैसे हैं आप?
3: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप खैरियत से हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिलाल, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको पाकिस्तानी होने पर किस चीज़ पर, किस बात पर फ़ख्र है?
3: अच्छा, बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं कि जिस पे मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, जिस पे मैं एक डिस्टिंग्विश, या जिसको आप इम्तियाजी हैसियत की बात करते हैं, कि इस दिन मेरा यौम पैदाइश भी है।
0: अरे वाह, कितनी खूबसूरत बात है, ये कैसा हसीन इत्तेफाक है।
3: पाकिस्तान ने मुझे ये एहसास बख्शा कि मैं,
0: अरे वाह, इस सरजमीन ने यह एजाज बख्शा कि आप जिस दिन वो मार्ज वजूद में आया उसी दिन आप इस दुनिया में तशरीफ
1: लाए। एडवांस में सालगिरह मुबारक आपको भी।
0: जी बिल्कुल, एडवांस में आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक है।
3: खैर मुबारक।
0: अच्छा, आपको इस चीज पर फख्र है?
3: बहुत फख्र है।
0: अरे वाह, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है,
1: हो गया ये तो।
0: हाँ, सोने पर सुहागा हो गया। अच्छा साइमा, आपको किस चीज पर फख्र है?
1: वैसे तो मैं आपको अगर बताऊं तो ऐसी काफ़ी बातें हैं जो हम गिनने बैठे तो शायद सदियां लग जाएं।
0: यस एग्जैक्टली,
1: बिल्कुल, कि अगर हम गिन भी नहीं पाएंगे अनगिनत ऐसी बातें हैं, बट मुझे लगता है कि हमारा कुदरती हुस्न को अगर हम देखें तो वह तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें फ़ख्र है ही, पर उसके अलावा मुझे लगता है कि जो हमारे नौजवान हैं पाकिस्तान इन चीज़ों में, कि लाइक हमारे जो नौजवान हैं वो कितनी ज़री खिदमत पेश कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। हमारे साइंटिस्ट को देख लीजिए, अब नौजवानों की मैंने बात की अगर की तो मर्शद नदीम को देख लीजिए, गोल्ड मेडल जीता,
0: जब बिल्कुल
1: जीता ओलंपिक्स में तो पूरे जो पाकिस्तान था उसकी जो जोश था वो आपने देखा कि कहाँ पे कितना
0: बुलंद था। और
1: हमारे साइंटिस्ट देख लीजिए जो बाहर जाते हैं हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद करते हैं, اور پلیئرز دیکھ لیجئے کرکٹ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی تو آپ کو یاد ہی ہوگی.
4: بالکل
1: تو اس طرح کافی مواقع ہیں جن کو میں شاید گننا چاہوں تو میں یہاں پہ بیٹھ کر کبھی پورا نہیں فہرست ہے کہ ہم گننے بیٹھیں گے تو صدیاں گزر جائیں گی.
4: بالکل ایسا ہی ہے, اور ہمارے شو کا دورانیہ بہت کم ہے تو اس لیے ہم باتوں کو جو ہے وہ کرتے رہیں گے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو گفتگو ہے اس میں ہم میکسیمم چیزوں کو ٹچ ضرور کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو یا ہم سینسٹائز ہو سکے اس چیز پر کہ بھائی پاکستانی ہونے پر ہمیں کس کس چیز پر فخر ہے, یہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے. سو احمد آپ کا کیا ہے؟ ویسے تو سب کچھ ہم سب کا ہی ہے, آپ کو کس چیز پر کس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے پرسنلی کہ احمد کو اس چیز پر پاکستانی ہونے پر فخر؟
2: مجھے تو سب سے پہلے فخر یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور اس کے علاوہ مجھے یہ فخر ہے اپنی پاک فوج پہ, اپنے شہیدوں پہ, اپنے غازیوں پہ جو وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک پیش کرتے ہیں, اور انہیں بالکل اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ہم اگر وطن کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہماری اس میں جان چلی جائے گی. اور میں ان کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اتنے مضبوط اور بہادر بچے پیدا کیے جو اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیتے ہیں.
4: ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. احمد کا پوائنٹ بہت ویلڈ بھی ہے اور بہت زبردست بھی ہے, اور ہم نے افواج پاکستان کا کردار دیکھا بھی, حال میں بھی دیکھا اور پہلے بھی. ہمیں اندازہ تو خیر تھا ہی کہ ہماری ایئر فورس, ہماری جو آرمی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, کتنی پاورفل ہے. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جن پر بطور پاکستانی ہم سب کو فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ ہماری گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے گا ٹھیک 1 بجے تک, اور آپ لوگوں نے سنتے رہنا جی ایف ایم 101. یہاں پر لے رہے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک, اور ہم اس بریک میں کیا سنیں گے جی, ایک ملی نغمہ سنیں گے. اور ملی نغمے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک سجیشن آئی تھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے, میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر.
2: ماشاءاللہ زبردست,
3: یہ تو بہت ہی خوبصورت آواز میں ایک چھوٹے بچے کی ایک التجا ہے, بہت بہت بہت جو ہے یہ فخریہ.
4: یس, اور یہ آواز سنتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: This is FM 101.
1: I love FM 101.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
3: सुनते रहिए FM 101.
4: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं FM 101 और प्लेटफॉर्म है आप सबका, हम सबका अपना रेडियो पाकिस्तान। और इस मिले नगमे को सुनकर हमारे जो जज्बात हैं वो थोड़े उभर आए हैं, वैसे तो उभरे हुए हैं। और पाकिस्तानी वैसे भी मुझे लगता है एक एक्सप्रेसिव कौम है। हम जब भी मिले नगमे सुनते हैं या कोई भी इस तरह की बात होती है, ख़ासतौर पर अगस्त के महीने में, आज चूँकि 12 अगस्त है और आज से 2 दिन बाद जो है वो 14 अगस्त है, तो ये पूरा महीना जो हमारा जोश और जज्बे में गुजरता है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो छोटे बच्चों का हो या सिर्फ नौजवानों का हो, मुझे लगता है वो हर एज ग्रुप में हमें वो चीज़ वो पैशन नज़र आता है। और हम उन तमाम कुर्बानियों को भी याद करते हैं, हम उन तमाम लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन को भी देखते हैं, समझते हैं जिन्होंने हुसूल पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया। इस मिले नगमे को सुनने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी होने पर हमें किस बात पर, किस चीज़ पर फ़ख्र है, हम क्यों प्राउड फील करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम पाकिस्तानी हैं। बिलाल की तरफ बढ़ते हैं जी। बिलाल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद बिलाल हुसैन। अच्छा, बिलाल का जब हम नाम लेते हैं ना बिलाल हुसैन, तो वो बाज़ूकात बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं मेरा पूरा नाम लेना है जी मोहम्मद बिलाल हुसैन। जी मोहम्मद बिलाल हुसैन साहब, आप बताइए कि आपको पाकिस्तानी होने पर किस चीज़ पर फ़ख्र है और उसको थोड़ा सा ज़रा आप हमारे सामने तक पहुँचाइए।
1: अच्छा, पाकिस्तानी होने पर तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिन्हें हम फ़ख्र करते जाएं तो शायद ये फ़ख्र हम में ख़त्म ही ना हो, ये एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे ज़्यादातर इस बात पे फ़ख्र है कि हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी डिग्निटी, दीज आर वेरी मच एनरिच्ड। ये बहुत ज़्यादा वसी हैं। हम अगर दूसरे ममालिक में जाते हैं तो हमारी पहचान हमारे अदब की तरफ से होती है। हमारा जो ये रिवायात हैं और ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को नुमाया करती हैं वहाँ पर।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, और पूरी दुनिया में इस चीज़ की जो है वो एक्नॉलेजमेंट भी होती है।
1: और हमारी जो ज़ुबान है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा वसी और बहुत ज़्यादा इसमें एक खुश अखलाकी का अंसर मेरे ख्याल में पाया जाता
0: है। बिल्कुल ऐसा, ये इंटरेस्ट है,
1: इंटरेस्ट है।
0: हाँ बिल्कुल, हमारी जो जुबानों का कल्चर है वो बड़ा मज़ेदार सा है। और जुबानें, क्योंकि पाकिस्तान को जब हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारी जुबानें हैं, मतलब हम कौमी जुबान तो हमारी उर्दू है, इंटरनेशनल लैंग्वेज हम ज़ाहिर अंग्रेज़ी को मानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारी जो इलाकाई में है वो भी बहुत ज्यादा है और वो इतनी कदीम है कि जब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप हैरान
1: हो जाते हैं और आसान खता भी हो जाते हैं। और हमारे खाने बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जुबानों से बिल्कुल हम खानों की तरफ आ गए। ये लाहौरी होने का इन्होंने नहीं, बल्कि आप तो लाहौरी भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप लाहौरी होने की वजह से। अच्छा, खानों का मुझे लगता है मैं लाहौर के साथ ना लिंक कर दिया है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मेरे ख्याल से हर शख्स को खाने पीने का शौक होता है। और हमारे खानों की भी जो रिवायात है, कल्चर है, देसी खानों का खास तौर पर, वो भी बहुत एनरिच्ड है। क्यों बिलाल, ऐसे ही है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा हमारे खाने जो है बाहर पार्सल्स करवाए जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, खानों के साथ साथ एक और पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि हमारी जो अजनास है, हमारी बहुत सारी जो ऐसी चीजें जो कि उगती हैं यहाँ पर, या हमारे बहुत सारे फल ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में होते हैं, वो नायाब है, बाकी ममालिक में उस तरह से नहीं, तो की भी हम देखते हैं कि वो एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। और जैसे आम बिल्कुल सीजन है भी और गुजर रहा है, तो इस तरह की भी हमारी बहुत सारी
1: सरगोधा की कीनू बहुत मशहूर है।
0: यस, सरगोधा की कीनू
1: बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है ना।
2: एग्जैक्टली, आई एग्री, बिकॉज मैं बिलोंग करती हूँ सरगोधा से, तो मुझे आइडिया है इसके बारे में। कहने वाली थी आपने बस मेरे,
0: तो अब हम सर्दियों कि हमें ना किन्नुओं का वो क्या कहते हैं, वो जो है क्या कहेंगे हम,
3: परलंदा
0: कह लें। अच्छा, अब हम बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड को ढूंढने के, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि एक थैला
2: आपको
0: या हाँ बिल्कुल। तो हम सर्दियों में साइमा से जो वो किन्नो खाएंगे।
3: अच्छा, अगर सरगोधा की बात हुई है तो साइमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने नेक्स्ट मंथ सरगोधा ट्रेवल करने है।
2: अच्छा,
3: तो आप मुझे क्या टिप्स देना चाहेंगे कि मैं सरगोधा में कौन कौन सी प्लेसेज हैं जो मैं विजिट करूँ वहाँ?
2: वैसे तो इतना मुझे बस ये है कि थोड़ा खेत वगैरह के लिहाज से, और एक नहर भी जानी जाती है आई गेस, जो दरियाए, पता नहीं मैं भूल गई हूँ गालिबन नाम उसका, बट हम कह लें कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको नेचुरल इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और फिर जो आपको बहुत हम कह लें कि गांव प्रॉपर गांव वाला आपको माहौल देखने को मिलेगा, तो आप मुझे लगता है कि वही सबसे ज्यादा जो है ना, अगर आप शहर से जा रहे हैं तो आपको एक वही बात है जिसके लिए आप हम तरसते रहते हैं कि हमें गांव की जो है नेचुरल जो ब्यूटी है वो देखने को मिले।
0: अच्छा बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और चीज़ मेरे माइंड में आई है कि सरगोधा जो है उसको कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ वही किन्नो वाली चीज कि वो उस पर बड़ा इस तरह से इंटरेस्ट है। उसके अलावा सरगोधा को सिटी ऑफ ईगल्स भी कहा जाता है।
2: इससे मुझे एक याद एक बात अभी याद आई बिल्कुल अभी रिसेंटली हमारे एक सरगोधा का नौजवान है जिसकी एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी पे पब्लिश भी हुई, बहुत सराहा जा रहा है, जो कि कॉन्टेंट क्रिएटर था बेसिकली, बहुत ही निचले लेवल पे काम करता था और फिर किसी ने देखा और फिर उनको बहुत उनका काम पसंद आया और फिर बीबीसी उर्दू पे बेसिकली उनके जो काम है उसको पब्लिश किया गया और बहुत सराहा।
0: ये बड़े एजाज की बात है और पाकिस्तानी नौजवानों का बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस हवाले से, बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रही है। जी अहमद आप कुछ कह रहे हैं।
3: मैं आपकी बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एमएम आलम 65 किसको याद नहीं है,
0: बिल्कुल
3: उनका ताल्लुक भी सरगोधा से ही है।
0: अरे वाह, उनका ताल्लुक भी बिल्कुल सरगोधा से ही है।
1: जो पहली उड़ान थी ना वो सरगोधा मुसफ एयरबेस से ली थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, तो सरगोधा को तो बहुत सारा क्रेडिट जाता है और साइमा हमारे पास सरगोधा से मौजूद है। और अच्छा इत्तफाक ऐसा है कि हम चार लोग इस वक्त आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और हम में से दो ऐसे लोग हैं जो एक ही इलाके से हैं। मेरा ताल्लुक भी चीजावती से है और बिलाल का ताल्लुक भी जो है वो चीजावती से है।
2: नाम कितना प्यारा लगता है जब हम बोलते हैं इसको,
0: हमारे एरिया की भी ना बड़ी एक एनरिच्ड हिस्ट्री और वो तहजीब है जिसको हम अच्छा मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली हड़प्पा के हवाले से, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात की तहजीब के हवाले से, सकाफत के हवाले से, एक सिविलाइजेशन के हवाले से। और जब हम क्योंकि चीजावतनी का ताल्लुक वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है तो वो 10 से 15 मिनट का ही है, तो हड़प्पा जो है वो बिलाल इस चीज़ को सेकेंड भी करेंगे कि वहाँ एक ऐसी, वो सेकेंड इसलिए करेंगे कि जो उस इलाके के लोग हैं जैसे अभी साइमा ने सरगोधा के हवाले से बात की, तो वहाँ की जो सकाफत है वो इतनी पुरानी है कि मेरे साथ एक दफ़ा ना एक सीनियर है वो एक वाकया शेयर कर रहे थे कि वो अमेरिका में गए और वहाँ पर कोई म्यूज़ियम जो है वो विज़िट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वहाँ पर लोग जो है वो हमें दिखा रहे थे, बता रहे थे और फिर उन्होंने कुछ और कंट्रीज़ का भी जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि म्यूज़ियम में जो चीज़ें रखी हुई थी वो कोई 200 साल पुरानी है, कोई 300 साल, कोई 500 साल। तो कहते मैंने सोचा, मैं इम्प्रेस तो नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि भाई हमारी वो तो 5,000 साल पुरानी है।
2: Exactly.
0: मतलब हम अपनी सिविलाइजेशन को देखें तो हम तो इतने कदीम हैं और कोई भी चीज जितनी भी कदीम होती है तो मेरे ख्याल से वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो हमें इस चीज पर बड़ा हम फख्र महसूस कर सकते हैं कि हमें तो वो सारी चीजें जो कि मॉडर्न एरा की हैं हमें वो बहुत पहले से मालूम थी। अहमद ऐसे ही है?
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। बहुत अच्छी लगी आपकी बात।
2: अच्छा हम केपी की बात कर रहे हैं, अगर जो हमारे जो एरियाज हैं बात करें, खूबसूरती बहुत ज्यादा है। पंजाबी जो हम पंजाब से बिलोंग करते हैं तो बहुत दिल चाहता है कि वहाँ पे जाएं, काश हमारा भी पहाड़ों पे घरों पे, जो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो पिक्चर्स या वीडियोस भेज के जला रहे होते हैं हमें। तो कोई है केपीके की साइड से?
0: केपीके की साइड से हमारे एक दो इंटर्न्स हैं लेकिन इस वक्त वो चूंकि मौजूद नहीं है स्टूडियो में, वरना हम उनसे भी कुछ जानते पूछते। लेकिन हम में से मेरे ख्याल से हम सारे जो पंजाब में रहने वाले हैं हम अपने टूर्स के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए अक्सर जाते रहते हैं ना वहाँ नॉर्दर्न एरियाज में, और वो एरियाज हमें बहुत अट्रैक्ट भी इसीलिए करते हैं कि वो खूबसूरत है।
1: अच्छा इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि जब मैं अपनी मतलब मेडिकल की स्टडीज़ या नर्सिंग की स्टडीज़ कर रहा था तो मैंने जो रिसर्च वर्क किया था मेरे साथ हमारी मखलूत एक सकाफत उभर के सामने आई कि मेरे साथ एक केपीके से भी थे, एक बलूचिस्तान से भी थे और मैं पंजाबी था और एक गिलगित बल्तिस्तान से भी थे। तो
2: हम प्रोजेक्ट
1: किया था और बस उसको सिंधी एक जो है वो नौजवान की कमी महसूस की गई, वरना वो प्रोजेक्ट जब हमारा जो था वो बहुत बहुत अच्छा उसको रिकग्नाइज किया गया था, हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट था।
0: अच्छा बिलाल इसमें से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है جو مختلف صوبوں کے لوگ ہوتے ہیں تو ڈائیورسٹی سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے بھی ہیں, کچھ چیزیں لرن کرتے ہیں, ان کا کلچر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک تو پاکستانی اوور آل ہم کلچر کہتے ہیں نا, دوسرا یہ کہ علاقائی کلچرس اور چیزیں جو ہے تھوڑی سی مختلف بھی ہوتی ہیں, منفرد بھی ہوتی ہیں. پنجاب کی چیزیں ظاہر ہے وہاں سے کچھ مختلف ہوں گی, روایات. تو کیا ایسی چیزیں تھیں جو کراس ایکسچینج ہوئی جس کو ہم کلچرل ڈیفیوژن کہتے ہیں؟
1: اچھا, اگر میں ان کی بات کروں, وہ لوگ ویسے تو پورا پاکستان ہی بہت مہمان نواز ہے, وی آل آر ٹو مچ ہاسپٹیبل ان آر جنراز, بٹ یہ ہے کہ جو پختونخوا اور ہمارے جی بی کے کچھ لوگ ہیں یا باشندے ہیں وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں, بہت زیادہ آپ کو کمفرٹیبل فیل کراتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کے پی کے بھی میں چونکہ ہاسٹلائز بھی رہا تو میرا بہت سارا واسطہ پڑا, اور الحمدللہ آج تک میری بہت اچھی ان کے ساتھ دوستی ہے.
2: کیا بات ہے.
1: تو مجھے بہت یہ, اور میرے بہت سارے ٹیچرز بہت سارے کے پی کے سے رہے, اور چونکہ میں کانوینٹیرین ہوں تو وہاں بھی ایک ڈائیورسٹی ملتی تھی کلچر کی نا. ٹیچرز میرے کچھ ہندو تھے, کچھ کرسچنس تھے, ننس تھیں, تو وہ بڑا ایک اچھا ایک کلچر تھا. ہم لوگ بہت سارے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے تھے.
3: آپ کی بات سے مجھے نا ایک شعر یاد آ گیا ہے.
1: جی.
3: سبز ہلالی پرچم کے سائے میں, سبز ہلالی پرچم کے سائے میں, ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے.
1: واہ, کیا بات ہے,
2: کیا بات ہے, کیا بات ہے. بالکل.
3: اگر ہم اگر لاہور کے چاروں صوبے ہی ہمارے ہیں,
1: بالکل
3: چاروں صوبے ہمارے ہیں, ہر قسم کا بندہ یہاں پہ رہتا ہے, بہت لوگ رہتے ہیں, بہت کلچر یہاں پہ ہیں, تو ہمیں مطلب فخر ہے کہ ہم.
0: ہاں بالکل, ایک انرچڈ کلچر ہے ہمارا, ہماری ثقافت. اور بڑی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں, بہت سارے سیکٹس کے لوگ ہیں, مسالک کے لوگ ہیں, بہت سارے کلچرز رکھنے والے لوگ ہیں, بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, ڈفرینٹ روایات کے لوگ ہیں, اور ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستان کی ایک یہ پوائنٹ بھی بڑا ہے کہ ہماری جو یانگسٹرز کی تعداد ہے, پاپولیشن ہے, بہت زیادہ ہے.
1: بالکل.
0: اور کسی بھی ہم قوم کی جب ترقی کو دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کا اس میں ظاہر ہے, کیونکہ نوجوان جب ہوتے ہیں, جب ینگ ہوتے ہیں انسان, تو وہ ایک کہتے ہیں نا گرم خون ہوتا ہے, ایک جوش ہوتا ہے, ہاں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے.
2: کسی کو سن کے ذہن میں آیا کہ جو نغمہ ہے, ہم لوگ کہتے ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, تو ڈفرینٹ جو بھی آپ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں, یہی بات ہم لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم نغموں تک محدود نہیں رہنا چاہیے, بٹ آئی گیس کہ ہم لوگ کافی عملی طور پہ ہم نے دکھایا بھی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے قائد اعظم نے بھی کہا تھا آزادی کے طور پہ, آپ کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتے ہوں آپ آزاد ہیں اپنے مسجدوں اور مندروں میں جانے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جین زی کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے, مجھے لگتا ہے ہم لوگ کرتے بھی ہیں, ہم لوگ بہت آزاد خیال بھی ہیں,
0: ایکسیپٹنس
2: ہے بہت زیادہ.
1: میں بس یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے, اور اس میں جا بجا پھول کھلے ہوئے ہیں, ہر جو ہے وہ پھول اپنی ہی ایک خوشبو اور ایک مہک اور اپنا ایک رنگ رکھتا ہے, جو ایک گلستان یا جہاں بھی وہ جاتا ہے تو اس اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے, جس سے سب لوگ جو ہے وہ مہک جاتے ہیں.
0: حلال یہ موجود کی صحیح گلستان. میں وہی کہہ رہی ہوں, احمد کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ بلال آپ کہاں سے لاتے ہیں ایسے الفاظ جو ہمارے سامعین کو شدید والا متاثر کرے پازیٹیو وے میں؟
1: اس سب میں میرے ٹیچرز کا بہت کردار ہے, میرے پیرنٹس کا بہت کردار ہے, میں سمجھتا ہوں جو بھی ہے آج جس طرح سے بھی ہوں, میرے فرینڈس کا بہت کردار ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے جہاں سے کچھ اچھا ملے تو میں اس کو سیکھوں نا. میں اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہونے پر ہمیشہ فخر کرتا ہوں, اور اسپیشلی پاکستان کے اندر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کچھ نیا سیکھنے میں, کچھ اچھا سیکھنے میں, کچھ پازیٹیو نا مثبت انداز میں. تو مجھے بھی نہیں پتا ہوتا, اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے, اور میرے ٹیچرز اور میرے فیملی ممبرز اور فرینڈس کی دعائیں ہیں, شاید مہربانیاں ہیں جو مجھے یہاں تک لائیں.
0: بلکہ
1: ہم سب کے ساتھ ہی یہ چیزیں چلتی ہیں,
0: ہم سب کے ساتھ ہی. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آج ہم چار لوگ ریڈیو پاکستان پہ, ہمیں ایک چانس ملا کہ ہم لوگوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, تو یہ بھی ہمارے بڑوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ.
2: بالکل.
0: اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا جی, ٹھیک ایک بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے. ابھی ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں جی ایک بہت ہی خوبصورت سا ملی نغمہ, آپ سب کا پسندیدہ, سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. یہ ملی نغمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں, سنتے رہیے جی FM 101.

जी जनाब, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम 101 और प्लेटफॉर्म है रेडियो पाकिस्तान। और इस मिनी नगमे को सुनने से पहले हम बात कर रहे थे कि बतौर पाकिस्तानी हमें किन बातों पर, किन चीज़ों पर फ़ख्र है, किन चीज़ों पर हम प्राउड फील करते हैं। उसमें बहुत सारी बातचीत हुई। साइमा ने बहुत सारे पॉइंट्स रखे, अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने बात की और ज़िक्र किया कि हमारी ज़ुबानों का कल्चर क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारे नौजवानों का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारी खूबसूरती जो कि पाकिस्तान में हर जगह जो है वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, और पंजाब भी बड़ा खूबसूरत है। हम जब भी खूबसूरती की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये चीज़ आती है, सकाफत क्या है, हमारे नौजवानों का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारी खूबसूरती जो कि पाकिस्तान में हर जगह जो है वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। और

0: क्या बात है, आप लोगों को बताते चले कि हम तमाम लोग यहाँ पर इंटर्न्स हैं और रेडियो पाकिस्तान लाहौर में इस वक्त इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो कि अब इख्तितामी मराहिल में है। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखी हैं, लर्न की हैं, अल्फाज की अदायगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, बात को कैसे करना है, कैसे अदा करना है। हमारे बहुत सीनियर आर्जन जिनकी आवाज़ें आपकी समातों तक पहुँचती रहती हैं, उन आवाज़ों से हमने सीखा है और हम उनकी शागिर्दी में आ चुके हैं। और आपको ये भी बताते चलूं कि अगर आप प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर है जो 042-111-0001। आप इस नंबर पर अगर कॉल करेंगे तो हम जो है वो आपकी कॉल लेंगे और आपकी आवाज़ जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। सो जनाब कि कौन है जी हमारे साथ?
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: जी बिल्कुल, एफएम 101 से बात कर रहे हैं आप, तो कौन बात कर रही हैं और कहां से बात कर रही हैं? अरे वाह, आपका अपना ताल्लुक रहा है जी रेडियो पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब आप अरे ये आपका बड़ापन है आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान। ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने हमें मुबारकबाद दी है और हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है और इन्होंने कहा है जी रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का, और जाहिर है अच्छा नहीं, मैं तो कहूँगी बेहतरीन है, क्योंकि जो नौजवान आवाज़ें हैं वो पहुँच रही हैं बाकी लोगों तक भी, और जो टैलेंट है वो जो है वो आगे आएगा और जिसको कहते हैं ना उसको पौधे को पानी जो है वो मिलेगा। सो कुछ और कॉलेज को भी अभी मैं बढ़ रही हूँ जी अहमद की तरफ, और अहमद आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, कोई शेर सुना दीजिए।
2: अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा शेर सुनाता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हमें फख्र है उन शहीदों पर, हमें फख्र है उन शहीदों पर जिन्होंने वतन के लिए जान दी। हमें फख्र है अपने आज को कुर्बान करके हमें आजादी की पहचान दी।
3: बहुत खूब,
0: क्या बात, क्या खूब कहा, क्या बात है। हमारे साथ एक और कॉल है, उसके बाद हम अहमद से कोई और शेर भी सुनेंगे। जी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है, बल्कि दोबारा कॉल आ रही है, हम दोबारा कॉल लेते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, आपकी जी क्या हाल, ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप बताइए कैसे हैं?
4: शुक्र है अल्लाह का। आपकी जी तो माशाल्लाह बढ़िया सोनिया गला दूजे साहब इन भी फलूत है पाए ना रानो भी तो जी आप ही नहीं।
0: बहुत शुक्रिया सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਚੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਜੱਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ।
0: ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ?
4: ਆਪ ਜੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ
2: ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ
4: ਅਸੀਂ ਆ ਮੁਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸ਼ਾਦਿਆ ਰੱਕੜ।
2: ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ?
4: 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਜ਼ ਪੁਕਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਹੋਣੀ
5: ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖੈਰਾਤ ਔਰ ਸਦਕਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ।
3: ਮੁਲਤਾਨ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੁਲਤਾਨ ਕੇ
0: ملتان سے تعلق نہیں ہے ان کا,
1: ملتان چنگی.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आजादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आजाद हुए थे और आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हैं।

0: Assalamu alaikum, this is your boy Ali Ahmed live from the mic of Radio Pakistan FM 101 Lahore.
1: Represent kar rahe hain hum
0: is waqt ghadi ki jo sui hai uske mutabik 2:09 ho rahe hain aur कैलेंडर ने आपके नाम पैगाम भेजा है कि 12 अगस्त की ये दोपहर बहुत ही खुशगवार जा रही है। कहीं कहीं बादल हैं, कहीं कहीं धूप है, तो बड़ा ही ना कोई अच्छा सा मौसम चल रहा है। और इतना ही अच्छा मौसम चल रहा है जितना अच्छा आप उम्मीद करता हूँ आज का हमारा प्रोग्राम होने वाला है। और दिल से देखा पाकिस्तान का आज का जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और इसका जो टॉपिक है वो बहुत ही उम्मीद करता हूँ कि अच्छा जाएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे नौजवान होते हैं जिनके पाकिस्तानियों के पाकिस्तान का जिनके ऊपर ना बड़ा किरदार होता है। आपको पता है कि अगस्त 14 अगस्त चल रही है और बहुत ही इंडिपेंडेंस का जो जज्बा है, तो उसी के हिसाब से हमारा जो काबिले फ़ख्र शख्सियात जो है हमारे आज का प्रोग्राम का नाम है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त स्टूडियोज़ में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 को होस्ट भी मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल सामने लाइबा आसिफ बैठी हैं, उनकी दाहिनी जानिब पे ईमान ज़हरा बैठी हैं और बिल्कुल बाहीं जाने पे लाइबा के बैठे हैं नयान अली अब्बासी। अस्सलामु अलैकुम आप सब।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसे हैं आप सब? ठीक हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: बस बेहतरीन बेहतरीन।
3: जी जी बिल्कुल, हम भी बेहतरीन, आप भी बेहतरीन। अब उम्मीद करते हैं कि हमारा ये शो भी इतना ही मजेदार पुरजोश जाए।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: जी हाँ, मेरा आज शो स्टार्ट होने को, हम प्रॉपर शो स्टार्ट करने से पहले मेरा मेरे को होस्ट से एक सवाल है कि लाइबा, अगर हम देखें कि ये पाकिस्तान एक किताब है, पाकिस्तान एक किताब है, तो बताएं कि इस किताब के किरदार कौन होंगे?
4: जी, मेरे तो ख्याल में वो किरदार होंगे जिन्होंने सरहदों की हिफाजत की, जिन्होंने बीमारी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और जिन्होंने साइंस की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिन्होंने पूरी आलमी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान भी वजूद रखता है और पाकिस्तान का भी एक नाम है, पाकिस्तान की भी एक पहचान है, उन्होंने ये बताया। और कुछ लोगों ने सिर्फ साइंस के ज़रिए या सरहद के ज़रिए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने कलम, आवाज़ और कैमरे की वजह से उन फ़न के ज़रिए हमारी पहचान, पाकिस्तान की पहचान करवाई और उन्होंने दुनिया के सामने सब्ज हयागी परचम बुलंद किया और उन्हें बताया कि पाकिस्तान भी एक बहुत ही बेहतरीन कौम है।
2: तो मैं हूँ आपके साथ नयान अब्बासी, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उम्मीद करता हूँ तमाम सामईन सुनने वाले खैरियत से होंगे। तो आज अगले एक घंटे के लिए हम आपके शरीके सफ़र हैं, इसमें हम खूबसूरत बातें करेंगे उन शख्सियात के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आएगी, इसे इंजॉय करेंगे। साथ साथ अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो हमें आप लाइव कॉल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर अली बताएंगे।
0: जी, तो उसका नंबर आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, 04211100101। दोबारा बताता चलूं, 04211100101। जी, तो ना सामईन, मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 14 अगस्त की जो हमारी सेलिब्रेशन है आप उसको बकायदा पूरा इंजॉय कर रहे होंगे और उतने ही पुरजोश होंगे जितना कि मैं पुरजोश हूँ। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ अपना कि मुझे तो ये जो पूरा टेन्योर है ना, ये 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त का ये जो बीच का ये जो फैक्टर आता है, टाइम स्लॉट आता है, तो इसमें ना अलग तरीके के जो जज्बात आते हैं। किस तरीके के कि यार आप देखते हैं कि आप 1 से 5 अगस्त तक अगर आप देखें तो जो ये हैं रोड्स हैं वहाँ पे झंडे लगने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगने शुरू हो जाते हैं। मैं कल भी जब गुजरा था तो मैंने देखा जोहर टाउन वाली साइड पे कि इतने बड़े बड़े झंडे और गाड़ियों में उन्होंने बाकायदा पीछे वो झंडे अपने वो लगा दिए हैं और जो झंडियाँ हैं वो उसकी भी खरीदो फरोख्त जो है वो शुरू कर दी हुई है उन्होंने। तो जनाब, मैं तो झंडा पिछले साल ही ले आया था, तो क्योंकि मुझे तो इतना शौक़ था, मैंने झंडा बस एक ला के रख दिया, अब मैं वही झंडा यूज़ करूँगा। लेकिन لیکن کیونکہ میں ایک لڑکا ہوں تو میں نیان آپ اس چیز کو ضرور میری جو بات کو ہے اس کو سیکنڈ کریں گے کہ میں آپ کے پاس بھی ایک شرٹ لازمی ہوگی, وائٹ کلر کی شرٹ ہوگی, اس کے اوپر یا تو ایک جھنڈا ہوگا یا اس میں کوئی نہ کوئی گرین ٹچ ہوگا یا پھر اس کے اوپر آپ نے ایک بیج ضرور لے کے رکھا ہوگا. تو جناب وہ تو 3-4 سالوں سے ایک شرٹ چل رہی ہے, تو میرا تو آؤٹ فٹ 14 اگست کا وہی ہے. لڑکیوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی جو یہ 14 اگست کی تیاری ہے یہ کس طریقے کی ہوتی ہے؟
5: جی علی, ہم تو بھائی نیو ڈریس لیتے ہیں ہر بار, ہمیں جتنا جنون ہے بھائی, کیا پتا کہ اگلی 14 اگست پہ کوئی اور ٹرینڈ آ جائے. بھائی ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے, وائٹ گرین تو بنانا ہی بنانا ہے, لیکن ڈیزائننگ کیا کرنی ہے. آپ لوگوں نے شرٹ پینٹ پہن کے گزارے کر لینے ہیں, ہمیں چاہیے نیو ڈیزائنز, ہمیں چاہیے نیو لیسز, نیو ٹرینڈز.
0: اچھا ویسے 14 اگست پہ آپ کیا ہی ٹرینڈ پکڑ لیں گی؟
5: ارے آپ انسٹا پہ آئے تو آپ کو بتائیں ٹرینڈس کیا ہیں.
0: لیکن مجھے بتائیں تو صحیح, کیا مطلب کہ آپ نے کیا مطلب کہ کوئی اسپیسیفک اس میں کیا کہتے ہیں آپ کا جو دوپٹہ ہوتا ہے, دوپٹہ یا اس کے اوپر کوئی میناکاری کوئی اسپیسیفک ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے تھوڑا سا تو بتائیں.
5: ڈریس تو وہی ہوتا ہے لیکن اس میں ذرا وائٹ گرین کو اسپیشل پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس پہ ڈیزائننگ ہماری یہ سوچ کے ہوتی ہے کہ اب ہمارا ڈریس جو ہے وہ صرف ڈریس نہیں ہے, یہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ, تو اس کے اکارڈنگ ہم لے کے چلتے ہیں. ساتھ میں ہماری اسیسریز ہوتی ہیں, چوڑیاں, جولری بھی ہمیں گرین چاہیے, چوڑیاں وائٹ گرین چاہیے,
0: گرین ہی جا رہا ہے, وائٹ نہیں آیا ابھی تک. جی تو سامعین میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. تو ایک ملی نغمے کی طرف چلتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں.

0: जी तो सामईन वेलकम बैक। और अब टॉपिक के ऊपर आते हैं, लेकिन टॉपिक से पहले मेरा एक आपके लिए सवाल है। सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी शख्सियत है जिसने पाकिस्तान को नोबल प्राइज दिलवाया था। पहला मुसलमान कौन था जिसने पाकिस्तान को नोबल प्राइज दिलवाया था। नाज़रीन, आप इस सवाल का जवाब हमें कॉल पे दे सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 04211100101। दोबारा बताता चलूं, 04211100101। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। नाज़रीन, बात करते चले साइंस के बारे में। हर शोबा जो है पाकिस्तान का, वो किसी ना किसी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक अलग अपनी हैसियत रखता है। उसी तरीके से साइंस भी एक काफ़ी पर्टिकुलर वैल्यू रखता है। और मैं समझता हूँ कि एक बंदा जिसके पास टैलेंट है, वो टैलेंटेड तब होता है जब अपनी वो टैलेंट जो है वो दूसरों को भी वो सिखा सके। इसी तरीके से हमारे पास एक शख्सियत है, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत का नाम आता है, अब्दुल कदीर खान। इनके बारे में हमें बताएंगी लाइवा। जी लाइवा
1: जी, आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब्दुल कदीर खान ने के हमारे लिए क्या उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। मेरे ख्याल से कुछ लोग होते हैं जो तारीख का हिस्सा बनते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तारीख का टोटल ही रुख ही बदल देते हैं। अगर अब्दुल कदीर खान ना होते तो आज पाकिस्तान उस तरह से ना होता जिस तरह से आज चल रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं होता कि किसी शख्स ने क्या हासिल किया, सवाल होता है कि किस शख्स ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान को क्या दिया। हमें भी यही सवाल होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। इसी तरह से अब्दुल कदीर खान ने जो हमें पाकिस्तान को दिया, वो कब उसका नेम बदल कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमें एटम बॉम्ब दिया, उन्होंने हमें पूरी दुनिया के सामने पहचान करवाई कि पाकिस्तान एक बुजदिल कौम नहीं है, पाकिस्तान भी अपनी पहचान रखती है, पाकिस्तान का अपना नाम है। जब इंडिया ने एक अपना एटम बम बनाया तो हमें भी ज़रूरत थी कि हमें कहीं से भी हमगा ना हो जाए। अपना दिफा करने के लिए पाकिस्तान को भी चाहिए था कि वो अपना कुछ करे उसके लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो अब्दुल कदीर खान ने साइंस जो थी, धातुओं की साइंस, वहाँ से जाकर उन्होंने पूरा अपनी फील्ड ही चेंज कर दी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया और उन्होंने बाहर जाकर यूरोप में तालीम हासिल की। फिर पाकिस्तान एक खामोश शहर से, कोहटा से, दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने गए। और ये कहानी सिर्फ एक साइंसदान की नहीं है, ये कहानी है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, जो कि जिन्हें कहा जाता है मोहसिन पाकिस्तान। पाकिस्तान के मोहसिन थे ये, और इन्होंने बहुत सारे काम किए। और सिर्फ हीरो उन्हें कहना एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है कि हम उन्हें हीरो कह दें, ये एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थी जिनके लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं है। आज अगर हम इनको खराज तहसीन पेश करें तो हमारे पास इतने ख़ास अल्फाज नहीं होते। और यही थे जिन्होंने दो दफ़ा पाकिस्तान के लिए निशान इम्तियाज़ हासिल किया।
0: बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा लाइबा, मैं आप जब बात कर रही हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, तो एक ना माइंड में जहन आता है, बात आती है कि यार ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान को इस लेवल पे पहुंचा दिया कि कोई भी पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर जो है वो नहीं देख सकता कि यार मैं डोमिनेंट सी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। ये वो बंदा है कि जिसने, मैं इनको रिस्पेक्ट दूंगा कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इतना काबिल बनाया है कि वो किसी भी बंदे की या किसी भी मुल्क की आंखों में आंखें डाल के कह सकता है कि भाई मैं भी किसी काबिल हूँ, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ,
2: मैं पाकिस्तानी हूँ।
3: एटमी ताकत बनाना एक बड़ी एजाज की बात है पूरी मुस्लिम के लिए भी, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना इससे बड़ी बात और हमारे मुल्क के लिए नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल
2: 28 मई 1998 ये हमारा योम तकबीर का दिन है कि जिस दिन हम पाकिस्तानी लोग दुनिया की सातवें ऐसा मुल्क था जो कि एटमी ताकत का हिस्सा बना। बाकी और कोई मुल्क नहीं है, दुनिया के सिर्फ 7 मुल्क हैं। ये अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ही खिदमात और अनथक मेहनत है जिन्होंने हमें उस रेस में हमें जोड़ा।
0: जी बिल्कुल अच्छा, मुझे लाइबा आपसे ही बात करता हूँ कि जो रुतफाओ नाम आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट नाम है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए। तो लाइबा, बल्कि आपसे तो मैं अभी बात कर ही चुका हूँ, ईमान आप बताएं इस बारे में کہ کیا نام ہے یہ رتفاؤ کے پیچھے کی کیا ہسٹری ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں.
2: جی بالکل، ڈاکٹر رتفاؤ کے لیے میں اگر شروعات ان لفظوں سے کروں کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی قوم کے لیے علم چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے اپنی زندگی پوری لگا دیتے ہیں، اور اس طرح کی شخصیت میں سب سے فہرست میں اول پہ نام آتا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کا، جو کہ 9 ستمبر 1929 جرمنی میں پیدا ہوئی، جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی جرمنی سے حاصل کی، لیکن اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ پاکستان میں گزارا، پاکستان میں سے جزائم جیسی بیماری کو ختم کرنے میں لگایا. جی بالکل، اصل میں جو ڈاکٹر رتفاؤ ہیں وہ پیدا جرمنی میں ہوئی، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن 1960 میں آپ پاکستان آئیں. پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے جس طرح پاکستان اسپیشلی کراچی میں آئیں، شہر کراچی میں آئیں، اور ادھر جب انہوں نے دیکھا کہ جو مریض جزام کی بیماری میں مبتلا ہے انہیں کس طرح بدنامی قسم کی ٹائپ کی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، وہ تنہائی کا شکار ہیں، کوئی لوگ انہیں صحیح طرح بلاتے نہیں ہیں، تو وہ ایک درد دل رکھنے والی ڈاکٹر تھیں. علاج تو ہر ڈاکٹر کرتا ہے، لیکن جو دل میں درد رکھ کے علاج کرے وہ ویسی ڈاکٹر تھی، جنہوں نے محبت، شفقت، پیار کے ساتھ علاج کیا، ان مریضوں کو انسان سمجھ کے پیار کیا. اور بالکل ان کی اگر ہم کارکردگیوں کی بات کریں جو انہوں نے پاکستان میں کی، انہوں نے میری ایڈلیڈ لپروسی سینٹر جو کراچی میں موجود ہے اس کے کام میں بہت زیادہ کوشاں رہی ہیں، بہت انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. اور پھر 1996 میں انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے پاکستان کو ایشیا کے ان ممالک میں شامل کیا جہاں جزائم پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے. یہ بالکل ڈاکٹر رتفاؤ کی خدمتوں کی وجہ سے، ان کی ریسرچ کی وجہ سے ہو سکا.
0: بالکل ہے، صحیح ہے. سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بڑا انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ کال کر سکتے ہیں آپ ہمارے پروگرام کے اندر، ہمارا نمبر ہے 0422111001. اسی کے ساتھ ایک ملی نغمے کی طرف چلتے ہیں. اسٹے ٹیون.

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: ٹیون ان ٹو ون ابو ایف ایم 101۔

0: सिंध की बात करते हैं तो सिंध के बहुत से घरों में मेहमान को इज्जत से बिठाना और जो घर में हो दिल से पेश करना खूबसूरत रिवायत है। चाय हो, शरबत हो या सादा खाना, बात नियत की होती है।
1: कभी एक कप चाय भी इतनी मोहब्बत से मिलती है कि जायका देर तक याद रहता है। मेहमान नवाजी का ज़्यादा ताल्लुक है वो जेब से कम या खाने से कम, लेकिन जो आपने टाइम दिया होता है, जो आपकी नियत होती है, उसे ज़्यादा होता है।
2: बिल्कुल ऐसा ही है कैपी के बहुत से घरों और हुजरों में मेहमान को पहले आराम से बिठाया जाता है। चाय या कावे के साथ बैठकर गुफ्तगू करना खुद मेहमान नवाजी का अहम हिस्सा बन जाता है।
3: केबी के की सबसे खूबसूरत चीज के वहां पे आपको जो कावा पेश किया जाता है और उसके साथ जो गपशप होती है, क्या ही बात है उसकी।
0: कभी मेहमान को दिया गया वक्त ही सबसे बड़ी दावत होती है। अगर हम मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं तो मेरे दोस्त सफर पर गए थे और उनके बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। करीब ही एक कोई कारखाना भी नहीं था, ना सिग्नल थे और दोनों बहुत परेशान, और करीब एक गांव से कुछ लोग आए। उन्होंने उन्हें धूप से छांव में बिठाया, उन्हें पानी पिलाया, उन्हें खाना पूछा, और जब उनसे पूछा गया कि इसके पैसे क्या लेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि आपका खर्चा सिर्फ मैकेनिक का है। ठीक है, ये हमारी मेहमान नवाजी है।
2: बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तमाम सूबे अपने आप में मेहमान नवाज हैं, लेकिन जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है ना, पाकिस्तान मुल्क अपने आप में एक बड़ा मेहमान नवाज मुल्क है। और इस वक्त हो चुका है अपने जो नाज़रीन सामईन जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे बातचीत करने का। तो जो सामईन हमें सुन रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे फौरी अपने फ़ोन उठाएं और हमसे हमारे साथ इस शो में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करें। और आपको मैं नंबर बताता चलूं कि 04211100101, नंबर दोबारा दोहराता हूं, 04211100101। एक बार दोबारा आप सुन लीजिए, 04211100101। तो फौरी कॉल कीजिए और इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत कीजिए।

0: गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ के पहाड़ी इलाकों में गर्म चाय, कहवा या उनका मुकामी खाना जैसे रोश हो गया, मैं कहता हूँ रोश की क्या ही बात है, उनकी क्या खाना है वहाँ का। और एक जो आप वहाँ का नेचुरल जो सीन देख रहे होते हैं, वहाँ की सर्दी बहुत अच्छी है, वहाँ के मंजर बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे ही आप वहाँ जाते हैं वो आपको पहले तो पानी पेश करते हैं, चाय पेश करते हैं, कहवा पेश करते हैं, उसके बाद आपको आराम का कह देते हैं। जैसे ही आप आराम करके आते हैं आपके लिए दस्तरखान सारा का सारा सजा होता है।
1: और अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में भी गर्म मशरूब, घर का खाना और सुकून से बैठकर गुफ्तगू मेहमान को अपना पन देती है। खूबसूरत मंजर अपनी जगह, इंसानी गर्माहट अपनी जगह।
2: बिल्कुल। अब हमाद आप मुझे बताइए कि गांव के, ये तो शहरों सूबों की हो गई, अब हम नीचे तक जाएंगे गांव तक, मुझे बताइए गांव की मेहमान नवाजी का कभी आपने लुत्फ लिया है, कभी किसी गांव गए हो तो उसका कोई किस्सा है आपके पास, बताएं।
3: बिल्कुल, मेरा अपना बज़ाहिर कोई गांव नहीं है, मगर मैं एक गांव में गया था और वहाँ की अगर मैं बात करता चलूँ तो उनकी मेहमान नवाजी की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, कि उन्होंने जो भी चीज़ें हमारे आगे पेश की वो सब खालिस थी। उनकी सब्जियां हो, चाहे दूध हो, दही हो, कुछ भी हो, हर चीज़ मिलावट से पाक। और वहाँ की फ़िज़ा की क्या बात है कि इतनी साफ़ सुथरी हवा, और उनके साथ बातचीत करने का लुत्फ ही एक अलग
0: है। हाय, मेरा दिल करने लग पड़ा है गांव जाने का यहाँ से।
2: अच्छा जी, तुबा आप बताएं मुझे, गांव की मेहमान नवाजी से कभी आप लुत्फ़अंदोज़ हुई हैं, आप क्या कहेंगे गांव की मेहमान नवाजी के हवाले से?
1: गांव की मेहमान नवाजी मैंने कभी एक्सपीरियंस तो नहीं की, लेकिन मैंने बहुत सुना है और मैं गाँव जाना चाहती हूँ।
2: अच्छा,
1: तो जब मैं जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर।
2: जी अब्बास, आप बताइए गांव की मेहमान नवाजी के हवाले से, यहाँ गांव में किस तरह ज़िंदगी बसर होती है, बताएं थोड़ा सा।
0: यार मैं जिस इलाके से हूँ बिहाड़ी से, वहाँ पे जो गांव है हमारा, हाँ, वहाँ पे आम का बाग है हमारा,
1: आना चाहती हूँ।
2: अच्छा,
1: तो जब मैं जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर।
2: जी अब्बास, आप बताइए गांव की मेहमान नवाजी के हवाले से, यहाँ गांव में किस तरह ज़िंदगी बसर होती है, बताएं थोड़ा सा।
0: यार

0: अब आम है, आप उसने आपने ट्यूबवेल में डाले हुए और आगे से नाली में बह के आगे चले गए।
1: एक तो निकल गए थे, उनको ढूंढते ढूंढते शायद हम गांव से बाहर चले गए थे।
0: अच्छा भाई, ये बड़े मजेदार किस्से होते हैं गांव के, हमने बड़ा एंजॉय किया इस तरह। बस गांव की बात ही कुछ और होती है।
2: आप लोग तो अपनी यादें ताजा करने लग गए।
0: जी जी, बात बताइए।
3: एक दिल की बात कहना चाहूंगा, हमने शुरू में अपने जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, हमने उन्हें कहा था कि इस शो के बाद आपको भूख लग सकती है, लेकिन भूख इस वक्त हमें लगनी शुरू हो गई है आम का नाम सुन के।
0: ओए होए होए होए जी, अब चलेंगे मुख्तसर इलाकाई दौरे की तरफ चलेंगे। मैं इलाका बोलूंगा, आप तीनों एक छोटी सी तस्वीर देंगे, ठीक है? ओके हो गया जी। पंजाब बताइए। अब्बास आप बताइए।
1: प्लेट खाली हो तो होर लवो।
0: ओए होए होए होए। तुब आप बताइए।
2: लस्सी चाय और लंबी लंबी बातें।
0: हमाद आप बताइए।
3: दोस्तों की बैठक।
0: ओए होए होए। और अगर बात की जाए मेरी अपनी सिंध के बारे में तो क्या कहेंगे आप?
1: यार सिंधी टोपी ला दो मुझे बस कहीं से।
0: ओए होए, तू आप बताइए।
2: आपको देखकर तो सादगी।
0: ओए होए होए, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अगर अब बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की तो क्या कहेंगे हमाद आप? खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या जहन में आता है आपके?
3: सबसे पहले पठानों का मशहूर कावा।
0: ओहो हाँ बिल्कुल। और अब्बास आप बताइए, आपके जहन में क्या आता है जब बात आती है खैबर पख्तूनख्वा की?
1: यार कावा ही आता है, लाहौर में भी हमने पठानों का कावा बहुत दफा पिया, आपको पता है, आपके साथ ही पीते रहे हैं। पता ही कितने जो है हमने लीटर कावा ही पीते रहे हैं पूरे दिन के अंदर। और मैं कहता हूँ वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
0: स्पेशली जिस टाइम हम फैट लॉस की जर्नी पे थे, लेकिन वो हुआ नहीं,
1: पूरी नहीं हुई, लेकिन कावे का जो मजा है वो पूरा हुआ।
0: कावे का मजा दोबारा किया, बिल्कुल जी। तुब आप बताइए, जब बलोचिस्तान का नाम आता है क्या तस्वीर आती है आपके जहन में? का तो आपने बता दिया, बलोचिस्तान का बताएं।
2: जो घर में हो वो दिल खोल कर बांट देते हैं बलोचिस्तान।
0: बिल्कुल। अब्बास बताइए, गिलगित बल्तिस्तान की जब बात आती है तो?
1: यार वहाँ का मौसम बहुत मुझे प्यारा लगता है, बहुत अच्छा मौसम है वहाँ का।
0: अच्छा,
1: वहाँ पहाड़ों में बैठे हों, आपके हाथ में चाय का कप हो या और आपके साथ आपका एक खूबसूरत साथी हो, तो मेरे ख्याल से आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा।
0: जनाब तमाम इलाकों की बात हो और छोटी सी जन्नत के टुकड़े की बात ना हो, कश्मीर की बात ना हो, तो वो कश्मीर के साथ थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो हमाद आप बताइए, कश्मीर का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में क्या तस्वीर आती है आपके?
3: वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और उनके खुले दिल से हर चीज़ पेश करना, चाहे वो घर की चीज़ हो या कुछ भी।
0: बिल्कुल भाई, हर इलाके की अपनी मेहमान नवाजी है, ऐसा ही है। अभी हाल ही में जो है हमारी छुट्टियां हुई थी, तो छुट्टियां तकरीबन कोई थी 3-4 दिनों की, तो मुझे सिंध जाने और आने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो मैं हॉस्टल पे था, तो मेरा एक रूममेट है फैसल नाम का, तो उसने कहा यार अपने गांव तो जा नहीं सकते, 3-4 दिन छुट्टी है, यहाँ बैठ के सो सो के करना ही क्या है आपने, चलो मेरे साथ ना आप चल रहे हैं मेरे घर चल रहे हैं।
1: क्या बात।
0: ओए होए होए भाई, मैंने उस दिन पंजाबियों की मेहमान नवाजी भी देखी। ये इसका बहावल नगर में उसका घर था, यहाँ से गए 2-2.5 घंटे का सफ़र करके, जो उन्होंने मेहमान नवाजी की और जिस तरह उन्होंने मुझे ठहराया, मैं कहता हूँ लेविश भाई लेविश।
1: खाना क्या खाया था ये बताइए पहले तो।
0: खाना भाई मतलब मैंने सिर्फ सिंध में देखा था कि भाई देसी घी और मक्खन मिलता है, लेकिन भाई पंजाब में भी है, मुझे पहली मर्तबा पता चला, क्योंकि यहाँ के मैं तो लाहौर में रहता हूँ, मैंने ये पाए और जिंगर बर्गर और इनके अलावा कोई कुछ नहीं खाया था, लेकिन पहली बार वहां जाके मैंने मक्खन भी खाया, देसी घी भी खाया, साग और लेवल हर चीज भाई जो आप सोच सकते हो,
3: जबरदस्त।
0: मतलब मैंने लाहौर की जो है वो भी देहात लाइफ भी मैंने देख के आया, मैं वहां के जाके उनके साथ क्रिकेट खेली, जो मुझे खेलनी नहीं आती, लेकिन मैंने इंपायरी की वहां पे।
1: मतलब आपको अगर चूज करना पड़े तो कौन से वाला ज्यादा अच्छा आपको लगता है, सिंध वाला अपने वाला? अगर आप अपनापन थोड़ा सा जरा साइड पे करें तो आपको अपना वाला ज्यादा अच्छा लगेगा या पंजाब का आपको ज्यादा मजा आया?
2: पंजाब
0: सब जिस सब। जो चीज पाकिस्तान में आती है हर वो चीज, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो।

जनाब, इसी के साथ अपने मेजबान सिराज भट्टी और उसके तीन को होस्ट हमाद सैयद अब्बास तूबा आरिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: Keep smiling and drive carefully, okay?
5: Okay.
6: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
7: Tune in to One Above, FM 101.

बात नहीं, नंबर हैं तो दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे और वहाँ पर इंशाल्लाह आप बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे। मैं आज यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि अभी बताया गया कि लैपटॉप दिए गए, लैपटॉप आज तक हमने 7 लाख लैपटॉप्स पाकिस्तान भर के काबिल तरीन बच्चों और बच्चियों को तकसीम किए सिर्फ मेरिट के ऊपर, सिर्फ मेरिट के ऊपर। एक भी कोई अगर सिफारिश की कोई बात कर दे तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। और इस साल इंशाल्लाह आपको 2.5 लाख, वो भी मेरिट के ऊपर, 2.5 लाख जो बच्चे हाई अचीवर्स होंगे, चाहे वो इस्लामाबाद के हैं या पिंडी के हैं या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, 2.5 लाख बच्चों और बच्चियों को इनाम के तौर पर क्रोम बुक्स वो दिए जाएंगे इंशाल्लाह, और उससे आपकी तालीम के मैदान में और भी आप आगे बढ़ेंगे। एक ज़माना था, मैं नाम नहीं लूँगा, जब मैं लैपटॉप पंजाब में अपने बच्चों और बच्चियों को, चाहे वो सिर्फ पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूलों को के बच्चों को, बच्चियों को हमने शामिल नहीं किया था, क्योंकि हकदार जो हैं प्राइवेट स्कूल के, जो बच्चे और बच्चियों के वालदैन के पास अल्लाह ताला के फ़ज़्लो करम से वो वसाइल हैं कि उनको वो लैपटॉप उनके हाथ में थमाएं, तो मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह, आज जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या आपको इस लैपटॉप ने एक जदीद ज़माने में दाखिल नहीं किया? क्या इस लैपटॉप ने आपको घर में बैठ कर इज्जत से रोजगार कमाने का मौका नहीं दिया? तो मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा, वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं, मिशन जानता हूं, और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। मैं यहां पर आज इस नौजवान नस्ल के सामने इस बात का ये अदा करना चाहता हूँ कि जब तक मुझे अल्लाह ताला ने ये खिदमत करने की जिम्मेदारी दी है, मैं हर चीज़ कर गुजरूँगा आपकी बेहतरी, आपकी आला तालीम के लिए, आपके प्रोडक्टिव जॉब्स के लिए, आपको इज्जत से, आपको बावकार तरीके से रोज़गार मिले, उसके लिए तमाम तमाम जो वसाइल हैं वो आपके नाम हैं। और इसी हवाले से आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान के नौजवान, आप लोग एक अहम तरीन किरदार अदा करने जा रहे हैं इस कौम के लिए। 1947 में पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था, मगर 2047 का पाकिस्तान आपकी सोच और जोश से बनेगा, ये महज मेरे जोशीले अल्फाज नहीं, इंशाल्लाह उसके लिए ये विजन जो मैं आज दे रहा हूँ ये खाली तालीम नहीं है, यहाँ पर आपको प्रोडक्टिव जॉब्स मिलेंगे। अभी मैंने ऐलान किया कि 1000 बच्चे और बच्चियों को हम चीन भिजवाएंगे आईटी और एआई की ट्रेनिंग के लिए। इसमें अगर आप जितने भी बच्चे, अगर सारे आप मेरिट पर आए तो अखराजात मसाइल की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो विल टू डू एंड दैट विल आई हैव एंड वी विल डू इट इंशाल्लाह ताला। इसके साथ मैं आज पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान भी करता हूं, जिसकी तैयारी अरसे से जारी थी और मशहूद साहब जो कि वाकई मशहूर हैं इसके ऊपर पूरी तरह काम जारी है। पॉलिसी के तहत तमाम लेबर फोर्स में ख्वातीन के लिए 35% कोटा लाजमी होगा इंशाल्लाह, और जबकि नौजवानों को मुलाजमतों के बजाय अपना आसान कारोबार शुरू करने के लिए फैसला किया गया है कि हर साल स्टार्टअप्स के लिए हमने 10% कोटा मुख्तस करने का मैं ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह। मैं खितामन ये कहूँगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार है।

0: ऑल राइट गाइस, आप सुन रहे थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जो कि खिताब कर रहे थे कौम के नौजवानों से ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ एडल्ट डेफिनेटली। एंड इसी के साथ अब क्योंकि शो का वक्त बहुत कम है, एक आखिरी कॉल हम लेंगे। अगर आप कॉल करना चाहते हैं डायल ऑन 04221111। एंड क्योंकि वक्त इख्तिताम पज़ीर हो रहा है तो लेट मी हैंड ओवर टू यू।
1: बिल्कुल जी, जैसा शहीर ने कहा कि हमारे पास अब वक्त कम है, एक लास्ट कॉल है, हम ट्राई करते हैं इफ कॉलर कैन पिक। तो
0: जब तक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तब तक हम इनसे पैगाम ले लेते हैं। वासिफ, पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप इस लास्ट नोट पे?
2: अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन, खुशहाली और तरक्की अता फरमाए। हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत और एक दूसरे के लिए अखुवत हमेशा कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: जिंदाबाद
1: पाकिस्तान, जिंदाबाद। और अब हम
0: फितरा बताइएगा कि आप लास्ट में इस लास्ट नोट पे क्या कहना चाहेंगी?
3: मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, अपने वतन पाकिस्तान का ख्याल रखें, इसकी सफाई का ख्याल रखें और मोहब्बत बांटें, अमन कायम करें और खुशियां बांटें बस।
1: और जी, मैडम सिद्रा ने भी अपना पैगाम दिया हमारे सुनने वालों के लिए। और अब हम बढ़ते हैं सर शहीर की तरफ, जिनको माइक से बात करने का बहुत ही शौक है, तो अब इनका भी पैगाम ले ही लेते हैं।
0: पैगाम तो मैं अपना आज सुबह सारी दे चुका हूँ, लेकिन अगेन वी हैव अ कॉलर, पहले कॉलर का पैगाम लेते हैं फाइनली।
1: चलिए जी, अब हम कॉल की तरफ बढ़ते हैं।
0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कैसे हैं आप?
4: जी अस्सलाम वालेकुम,
0: कैसे हैं आप? कैसी हैं?
4: अल्लाह का करम, शुक्र है। उमर भाई कैसे हैं?
0: कहाँ से बात कर रही हैं?
4: जी लाहौर से
0: बात। मैम आप 14 अगस्त के हवाले से क्या कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहेंगी?
4: जी
0: 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहेंगी?
4: जी माशाल्लाह, आजादी मुबारक सबको, सब सुनने वालों को सलाम।
1: बिल्कुल जी, आपको भी आजादी बहुत बहुत मुबारक। और हम 14 अगस्त की आजादी पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपकी कुछ पसंदीदा यादों के बारे में 14 अगस्त को लेके। तो कोई ऐसी कोई एक चीज, वो चाहे खाना हो या कोई जगह हो, आप बताना चाहें?
4: जी सर, खाना तो नहीं, और सर घूमने फिरने इंसान जाता है तो बस वही यादें होती हैं इनकी, के झंडिया लगाते थे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा।
0: बहुत शुक्रिया आपका, अभी हमारे पास वक्त की किल्लत है, मिलेंगे किसी और शो में। अल्लाह हाफिज़। पैगाम की बात हो रही थी तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने अपने 79 ईयर्स में बहुत से नशेबो फराज देखे हैं। एंड आज से 50 साल पहले 60 साल पहले पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें थीं वो कहती थी पाकिस्तान इज डन, बट वही बात जो हमने आज सुबह भी की थी, देयर इज नो पावर विच कैन अंडू पाकिस्तान।
1: बिल्कुल, ऑब्वियसली शहीर हमारे कायद ने बात फरमाई थी और वो हम देख भी चुके हैं पिछले कुछ दिनों में।
0: हम अपने 79 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी आर कंप्लीटिंग 179 1079। एंड दिस इज माय लास्ट नोट, ओवर टू यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर किसी शो में।
1: ऑलराइट जी, शहीर ने भी अपना लास्ट पैगाम दे दिया और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारे लिए एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारे फूल हैं और हर फूल ही उतना खूबसूरत है, और कोई भी गुलदस्ता सारे फूलों के साथ मिलके ही बनता है। तो मेरा तो यही पैगाम है कि हम एक हैं हमारी ट्रांसमिशन की मुनासबत से, और हम एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बढ़ते हैं, हम इख्तिताम करते हैं शो का एक मिली नगमे के साथ, फिर कभी मुलाकात होगी इसी माइक पे। बहुत शुक्रिया।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: वालों की चाय भी दिल से बनती है, इसलिए चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।
3: We will be back after this short commercial break. Stay with us.

0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

be back after this short commercial break. Stay with us.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव एफएम 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम
1: कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें।
0: नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: 101 FM.
4: Hi, this is FM 101.
5: This is FM 101.
0: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: This is
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव FM 101।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

कठिनाइयों में जाने दे, अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं। तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं। चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइस तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: 101 FM.
3: Hi, this is FM 101.
4: This is FM 101.
0: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी।

닥사 가야 얼추 포 가야 마 닥사 가야 얼추 포 가야 마 닥사 가야 얼추 포 가야 마 닥사 얼추 포 가야

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भरना

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
2: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
3: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए.
4: FM 101, नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे. क्यों जी, कोई शक है क्या?

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: After this short commercial break, stay with us.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
4: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: सुनते रहिए FM 101.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: सुनते रहिए FM 101.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
5: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए पाकिस्तान की पहली कौमी रोज़गार पॉलिसी का इजरा कर दिया है। सदर ने अक़वामे मुत्तहिदा के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे।
1: This is FM 101.1
2: कराची, लाहौर,
3: सालाबारी, लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: Hey, we'll be back after this short commercial break.
5: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, built on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:43 और आज है जी 12 अगस्त 2026 का सैन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरे साथ होता है जी बुद्ध जमेरात की शब। अच्छा टाइम लेते हैं, शर्म आएगी टाइम बताते हुए। अब बस 12 बजे तक होता है आपका मेरा साथ। और मुझे मैसेजेस आए हुए हैं ऑलरेडी जी, इतनी जल्दी आ गए आप, है ना, हमें को 15 मिनट पहले ही आ गया। और इत्तफाकन हमें आज ज्वाइन किया है हमारे बड़े अच्छे आरजे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, फरहान भाई ने। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई।
1: जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप?
0: आप बताइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये हो जाएगा मेरे साथ।
0: अच्छा,
1: मैं तो बस
0: तुसी मेरे तो छापा मारना आए।
1: नहीं, मैं वो बंदे ने बुलाया किधरे सी तो चले किधर और गए, फिर मैं क्या मैं जाके जनाब नू तंग करा।
0: सर बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे तंग कर लिया करे कभी।
1: वो मुझे कह रहे थे अंदर आ जाओ थिएटर। अच्छा। दे मैं कहनी मैं थिएटर से जाऊंगा। वो थिएटर नहीं,
0: मैं अपना थिएटर लादा लाना है।
1: वैसे थिएटर की दुनिया भी बड़े मजे की दुनिया
0: है। बहुत मजे की दुनिया है जी।
1: और वैसे गवर्नमेंट बड़ा प्रमोट कर रही है इसको जी,
0: या
1: दोबारा से थिएटर को रिवाइव किया जा रहा है।
0: और कैन यू कम क्लोजर बैक टू योर माइक?
1: या यस सर प्लीज।
0: आप सही कह रहे हैं। अच्छा फरहान भाई से भी गपशप लगाते हैं। आगाज़ गुफ्तगू है, वही अल्फाज हैं जो मैंने पहले बात की कि हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे। अभी यहाँ पे जब मैं आया हूँ फरहान भाई, कलाम चल रहा था।
1: अच्छा।
0: और कलाम में आपदा जी ने शेर पढ़ा जनाब हजरत इकबाल का, निगाह है इश्क मस्ती में वही वही आखिर। तो वहाँ से फिर जो है ना मेरे अंदर दोबारा ट्रिगर की कि वो अक्सर हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि इश्क की मेराज जो है ना उस पर बात करते हुए कि ख्याल में भी उसकी नफ़ी नहीं कर सकते। अगर तुमने ख्याल में भी उसकी नफ़ी कर दी तो मामला बिगड़ गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि वो अव्वल और वही आखिर।
1: वाह वाह वाह।
0: वो अब कहाँ पे किसके साथ किस हालत में आप हालत इश्क में हैं, वो जो भी है
1: होए होए,
0: आपके लिए वही अव्वल वही आखिर, आप जहाँ पे भी हैं। तो कामयाबी तो मिलती इसी पे है ना। हम सारी एफर्ट किस लिए करते हैं? हमारा पढ़ना लिखना, आना जाना, मिलना खाना पीना, पैसे बनाना, हमारी सिर्फ और सिर्फ जज्बाती तस्कीन के लिए।
1: बिल्कुल सर।
0: इमोशनल नीड्स के लिए, क्या रात को हम खुशी से तसल्ली से सोएं। और सबसे बड़ा खूबसूरत जज्बाती आपका इमोशनल एहसास जो है ना वो चाहे जाने का।
1: आए, आए, आए, वा, वा, वा, वा,
0: इससे बड़ा कोई और एहसास नहीं है। आप रात को लेटे सो रहे हैं सोने के लिए और आपको पता हो आपके इर्द गिर्द आपके चाहने वाले हैं और उनमें कोई एक ऐसा हो जिसके लिए आप अव्वल और आखिर की मंजिल पे हो।
1: आए, आए, आए,
0: उसके बाद कुछ भी नहीं है,
1: कुछ भी नहीं।
0: तो आप भी और मैं भी, हमें भी चाहिए, हजरत अली का भी कॉल है कि चाहने से चाहे जाना एक बड़ी बात है जिसका मफहूम है।
1: तो वो बड़ा एहसास सुन्नत भी है ना रब की।
0: हाँ।
1: कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे जाना जाए,
0: पहचाना
1: जाए।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे।
1: तो ये रब की सुन्नत है।
0: हाँ।
1: और कि इंसान भी कि कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि उसको चाहा जाए, उसको पसंद किया जाए।
0: अच्छा, सारों को ये अच्छा लगता है।
1: हाँ, लगता है।
0: कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे।
1: तो ये रब की सुन्नत है। और कि इंसान भी कि कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि उसको चाहा जाए, उसको पसंद किया जाए।
0: अच्छा, सारों को ही अच्छा,

0: वो गोशा नशीनी में उसके साथ जुड़े रहते हैं, वो और एक मकाम हो जाता। अदरवाइज हर बंदा ये चाहता है यार उसको चाहा जाए,
1: है ना। बिल्कुल ऐसे,
0: तो जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है पाकिस्तान में, सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, इसी तरह खुश रहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको चाहा जाए, तो उसके लिए आपको पहले किसी को चाहना पड़ेगा।
1: अच्छा, इसमें इसमें एक और पॉइंट ये है कि जब आपकी ख्वाहिश होती है कि आपको चाहा जाए, एक तो मकाम आपने बताया ना, तो बड़े आला और अरफा मकाम है। दुनियादारी में भी इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको चाहा जाए, लोग उसको पसंद करें। अच्छा, इसके अंदर अगर कहीं पे तकब्बुर की एक एक छोटी सी, जिसे कहते हैं, छींट भी पड़ जाए, तो वो मकाम क्या, उस वक्त क्या कंडीशन है, तो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है जब आपके चाहने वाले हों, आपके मोहब्बत करने वाले हों, और आप उस उसको आप उसको आप बर्दाश्त कर सकें, उस अपनी चाहत को, उस मोहब्बत को।
0: अब ये रिलेटेड हैं चीज़ें, बहुत सारे और भी इसमें पहलू आ जाते हैं ना। तुसी ते मैं, मेरा मतलब पॉडकास्ट से बात तो है कि गल है ऐसे क्या है, वैसे क्या है, तकब्बुर आना शुरू हो जाए।
1: इसमें कभी आ जाता ना इंसान में कहीं ना कहीं ख्याल, कहीं ना कहीं सोच।
0: आपने देखा होगा अक्सर ये होता है टीनेज में। टीनेज में क्या है, जिस बंदे या बंदी को ना कहा जाए यार तू बहुत प्यारा है, हर कोई कहे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है यार, इससे तो देख के क्या बात है, हैं, दिल करता है बंदा बात करे, ये करे, तो उसके अंदर ये एक इल्म का मुख्तसर सा हिस्सा उसकी ज़ात के बारे में उसे मुयस्सर आता है कि मुझ में खूबसूरती इस कदर पाई जाती है ज़ाहरी के, जिसकी वजह से हर किसी की ख्वाहिश है मेरे करीब होने की।
1: बिल्कुल ऐसे,
0: और यही वो इल्म की किस्में किस्मों में से एक किस्म है जो आपको तकब्बुर में मुब्तला करती है। तो ये नोइंग समथिंग इज रियली वेरी डेंजरस, खास तौर पे ये हुस्न आए तो नज़ाकत भी आ जाती है ना। ये उस तरह का इल्म है, वो फिर तकब्बुर का पहलू कहीं ना कहीं ले आता है, और उसमें फिर अक्सर जो है ना इंसान मुंह के बल गिरता है।
1: नज़ाकत जो है वो तकब्बुर है?
0: नहीं, नज़ाकत हो ये फिर जो है, जो आपने बात की कि तकब्बुर आ जाए तो फिर क्या होता है, इट डजंट लास्ट फॉर लॉन्ग, वो देर तक नहीं रहता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप ऐसे ब्लंडर मारते हैं, ऐसी जगह पे गिरते हैं जहाँ पे आपको खुद अंदाजा नहीं होता, क्योंकि फिर आपके अंदर ये जुस्तजू होती है मुझसे अगर कोई बेहतर हो तो आए, और वो फिर पैमाना आप अपने अंदर सेट करते हैं। जब वो पैमाना आप अपने अंदर एक तराजू, एक मेयार बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हो, एक आइडियल आप तराशते हैं, तो फिर आपको उस तरह का जाहरी आइडियल मिलता है जो आपको उस तरह से सबज बाग दिखा के लपेट के उत्थे मारता है, तो तानू पता भी नहीं होता। एंड दिस इज वेरी नेचुरल, इसे फितरी कानून।
1: अच्छा, वो अपनी जात भी हो सकती है?
0: अपनी जात ही तो पहले पसंद ही है, आपकी जात ही तो पसंद ही होती है। और मेरा बहुत सारा सलाम है जी, और सलमा राशिद साहिबा आई हैं, कहती हैं आज बहुत उमदा बोल रहे हैं क्योंकि मुझे छेड़ दिया
1: है,
0: आज छेड़ दिया इन्होंने शो के आगाज में, गो कि मेरे जहन में मौजू कुछ और था, मैं बात कुछ और करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कि क्या हमें इनकार करना चाहिए या बर्दाश्त करना चाहिए, बट अब बात यहाँ पे छेड़ पड़ी तो हम इसी तरफ चलते हैं।
1: बिल्कुल ठीक,
0: कि क्या चाहना या चाहे जाना, हम इस पर बात, क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल ठीक,
0: आपका क्या ख्याल है? कवल नाज साहिबा ने ज्वाइन किया हमें लाइव पे जी, सलाम किया, वालेकुम सलाम, वेलकम किया, थैंक यू वेरी मच। सलमान चांडिया साहब हैं, बहुत शुक्रिया जी। फिजा राजपूत, तो फिर बता दें आप किसे, आपने किसे चाहा था जो हम आपको चाह रहे हैं?
1: आए हाय,
0: बहुत टेक्निकल सवाल पूछनी है, आप तो बड़ी शार हो गई है। वक्त हो चुका है 10:52 और 12 अगस्त 2026 का सन है, और आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और मौजू फरहान भाई ने सेट करवाया। आप क्या समझते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको चाहने वाले ज्यादा हैं या आप किसी की चाहत में हैं? ये तो एक सवाल वो है जो थोड़ा सा और सेंस में है, बट पॉइंट इज कि चाहने का एहसास या चाहे जाने का कौन सा ज़्यादा खूबसूरत होता है, अब इसी पे बात करते हैं। आप इस पे बात करें तसव्वुफ के पहलू से, आप बात करें दुनियावी पहलू से, आप बात करें सेकुलर थॉट से, आप बात करें

0: वो 40 रूल्स ऑफ लव से बात करें।
1: सो इट्स ओपन माइक,
0: आप जिस तरह से दिल करता है बात करें, लेकिन बात एक नहज पे आकर रुकेगी।
1: हाय हाय हाय,
0: बात कहीं जा नहीं सकती।
1: एक नुक्ते ते गल मुकदी,
0: गल आनी एक पास है,
1: एक पास है आनी है,
0: बात कहीं जा नहीं सकती।
1: वाह वाह वाह,
0: और वो है तो यही, चाहना या चाहे जाना, क्योंकि ये एक फितरी जज्बा है। आज इसी पे बात करेंगे, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 04221100101 0401 1100101। अब इसमें फरहान भाई ऐसे भी होता है, कभी ये म्यूचुअल फीलिंग भी चल रही होती है, आप जिसको चाह रहे होते हैं वो भी आपको शिद्दत से चाह रहा होता है।
1: बिल्कुल ऐसे
0: ऐसे होता है ना,
1: होता है, बिल्कुल होता है।
0: इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है।
1: बस तूने अपने आप को सपुर्द कर दिया उसके जो तेरी चाहत है,
0: जो मेरी चाहत है,
1: जो मेरी चाहत है,
0: तो मैं बख्श दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है।
1: हाय हाय,
0: अब इसमें क्या है, वजाहत से खालिके कायनात ने इसमें भी ओपन माइक दे दिया आपको।
1: ओए होए होए होए,
0: कि अच्छा जिवें दिल करदा कर जा,
1: लेकिन एंड में वो कहता है जी होगा वही जो मेरी चाहत है।
0: तो उसकी चाहत यही है कि आप अपनी चाहत को उसकी चाहत के सुपुर्द करें, तो वो आपको वो देता है जो आप भी चाहते हैं। एक बड़ी अपेरेंटली इट इज कॉम्प्लेक्स, बट इट इज वेरी सिंपल। जिस तरह कलामे इलाही में बात की, खालिके कायनात ने कहा कि हम तुम्हें वो देते हैं जिसकी तुम सही करते हो, कोशिश करते हो, ख्वाहिश करते हो, इल्ला मासा, आप सही करते हैं, जुस्तजू करते हैं। और इसमें भी ओपन छोड़ दिया, ना कदगन लगाई किस थॉट, किस अकीदा से हो। उसने कहा इंसान हो, कोशिश करो, क्या चाहता है, कोशिश कर, मैं दांगा,
1: कोशिश तो कर,
0: कोशिश कर, एफर्ट कर, एंड व्हाट यू नीड। आप मुझे बताएंगे मेरे थॉट के बारे में, मेरी करेक्शन कराएंगे जहां पे आपको लगता है मैं गलत हूं, मुझे बताइए। और हाँ, एक मेरी रेड लाइन है जो पहले नहीं बताता था, मैंने बताना जरा शुरू किया कि आपने पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करनी, वो मैं टॉलरेट नहीं कर रहा, बाकी ठीक है। मुझे रगड़ा लगाना है, मैसेज करके लगाए यार, ऑन एयर ना करना है, थोड़ा बुरा लगेगा, सह जाऊंगा और क्या करूंगा। लेकिन उस पर मैं कुछ कहूंगा नहीं। एनीवेज, आप अगर इंटरनेट की आपके पास रसाई नहीं है, आप सुन रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या समझते हैं, किसी को चाहना आपको मोटिवेट ज्यादा करता है, या चाहे जाने का एहसास आपको जीने की, आगे बढ़ने की ज्यादा उम्मीद देता है। नाउ दिस इज द टॉपिक, ये आपको मैंने फॉर्म कर दिया है, तो आप मुझे बताएंगे आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, किसी भी सेंस में जाके मैसेज करें, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाके SMS करना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है, इसको भेज देना है 4471 पे। और इसके अलावा मेरी वीडियो स्ट्रीम है जी, RJ_DOX लिखेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा मेरी स्टैटिक पोस्ट FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर इजाजत है, एक कॉल लेते हैं।
1: जी जी जी,
0: अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम जी, सर जी के हाल है, ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन है हमारे साथ?
2: सर जी मैं तोड़ा एक चाड़ वाला बोल रहा हूं।
0: कितों बोल रहे हो सर?
2: मैं सर जी सियालकोट तो बोल रहा हूं, नसर मेरा नाम है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूं।
0: ना बड़ा सोना है, नसर।
1: नसर
2: ते सर जी मैं RJ डॉक्स दा प्रोग्राम जड़ा मैं दिल अपना राजी करन लई मैं हर सूरत सुनदा हां।
0: सर बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत है आपकी।
2: उस तो अलावा मैं यकीन करो मैं पता नहीं किन्नी दफा कॉल मिला के मेरी कॉल नहीं मिली। आज अल्लाह दा शुक्र है, लख लख शुक्र है कि आज मेरी कॉल मिली।
1: मेरी कॉल भी नहीं मिलती पा जी।
2: पता नहीं जी, मैं और रियान अमजद है, एक RJ रियान अमजद सियालकोट दा।
0: अच्छा जी।
2: एक रियान अमजद, एक RJ डॉक्स, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ
0: ਦਿੰਦਾ
2: ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਔਰ RJ ਰਿਆਨ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ
2: ਕੁਛ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
2: ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਸਾਡੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: ਸਰ, ਬੜੀ
2: ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ,
0: ਸਲਾਮ।
1: अच्छा सर,
0: ये है चाहे जाने ये का एहसास है,
1: बिलोस
0: जो भी मिल रहा है,
1: बिलोस बिलोस।
0: हमें जितने RJs हैं सबको मतलब बिलियंस में दुनिया है, सुनने वाले भी आप कुछ चले, आप तो खैर माशाल्लाह पुराने कह रहे हैं, मैं तो कहना मैनू कभी कभी मैं कैलकुलेट करके अगर मैं कहूँ ना, मुझे ये लगता है हाँ कुछ 150 सुनते होंगे, इन्ने के सुन नहीं लेंदे होंगे, वो कुछ स्टार्ट और कुछ कह रहे होते हैं, बट स्टिल उनमें से आपको 2-4 भी ऐसे फोन करके कहे ना, आपका खून बढ़ जाता है, बाद में जाके डाइटिंग करनी पड़ती है ना
1: अच्छा ये जो बेलोस मोहब्बत है, बेलोस चाहने वाले होते हैं, ये भी कमाल होते हैं।
0: सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम सर, की हाल है? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी।
2: सर आज डॉक्टर साहब थानू सलूट ते रहान साहब थानू भी सलूट सर।
0: फरहान फरहान फरहान साहब।
2: हां जी सर, फरहान साहब
1: जी। जी सर मेहरबानी
2: सर, बहुत ही जट गल कर रहे हैं सर।
0: जनाबे अली जट साहब आप ठीक है?
2: और सर सब खैर, अल्लाह पाक दा शुक्र है सर, अल्लाह पाक थानू भी सलामत रखे, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰ ਸਲੂਟ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
2: ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰ ਸੌਂਗ ਸੀ ਸਰਾਣਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ
1: ਉਨਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ
0: ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਰ।
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤ।
0: ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਏ ਉਨਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਦੂੰ।
2: अगस्त
0: आ रही है और पाकिस्तान आर्मी के लिए खास तौर पर बहुत सारी अकीदतें मोहब्बतें और प्यार भरा सलाम है जो जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहा है जी, हमारी तरफ से बहुत मेरे FM के तमाम RJ टीम की तरफ से सलाम अकीदत है। यकीन करें आपकी वजह से वी फील सो प्राउड एंड हैप्पी,
1: नो डाउट।
0: अभी यहाँ पे न्यूज ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर।
3: वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए पाकिस्तान की पहली कौमी रोजगार पॉलिसी का इजरा कर दिया है। सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान और बेलारूस ने टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सनअती तआवुन को फरोग देने के अज़्म का इआदा किया है। आज रात मुल्तान में नेशनल चैंपियंस कप के दूसरे क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ब्रूज ने पाकिस्तान गोल्ड को 6 विकेटों से हरा दिया।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:01 और आज है जी 12 अगस्त 2026 का सेना FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। मैं हूँ आरजे डॉक्स, प्रोग्राम नाइट थेरेपी। मेरे साथ है आज आरजे फरहान खान। क्या बात है सर, मेहरबानी आप तशरीफ लाए और गुफ्तगू चल रही है। चाहे जाने का एहसास आपको मोटिवेट ज्यादा करता है या किसी को चाहने का, इस पर बात करते हैं। और फिर मैं कहता होता हूँ मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, इसको जिस तरह से दिल करता है रंग भरे। एंटी पाकिस्तान नहीं मैं करूँगा, बाकी सारे परी जाओ।
1: बिल्कुल ठीक
0: फरहान भाई, क्या अंदाजे करम एक मैं प्ले करता हूँ, नया है पाकिस्तान के स्टूडियो की कंपोजिशन है।
1: अच्छा।
0: और एक है नुसरत फतेह अली खान साहब का, मैं दोनों आपको थोड़े थोड़े से सुनाता हूँ।
1: नया वाला आप सुना दें, नुसरत साहब का भी चलता रहता है वैसे तो।
0: मेरे लिसनर ये भी सुन चुके हैं, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं।
1: सुना होगा मौसमी,
0: सुनाइए थोड़ा जो तम प्ले।
1: वैसे तो कमाल है इसकी शायरी जो है, वाह वाह वाह।
0: डू यू लाइक द आगाज?
1: या या, वाह वाह वाह।
0: उनके अंदाजे करें बिल्कुल प्रोग्राम पे फिट बैठ रहा है।
1: और क्या प्यारी इसकी इब्तदा है।

0: अरे गरम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी मगर दर्द न जाना दिल का। ये है चाहने का एहसास।
1: जान दिए
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है।

0: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:11, 11:11 सेल भी लगती होंगी
1: 11:11
0: 12 अगस्त 2026 के सेन एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और मेरे साथ हैं आज आरजे फरहान खान। और बात चल रही है हमारी, चाहे जाने का एहसास ज्यादा मोटिवेट करता है या चाहने का एहसास ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड इसके हवाले से मैसेजेस आप कर सकते हैं अगर आपके पास, जहां पर भी आवाज मेरी जा रही है। ये मुमकिन नहीं है आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आपको होश आ गया, अपनी ज़ात से तारुफ हासिल हो गया और आपने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया। आपको अंदर तिश्नगी सी महसूस हुई, अंदर बेचैनी सी महसूस हुई, क्यूरियोसिटी हुई जानने के लिए कि मैं क्या हूँ, मेरे होने का मकसद क्या है और मुझे अट्रैक्शन कहाँ पे होती है, क्यों होती है, और मुझे जब कोई अच्छा कहता है या मेरे बारे में कोई बात करता है तो मैं शर्माता क्यों हूँ या शर्माती क्यों हूँ, और मुझे किसी को देख के मेरी वो जिसे हम उर्दू में कहें खलफशारे खून क्यों बढ़ जाता है, जो है ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज क्यों होता है, डोपामिन ज़्यादा रिलीज क्यों होने लगता है, ये वजूहात क्या होती हैं, और जहाँ पे कोई आपको रिजेक्ट करता है वहाँ पे क्या फील आती है, और वो कि जिसके पीछे पीछे आप चलते हों, जिसकी एक एक चीज़ को आप नोटिस करते हों। जिस तरह मैं वो पढ़ रहा था कशफुल माजूब, मेरे नाना को बड़ा शौक था ना
1: अच्छा।
0: इस तरह की किताबों का, तो मैंने मैट्रिक किया, मैं नाना आके यहाँ पे रहे तो तज़किरतुल औलिया मैंने पढ़ी
1: अच्छा।
0: उन दिनों बैठ के ना मेरा कमरा था और कमरे में ना एक साइड पे नाना आ गए बेड के ऊपर, नाना थे और एक साइड पे ना मैंने जमीन के ऊपर मैट्रेस डाल लिया, मुझे पसंद था मैट्रेस से नहीं गद्दा पा लिया, गद्दा तानू तो पता ही होगा गद्दा, बाकी नु पता नहीं है कि नहीं गद्दे दी सेंस, मैनुअल रुई वाला गद्दा वहां पे तज़किरतुल औलिया पढ़नी मैंने, वहां पे पढ़ते
1: दो वॉल्यूम है ना, तज़किरतुल औलिया के दो वॉल्यूम है।
0: हाँ हाँ, मैंने पढ़ी, उसके अंदर एक बुजुर्ग का वाकया पढ़ा, वो मोहब्बत के बारे में लिखते हैं, उन्हें किसी से मोहब्बत थी बे इंतहा और शदीद, मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, लैंडलाइन भी नहीं थी, सोशल मीडिया था नहीं कि वो तुम फेसबुक तो फॉलो शॉलो कर लेंदे कुछ इस तरह, कोई भी तरीका नहीं था। और तरीका ये था कि सुबह जब होती थी ना तो वो जिस पे आशिक थे वो सुबह पर्दा हटाती थी अपनी खिड़की का, और वो तमाम रात खड़े रह के इंतजार करते थे कि सुबह का वो पहर कहीं मिस ना हो जाए, मैंने एक झलक देख रही है उस पर दिन गुजर जाता है। और अभी की खैर जनरेशन ने ये आई डोंट नो इसे एक्सपीरियंस किया नहीं, हमने भी किया हुआ वैसे एक झलक देख के दिन गुजारना।
1: गुलाम अली साहब ने इसी मौजू पे बात की ना, दोपहर तपती दोपहर में वो तेरा दुपट्टे पर्दे का पल्लू हटाना,
0: तो वो तमाम रात खड़े रहना ये है चाहना, उन्हें पता है या नहीं पता, आई वॉज वन साइडेड, और वन साइडेड तो खैर आज भी होता है, लेकिन ये एहसास कि जिसमें कम याब होना, कम मतलब कम मुयस्सर होना किसी का, आपको इस कदर ना मिलना कि जब चाहा
1: डीपी
0: निकाल के देख ली, जब चाहा देख लिया फोटो या किसी तरह, बस वो पता है ना मेरे पास तस्वीर है ना कुछ है, जो मैंने आंखों में देख लिया और उसके नकूस जो रह गए मेरे ख्यालात में वही है।
1: तो अच्छा, मोहब्बत करना कितना मुश्किल होता था ना पहले, और इस मुश्किलात के अंदर मोहब्बत भी प्योर ही रहती थी,
0: बड़ी कोट भी पहनती
1: थी, कोट भी पहनती थी,
0: क्योंकि रुके शुके पांदे होंदे सी ना, वो फड़े जांदे सी कभी रुका किसी नु करना, वो पहुंच किथे जांदा
1: किथे और जाना ना। अच्छा, ये जो कबूतरों के साथ रुके जाते थे वो सही जाते थे?
0: हाँ, कबूतर अगर मेरे जैसा होता तो।
1: छत फैलांग के चले जाना,
0: अब होता ये था ना अक्सर, ये बात
1: मुश्किल था मोहब्बत करना भी।
0: व्हेन आई वाज इन माय फिफ्थ क्लास तो आई वाज अ कबूतर एक्चुअली।
1: अच्छा।
0: हाँ, मुझे नहीं था पता क्या मेरी क्लास फेलोज थी तो वहां पे बाहर जड़े वो मुंडे टाइम चुकन आंदे ने, आना किसी ने तो मुझे छुट्टी होनी, उन्होंने बुला के जाहिर है रोज की इंटरेक्शन होनी, वो बड़े शियार थे, उन्होंने आते जाते गपशप लगाते रहना, गपशप लगाने के बाद या मेरी क्लास फेलो या मेरे से सीनियर, उन्होंने कहना ये यार ये वो नहीं लड़की जा
1: उसको
0: रही
1: दे, हाँ,
0: उसको दे दो जी, कबूतर ने पढ़ना, कबूतर ने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जाकर प्रोवाइड कर देना उसे, वो आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं था पता लेकिन बड़ा परफेक्ट कबूतर सी। अब आई डोंट नो वहां पे किस किस्म के एहसास चल रहे थे, लेकिन चल रहे थे।
1: कभी वो रुका खोलने की कोशिश की, देखा क्या देते के लिखे है कि सीधा कबूतर ने अपनी ड्यूटी पूरी
0: कर, कबूतर ने ड्यूटी पूरी कर,
1: ड्यूटी से हटके काम नहीं करना।
0: हाँ, नहीं, कबूतर ने ड्यूटी से हटके काम नहीं करना, क्योंकि कबूतर का फोकस होता था अच्छा मैनू इन्हें अमरूद लेके देते रहे, अमरूद खाने ने रुका पहुंचा देना है, मुझे फला चीज लेके दिया, आई गोना ईट दैट थिंग।
1: कितना मासूम कबूतर सी है,
0: कबूतर होते बेचारे मासूम है, कबूतर ने पढ़ना नहीं ना आता, कबूतर पढ़ भी लेता, कबूतर को सेंस नहीं थी
1: करके
0: होता क्या है।
1: हाँ,
0: सेंस नहीं थी ना, ये मासूमियत सेंस तो कहीं, हाँ सेंस तो कहीं आगे जाके जब आपको एक्सपोजर मिलता है फिर आती है। हमारा तो वीडियो गेम से बाहर इंटरेस्ट नहीं था, क्रिकेट से बाहर इंटरेस्ट नहीं था,
1: टोकन
0: पा लिया, क्रिकेट खेल ली, इस तरह की चीजों के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं था। घर में गेम थी, वीडियो गेम वही खेल लेनी और रात को दोस्तों।
1: अच्छा, एक और चीज भी होती थी ना उस दौर में, मैच्योरिटी जो थी ना वो लेट आती थी बच्चों में,
0: एक्सपोजर कम था। तो बात तो वही है, हमारी चाहतें तो थी, चाहतें और थी, चाहतें आज भी हैं। किसी की चाहत है ऑपोजिट जेंडर, किसी की चाहत है काम, किसी की चाहत है उसकी नौकरी, किसी की चाहत है उसका घर, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, और किसी की चाहत है वो खालिक जिसने उसे बनाया पैदा किया, कोई उससे मारिफत हासिल करने के मकाम पे लगा हुआ। आज के दौर में भी वली तो होंगे हर जगह दुनिया के, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में होंगे, फेसबुक भी यूज करते होंगे, टेक्नोलॉजी है ना, यूज तो करते होंगे, वो भी तो इन सारी चीजों के बावजूद उनकी डायरेक्शन तो होगी सेट, ये हो ही नहीं सकता डायरेक्शन ना हो सेट, और चाहते हैं और चाहे भी जाते हैं,
1: और उनकी उनके अंदर ख्वाहिश भी है चाहे जाने की, जिस लेवल पे वो है
0: वो उनकी तो ख्वाहिशात और होती है ना। वो पहला कदम, इसके बारे में तसव्वुफ में कहा यह जाता है, पहला कदम अपने नफ्स पे होता है राह सलूक में। अगर तसव्वुफ की बात करें उसमें, अगर आप राह सलूक के मुसाफिर हैं यानी आप इश्क के मनाजिर तय करना चाहते हैं, तो पहला कदम नफ्स से मुराद अपनी तमाम तर लज्जतों और ख्वाहिशों पर पहला कदम है, और उसकी चाहत को कायम करना ये कहा जाता है। और यहां पे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं अक्सर मजा लेता हूं, कशफुल माजूब का जुमला है कि एक लज्जत को खत्म करना एक नई लज्जत का क्याम है। अच्छा जी, तला साहब,
1: लज्जत को खत्म करना एक लज्जत का,
0: एक नई लज्जत का क्याम है। तलहा है जी, इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप खैरियत से हैं। मौजू हमारा ये है कि चाहे जाने का एहसास मोटिवेट ज़्यादा करता है या चाहने का। अभी फरहान भाई से भी पूछते हैं,
1: एक एक फिक्रा मैंने भी कहीं पढ़ा था कि जी, जो चाहना है ना वो इंसान को मोहब्बत करना सिखाता है, जबकि चाह जाना इंसान को मोहब्बत पर यकीन करना सिखाता है।
0: अगर बंदा बंदे का पुत्र हो,
1: आए हाय
0: नहीं तो यार तकब्बुर का एलिमेंट आने लगता है,
1: और बड़ा मुश्किल काम है ये, इतनी आसान बात नहीं है, ये
0: मुश्किल काम है। और दो इसके पहलू हैं, लोग जिसको आप रिजेक्शन देते हैं ना, इनकार करते हैं, उसकी नजर में आप तकब्बुर में मुब्तला हैं अपनी जात को,
1: उसकी नजर में,
0: उसकी नजर में, अपनी आपकी नजर में क्या है, एन मुमकिन है आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, एन मुमकिन है आपकी तरजीहात में फर्क है, एन मुमकिन है आपकी चाहत कुछ और है, और आप इसलिए नहीं चाहते कि किसी और के साथ आप किसी रिलेशनशिप में आ जाए, हु नोज। लेकिन वो जिसे रिजेक्शन मिली, इनकार हुआ, उसकी नजर में आप तकब्बुर में मुब्तला है, मुतकब्बर है ना, ये पॉइंट
1: बिल्कुल,
0: इट इज मोर अबाउट योर इमोशन एंड साइकोलॉजी। तो इसी पे बात करते हैं, साथ साथ मैसेजेस अगर आप इजाजत दें शामिल कर लेता हूं मैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, यक तरफा मोहब्बत के बारे में कुछ बता दें। यक तरफा मोहब्बत के बारे में बताया तो है,
1: अल्लाह ना करे होए तानू,
0: ये होती है सर, ये बगैर चलना नहीं निजाम, ये जितनी ज्यादा होती है उतनी मोहब्बत पनपती है, यानी ग्रो करती है, अगर यक तरफा मोहब्बत ना हो तो ग्रो नहीं कर सकती, मोहब्बत का अफसाना मुकम्मल नहीं होता। हाँ जी, ओके, लाहौर से है, एमटी है, वेलकम और हर्ट लिखा हुआ है इन्होंने, किस बात पे हर्ट है, आबिद अली मर्दान से, डॉग साहब सर थैंक यू, आपके बिल्कुल सजेशन पहुंच गई, अच्छा यार आप कहाँ से लेके आते हैं, बहुत अच्छी सजेशंस होती हैं, थैंक यू वेरी मच जी। अस्मा है, सलाम है मोहब्बत चांद, वालेकुम सलाम, क्या हाल है चंदा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। प्यारे चेहरे, खूबसूरत आँखों और दिलबराना आवाज और अंदाज को बहुत मिस किया मैं। ओए होए होए होए, इंतहा कर देती हैं आप तो, शर्म ही आ जाती है।
1: कमाल हो
0: गया। बहुत सी दुआएं आपके लिए, जब भी दुआ के लिए हाथ उठते हैं आपकी प्यारी सूरत मेरी हथेलियों में आ जाती है। पूरा ही किसी दिन हथेली च रखो ना, सूरत का की करता है। ऐसा नजर आना चाहिए आपको। बहुत खुशनसीब है वो जिसकी किस्मत में आप लिखे गए हैं, हमेशा सलामत रहें। दीवानी आपकी, बहुत शुक्रिया आसमा जी। मैं ब्लास्ट ना करा
1: दे, ना करो इस टाइम आर जे डॉस जेड़े ना फुल ब्लास्ट फुल रेड।
0: मेहर फातिमा है,
1: छमिया आ गई।
0: सलाम किया, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर जी? मैं ठीक हूँ। आज तो मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दें, वैसे आपने कभी मेरे कहने पर कोई गाना प्ले नहीं किया। जब्त के ओएसटी में आखिर ऐसा क्या है जो दुनिया पीछे पड़ी है इसके? नवाल है, हो जुनू सर बस, हो जाऊं सर बस सजूद, रोजे रोजा शब्बीर पे, ऐ काश मुझे भी वो लम्हा नसीब हो। आमीन जी, आमीन, बिल्कुल जी, क्यों नहीं। अभी यहाँ पे एक कॉल ऐड करते हैं फरहान भाई से, फिर मौका मिलेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
2: और मेरी पहचान और मेरी शान और मेरी जान पाकिस्तान, और मुझे कहते हैं मोहम्मद उस्मान मुगल।
0: क्या बात है जी,
1: क्या बात साहब,
0: कैसे हैं आपके लिए?
2: भाई आपको भी अस्सलाम
1: जी। सर वालेकुम अस्सलाम,
2: आप दोनों ठीक हैं? आप कुछ नसीब ना कि आप सर के साय में बैठे हैं।
0: मेरे
1: साया बड़ा दूर,
0: राती साया नहीं जी होता।
1: राती नेरा ही होता सर,
0: राती सिर्फ नेरा ही होता।
2: ये वो साया नहीं है जो लोग करते हैं।
0: अच्छा,
2: वो काला साया।
0: अच्छा अच्छा, वो जेड़ा चमड़ जाता है वो वाले साये से बैठे ने मुझे ये बताएं, चाहे जाने का एहसास या चाहने का एहसास, आपको क्या लगता है जिंदगी में ज्यादा आगे की तरफ बढ़ाने के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है?
2: और चाहत करना
0: जी,
2: इसका आपने डिफाइन कर दिया बहुत अच्छा सा। लेकिन चाहत, चाहत एक वो चाय, चाय का नाम भी है चाहत।
0: अच्छा, मुझे
2: और
0: नहीं पता।
2: चाहना, तो चाहना के दूध को कह ले और चाहत पति को कह ले।
0: अच्छा,
2: तो दूध पति बना के पियेंगे तो उसका जो जो सामने आ जाएगा।
0: मैं भी ठीक है सर,
1: बस एक कॉफी पी रहे हैं फिलहाल तो।
0: वो दूध पत्ती से पास
1: है। अच्छा,
0: ठीक है, ठीक हो गया।
2: हाँ, ब्लैक कॉफी आई एम फेवरेट है मेरी भी।
0: ठीक है,
1: आई एम टू फेवरेट।
2: हाँ,
1: चलिए उस्मान साहब, बहुत खूब जीते रहें, सलामत रहें और इसी तरह चाहते भी खेलते रहें।
2: चले वो आपकी बात ठीक है सर। डॉग्स सर हमें भी कुछ टाइम अता फरमा दें,
1: सानू बड़ी मुश्किल मिलता
0: है। अच्छा, ठीक है सर, टाइम ही टाइम है।
2: मैं तो आनू मुश्किल मिलता है, तानू क्लॉक ले देने हैं ना 10 पीस।
1: ठीक है सर,
2: फिर टाइम थोड़ी भी मिल जाएगा।
0: वो फिर एवे नहीं करिए, पहले तानू ना ले दिए। ठीक है सर, जैसे आप कहें जी, मैं तो हाजिर हूँ जी यहाँ पे इसी ऑफ इसी स्टूडियो में, ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरी सिंगल लिसनर जी।
2: क्योंकि आपका टाइम जो है ना वो पता नहीं ना होता।
0: हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन डोंट वरी जी, आई एम हियर। ठीक है,
2: चले इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह।
2: हाँ, जल्दी इंशाल्लाह,
0: इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
2: अनीला जी को और फरीद जी को अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान
0: जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चाहना या चाहे जाने का एहसास
1: सर
0: क्या आगे चलाता है जिंदगी को? सलाम अलैकुम सर, ताड़ा में तसल्ली ना लेना, मैं जरा ना वो गिले मेरे पे इतने کبھی کبھی وہ مہینے دو کا اتنا زیادہ وہ اکٹھا ہو جاتا ہے کالز آپ کم لیتے ہیں. میں کہ کالز لے لیں. السلام علیکم جی. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی
1: مہنور اسلام آباد سے.
0: مہنور اسلام آباد سے.
1: ٹھیک ہے جی. ہاں جی مہنور کیا کہیں گی آپ؟
3: آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ.
0: بہت شکریہ جی. آپ بتائیں چاہنا یا چاہے جانے کا احساس موٹیویٹ کیا کرتا ہے؟
3: دونوں
0: موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ کو زندگی میں چاہنے کا احساس زیادہ ہے یا چاہے جانے کا؟
3: جن کو ہم بہت زیادہ چاہ لیتے ہیں نا تو وہ تھوڑا غرور میں آ جاتے ہیں.
0: ہاں دیکھا وہی بات کی, جس کو ہم زیادہ چاہ لیتے ہیں وہ غرور میں آ جاتے ہیں.
1: کیا کریں, بیلنس کیسے کریں؟
3: بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمیں چاہے ہم اس کو انجوائے لے لیں.
1: اچھا اور کتنی اہمیت دیں؟
3: جتنا وہ ہمیں چاہتا ہے.
1: اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟
0: اتنی اہمیت دے جتنا وہ ہمیں چاہتا ہے, یہ کہہ رہی ہیں وہ.
1: تو لیکن یہ کیسے پتا چلے گا وہ کیسے چاہتا ہے, کتنا چاہتا ہے؟
3: فیل ہو جاتا ہے نا جب آپ کسی کو چاہتے ہو. آپ دیکھیں آپ کسی کو چاہتے ہیں اگر تو وہ رشتہ, کوئی بھی رشتہ ہے, جیسے وہ آپ کا بھائی ہے کوئی فرینڈ بھی ہے, اچھا تو ہم جب کسی کو چاہتے ہیں اسے حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا تو وہ آگے سے بس اتنا غرور کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھ سا تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں, یہ میرے پیچھے پیچھے.
1: بالکل ٹھیک,
0: بہت زبردست. اس کے علاوہ کچھ مہنور کہنا چاہیں گی؟
3: کچھ نہیں, سب سننے والے کو سلام. میری بانجیاں دو سن رہی ہیں کوٹلی سے, ان کا بھی سلام.
0: بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ مہنور. اللہ حافظ.
1: اچھا یہ
0: پھر چاہتے ہی ہیں,
1: یہ کیا ہے؟
0: سر میں انہوں نہیں مانتا.
1: چاہ جانے کا کوئی پیرامیٹر ہے, کوئی شرائط ہیں؟ مطلب
0: یہ مہنور کی بات نہیں میں کہہ رہا.
1: ویسے
0: آپ سن رہی ہیں تو آپ کو بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ میرا بھی ایک عرصہ تک یقین رہا اور موسٹلی لوگ یہی مانتے ہیں اور میں خود اسی کا شکار رہا, لیکن بعد میں آ کے میں نے یہ سمجھا کہ چاہنا کسی کو ایک پیرامیٹر ترازو میں تول نہیں سکتے آپ کہ جتنا یہ مجھے چاہتا ہے میں نے بھی اتنا چاہنا ہے. یہ دنیا داری میں تو ٹھیک ہے, وہ چاہت نہیں ہوتی, وہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. جس طرح کرتے ہیں نیوندرا کہیں دیا, ہم شادی بیاہ پہ جاتے ہیں کسی کو پیسے دیتے ہیں, وہ آیا تھا تو وہ کتنے دے کے گیا تھا, گئی تھی,
1: لکھیا جاتا تھا نا
0: میری برتھ ڈے یا میری فلاں چیز پہ اس نے کیا دیا کیا نہیں دیا. میں نے بھی اسی طرح کرنا ہے, اسے تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے. تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. چاہت جو ہے نا وہ ماورا ہوتی ہے, ان ساری چیزوں سے اوپر ہوتی ہے. اٹ از ریئلی فار ابو آل دیز تھنگس. یہ میں نے ایک عرصہ گزار دینے کے بعد اس چیز کو سمجھا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, اٹ از آلویز ڈفرینٹ, یہ مختلف ہے اس چیز سے. تو اس پہ ہم قدغن نہیں لگا سکتے.
1: اس پہ تھوڑی سی نا کلیئرٹی یہ ہو کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو چاہت ہے جو پیورلی آپ کی ایک دنیا کے ساتھ چاہت ہے, ایک اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے. ایک چاہت وہ ہے جو پیورٹی کے ساتھ خالق کے ساتھ چاہت ہے, جس کے اندر کوئی شرائط نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ غیر مشروط محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ اب دنیا کے ساتھ بھی اگر محبت کر رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں کسی کو, تو اس میں بھی کوئی پیرامیٹرز ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے.
0: تو اسی پائن آ کے گال چھیڑ دیں دے اور پاسے لے جان دے.
1: پیرامیٹر آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟
0: ایک جملہ دوں گا, اس کے بعد میسجز شامل کر کے پھر میں اس پہ آ کے باقاعدہ پوری بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. ان مائی اوپینین آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, اینڈ ممکن ہے آپ کو, سننے والوں کو, باقی جتنے صاحبان ہیں انہیں اس بات پہ میری اعتراض ہو اور وہ اس کے قائل نہ ہو. بٹ آئی اسٹرانگلی بلیو, جسٹ لائک اے بلیف, کہ دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: دنیاوی اور وہ خالق کے ساتھ آپ فرق نہیں کر سکتے.
1: ٹھیک ہے,
0: اگر بے لوس اور بے غرض کی جاتی ہے, ادروائز دنیا داری ہے. ادروائز دنیا داری ہے, جس کو ہم بات کرتے ہیں نا عشق مجازی اور عشق حقیقی, اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر. اگر اس سے ہٹ کے ہم صرف بات کر رہے ہیں نا, صرف عام جو پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں دنیا میں, چاہنا نہ چاہنا وہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. سو اب آپ تھوڑی سی پہلے وضاحت کریں گے फिर उसके बाद हम इसके जवाब की चाहत करेंगे कि ये इसके मजाजी या हकीकी है, वो वाली डिस्कशन है, या आम वो जो हमारी ख्वाहिशात पे मबनी चाहते हैं।
1: असल में जब कॉलर आता ना, तो कॉलर ज़्यादातर जो मुझे महसूस हो रहा है वो आ रहे हैं जो दुनिया भी मोहब्बत है उसके हवाले से,
0: वो टोटली बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स, हमारी ख्वाहिशात। मुझे कोई अच्छा लगा, मेरी ख्वाहिश हुई है मेरा हम सफर होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: मुझे कोई अच्छी लगी, मैंने अप्रोच किया, मेरी हम सफर होनी चाहिए, इस तरह से। ओके,
1: उस्मान रजा साहब सुन रहे हैं जी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं उस्मान रजा साहब, आपको वेलकम कहते हैं जी। थैंक यू सो मच आपका शो में शामिल होना, और आई एम श्योर आप अभी अपने काम से वापस घर की जानिब जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच रजा साहब, अली रजा हमें सुन रहे हैं, आपका भी शुक्रिया जनाब। और इसके साथ असद हैं जी ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट, वो भी हमें सुन रहे हैं जी, और थैंक यू सो मच असद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उस्मान रजा साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ मैसेज में हमें बताएँ हमारे आज के मौजू के हवाले से, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस पे आप भी कुछ ज़रूर शामिल कीजिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी तसव्वुफ़ को, मोहब्बत को और मारफत को बड़ा समझते हैं। तो आज चाहने के ऊपर बात चल रही है, चाह जाने पे, कि इस पे आप क्या कहते हैं।
0: मेरे पास सैयद मोहम्मद अली ज़िया साहब हैं, सलाम किया, वालेकुम सलाम, और फरहान भाई आज तो डॉग्स भाई से रैपिड फायर हो जाए आयशा सुल्तान है हमारी, आप इंटर्न है, सलाम करती हैं और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मेंटोर सर, फरहान को भी सलाम,
1: वालेकुम सलाम।
0: सर पजीराई हर इंसान को भाती है, अक्सर जब हमें कोई नहीं सराहता तो अक्सर ऐसे महसूस होता है कि हम बेवक़त हैं, और ये चीज़ शदीद मायूसी का सबब बनती है। लेकिन जिन्हें ज़्यादा सराहा जाए वो अक्सर तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, ख़ुद पसंदी ऐसी ही चीज़ है, वाकई ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स। बाकी हमें अगर कोई चाहे कि ज़्यादा खूबसूरत एहसास है, बशर्ते हमें कशिश महसूस हो तो। बिल्कुल ठीक है, अली रज़ा कहते हैं भाई कभी कभी आप थोड़े थोड़े मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे लगते हैं। आए क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। ए फिल्म चली उन्ना दी वजह तुसी जितों मशहूर होए ने, इसलिए मैं कहता हूँ यार अगर मुझे कोई रोल मिले मैं भी विलन का रोल करना चाहूँगा। अच्छा। विलन ही ठीक है, बंदा मतलब रियल लाइफ में भी पता नहीं किस किस के लिए विलन है, तो है भाई बंदा फिर खुश फहमी का शिकार हो, हीरो नहीं, नहीं मैं विलन ही थी, आई एम हैप्पी टू बी विलन। गुलाब सलाम किया जी, वालेकुम सलाम जी, फरहान भाई आपको भी सलाम,
1: वालेकुम सलाम। सईदा आमना सियालकोट से इस वक्त हमें सुन रही हैं, आरजे सईदा आमना,
0: बहुत शुक्रिया,
1: सलामत रहो आप भी।
0: सियालकोट वाले हमारे बड़े अच्छे आरजे हैं, दे आर रियली गुड और बहुत बहुत अच्छे बोलने वाले हैं। आप में से जो भी हैं हमें सुन रहे हैं लिसनर, सियालकोट वाले आरजेस को भी सुना करें, यू गाइस गोना लव देम, बहुत अच्छा बोलते हैं। आज डॉक्स वाइब्स हैं, जिसको सब चाह रहे होते हैं वो भी किसी एक ऐसे इंसान को चाह बैठता है जहां रुल जाता है। आहो ला दिए गाना ताडे वास्ते, रुलते गए हैं पर चस बड़ी है। सलमा जी हैं मेरी बड़ी मोहतरम लिसनर है, और कहती हैं मुझे पता है कि आपने रेडियो को चाहा और रेडियो लिसनर आपको चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम का मैं अक्सर तारुफ करवाता हूँ।
1: अच्छा।
0: जब मैंने शुरू किया ना जी रेडियो फरहान भाई
1: जी, जी
0: तो जो चंद एक सुनने वाले थे ना मुझे, उनमें मैडम शामिल थे।
1: अच्छा।
0: जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने फ़ोन किया मेरे शो में, और हमेशा मेरे जितने भी मौजूआत रहे उन्हें हमेशा डायरेक्शन आके देती।
1: अरे वाह,
0: इनका ताल्लुक जो है शोभा तदरीस से रहा, टीचिंग करती रही, और इस वजह से लिटरेचर पे बहुत अच्छी ग्रिप, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट एंगल देना, एंड मैं हमेशा इंतजार करता था इनकी कॉल एज अ डिफरेंट एंगल।
1: क्या बात है,
0: बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं। अरबाब अली हैं, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, कबल है बेहतरीन अंदाज गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया। इसमें कौसर साहब हैं, बहुत शुक्रिया जी। आयशा सुल्तान आपका मैसेज पढ़ा, सारे जब्त का ओएसटी लड़े, पता नहीं ये की है क्या है आखिर, ऐसा चाहत कहाँ पाने की चीज़ है, ये तो सब पे लुटाने की चीज़ है, पलकों पे कोई रखे किस्मत की बात है, पलकों में ये तो समाने की चीज है, खुशबू से महकाए ये अंग अंग, दिलों में ये तो बसाने की चीज है, ख्यालों में कलियां महकती हैं इस तरह हर गोशाए रूह का महकाने की चीज है। रंगों में कोई ये रंगे जमाल है, रंगे हिना सा हाथों में सजाने की चीज है।
1: वाह
0: क्या बात है लड़के, क्या बात है, बहुत अच्छा,
1: क्या बात है।
0: आगे जी माइंथ्रोपिस ने फिर क्या भेजा हमें लिख के, दिल ने हर दर्द सहा तेरी चाहत के साथ, हम भी जीते रहे बस तेरी चाहत के साथ, रात भर चांद से करते रहे तेरी बातें, आंख लगती ही न थी ऐसी चाहत के साथ, वाकई नींद नहीं आती होंगी। हेलो ओके सैयद अंसर नकवी साहब ने भी सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम जी फरहान भाई।
1: सर सर वो एक ट्रैक की मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है।
0: अच्छा जब वो वाला लगा देते हैं जी। सना राजपूत है लाहौर से, बहुत शिकायत है मुझे आपसे, कॉल मिलेगी तो बताऊंगी।
1: अच्छा जी एक सवाल पूछा है सनम है, उन्होंने सवाल पूछे क्या इंसान की असल ख्वाहिश किसी को चाहना है या किसी के दिल में चाह जाना है, आपसे पूछा।
0: वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। अच्छा इसके लिए जब इस तरह कोई भी सवाल होता है ना तो जहन में बहुत सारी चीज़ें उसे फौरन कैलकुलेट करना शुरू कर देती हैं। आई डेफिनेटली गो फ्रॉम टुडे टू ऑनवर्ड बैकवर्ड जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि इंसान जब खल्क होता है ना, मिट्टी का पुतला पड़ा हुआ था, मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी गई, अभी मिट्टी के पुतले के आधे जिस्म में थी, उसने चाहा फौरन उठने की कोशिश की, उसकी अपनी ख्वाहिश जागी और फिर कहा कि जल्दबाज होता है, कहा गया उसके अपने अंदर ख्वाहिश ट्रिगर होती है, वो ख्वाहिश ट्रिगर हुई अपनी ज़ात का तारुफ हासिल करने की, फिर आगे स्टेज पे चल के अपने ज़ात का हासिल जब तारुफ किया गया उसके बाद फिर उस पर एक कदगल लगाई गई कि वहाँ नहीं तुमने जाना, बाकी सब कुछ कर लेना। फिर उसने ख्वाहिश की, फिर उस ख्वाहिश की तकमील में वहाँ भी गया जहाँ से रोका गया, फिर वहाँ से चलते चलते ज़मीन पे आया, ज़मीन पे आने के बाद हमने पहला कत्ल देखा चाहत के चक्कर में। वो क्या था, आपकी अपनी पहली ख्वाहिश कि मुझे चाहा जाए, पहला इंसान
1: और मेरी चाहत मुझे मिले,
0: मेरी चाहत मुझ में। पहले इंसान के अमल ने ये बताया कि उसकी पहली चाहत उसके अपने अंदर से ट्रिगर होती है और फिर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे रिकग्नाइज किया जाए, मुझे चाहा जाए, जो मर्जी कर। आप किसी को पसंद करते हैं ना, थोड़ा सा आप फलसफे में चलते हैं, मेरा दिल किया अगर मैं लड़की होती, लड़की होती फर्ज करें और मुझे फरहान खान पसंद आ जाते और मैं चाहती कि फरहान खान से मेरी मुलाकात हो या मेरी जिंदगी फरहान खान के साथ गुजरे तो फरहान खान मुझे पसंद आए, ये मेरी ख्वाहिश थी। या फरहान खान ने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट किया तो भी ये मेरी ख्वाहिश थी कि हाँ ये मुझे चाहिए, इसे मैं आने दूंगी। सो ये आपकी अपनी जात से शुरू होता है, ये वो चीज है।
1: एक और सवाल इसी जमीन में
0: तुसी की
1: करना, नहीं एक सवाल बस उसके बाद हम गाने की तरफ बढ़ेंगे। ये जो चाह जाना है ये इंसान की जरूरत है या इसके नफ्स की तस्कीन है?
0: नहीं जरूरत है,
1: नफ्स की तस्कीन नहीं है ये।
0: नफ्स की तस्कीन तो आती है अंदर, पहले नीड है, पहले नीड है। जरूरी नहीं है हम चाहत को सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसी रिश्ते से तोलना शुरू करें, वो तो खैर आ जाता है ना। रिश्ते फॉर्म किए गए इसलिए कि आपकी ये जरूरत थी जमाने में पनपने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप इसे ह्यूमैनिटी के उससे आप स्क्रिप्ट से देखना शुरू करें, आप सेकुलर हो जाएं तो देखना शुरू करें, आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें, आपकी ख्वाहिश थी, आपकी निगाहों ने अपने जैसे वजूद की तलाश शुरू की। फर्ज करें आप किसी जंगल में पैदा होते हैं, आप जंगल में पैदा होने के बाद क्या आपने अपने आप को बड़ा एलियन फील करना था और आपके अंदर पहला क्वेश्चन ही आना था क्या मेरे जैसा कोई और है कि नहीं। अगर खबर मिलती है तो आपके अंदर जुस्तजू जागनी थी मुझे उससे मिलना है, This is the need.
1: Wow.
0: This is the
1: need. Wow, wow, wow.
0: Anayatullah Sanjarani from Choti Zari. آداب سر لاجواب انداز تسلیم جی بہت شکریہ لفظ جب گلے میں اٹک جائے تو اردو شاعری آداب اور مرہم کا کام کرتے ہیں اردو شاعری آداب اور مرہم کا کام کرتی ہے اردو صرف ایک زبان کا نام نہیں بلکہ احساسات کا وہ خزانہ ہے جس میں ہر دکھ کا علاج چھپا ہوا ہے بہت اچھا عنایت صاحب روشی ہیں چاہے جانے کا احساس ہو کہتی ہیں زیادہ موٹیویٹ کرتا آپ کو اچھا میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں کہتا ہوں چاہنے کا احساس کسی کو چاہنے کا احساس زیادہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے آپ بھی بہرحال اپنا بتا سکتے ہیں اسما ہے مجھے اپنی زندگی میں جسے ایک بات نے موٹیویٹ جو ایک بات موٹیویٹ کرتی ہے چاند ہائے ہائے چاند کو چندا چاند کو چاہنا اور چاہتے ہی رہنا چار سال پہلے سنا تھا تب سے اب تک جس چاہا ہے اس پیاری صورت کو میں کہہ رہے ہیں کھلے عام کبھی کسی نے ایویں مینوں لو لیٹر نہیں لکھے جویں مینوں ایتھوں آندے نے
1: اور تسی لکھے نے لو لیٹر
0: نہیں میں کہہ رہا
1: تسی ڈائریکٹ میسج ہی بھیجا
0: نہیں سانو جی ہوش آئی نا سوشل میڈیا ہی ہو گیا سی نا اس وجہ تو ہمیشہ خوش رہے بہت شکریہ جی
1: ساڈی واری یہ دور جدید ہو گیا
0: دور جدید ہو گیا اسی کمپیوٹر انجینئرنگ پڑھی پھر ہے اسی تے پھر اور ہو گئے نا سنجرانی فرام چھوٹی جری وہ کبوتر جو آپ کی طرف بھیجے تھے جانا لوٹ تو آئے ہیں مگر بول نہیں سکتے اچھا کال لے رہا ہوں پھر گانا چلائے گی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ جی
4: ڈاکٹر بھائی اجاز احمد گل کر رہے ہیں نارمل
0: کیا نام بتایا جی
1: اجاز احمد
0: اجاز احمد صاحب کیسے آپ خیریت سے
4: الحمد للہ میں ٹھیک ہوں تسی ٹھیک ہو
0: جی جی بڑی مہربانی بہت شکریہ
4: وہ ویسے نا میں ایک گل سن لگا سی تہاڈی
0: میں
4: نہیں میرا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شو جو کرتے ہیں 12 to 3 کرتے ہیں نا اس لیے آپ کے یہاں 12 بجے کے بعد کھلتی ہے
0: نہیں میں سوچ رہا ہوں میں نا ضیاء کے ساتھ ایک سلوٹ ایکسچینج کرنے لگا ہوں 12 to 2 پہ آتے ہیں ایک دن
4: پھر آپ ٹائم پہ بھی آئیں گے
0: ہے نا پھر ٹائم پہ آ جاؤں گا صحیح کہہ رہے ہیں آپ وہ ایک دن میں ٹائم پہ آ جایا کروں گا میں
1: سر ہے بڑا لامہ توڑے تھے
4: میرا بیٹا عبد الحادی وہ نا تو بڑا پروگرام سن دیتا ہے جی ہے نکری لا کے وہ تو سر ہوں سو گئے جی چلو وہ ڈیوٹی میں دیتی ہے
0: چلے مہربانی سر بہت شکریہ
4: بہت اچھا پروگرام بہت اچھی گلاں
1: آخر کار انسان کو کیا تلاش ہے محبوب محبت یا وہ ذات جس نے دل میں محبت رکھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے دیکھا نا لانا
0: دیکھیں یہ سوال جو ہے نا سوال کرنے والا جو ہے نا اس کی سوچ کی عکاسی اس کے نا سوال سے ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے نا وہی تلاش ہے جس نے آپ کے دل میں محبت رکھی ہے ہر کسی کی تلاش مختلف ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محض کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے وہ چاہیے جس نے مجھے بنایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اس سے مل کے کچھ باتیں پوچھنی ہیں کہ تو نے مجھے بنایا میرے اندر یہ چیزیں رکھیں پھر جب میں اس کا اظہار کرنے لگا یا کرنے لگی تو پھر وہ تو نے مجھ سے دور کیوں کر دیا جس کے لیے میرے اندر احساس جاگا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں जो बस मेरी तरह रवायती अंदाज में ही चलते हैं। सो हर बंदे के लिए ये मुख्तलिफ है, आप इसे फंडामेंटली डिफाइन नहीं कर सकते, यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिफाइन कर सकते, इंटायरली डिफरेंट है। अच्छा जी, इदरीस चित्राली, हेलो सर, वालेकुम अस्सलाम। रजा आलम है जी, इस्लाम की असर खैरियत से हैं, आज कुछ लेट हो गया, शुक्र है, पान में भी लेट आया दे। अच्छा, कल्ब मोमिन है इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम। आज असलान अलवर, सलाम रिस्पेक्टेड सर, वालेकुम अस्सलाम, सियालकोट से सुन रहे हैं सर, कैसे हैं असलान भाई। जैन बाबा आए हैं, इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं दी आपने, बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, सुनने वालों को भी सलाम दिया, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत शुक्रिया। महनूर महाजबीन ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं सर। गाना लगा लें अगर
1: जी, जी जी सर, सर प्लीज।
0: अच्छा जी, जब्त आज चला ही देना जी, लेट मी सी इसमें आखिर क्या है। सना राजपूत कह रही हैं आप कॉल नहीं ले रहे, वापस आके बैक टू बैक कॉल्स लेते हैं। आसमा कहती हैं कितना प्यारा बोलते हैं आप सदके। अच्छा सना राजपूत लाहौर से, आज डॉक्स यू आर माय फेवरेट, मैं 18 साल की हूँ और मैं आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैं चाहती हूँ आपसे पर्सनल बात हो। फैसिलिटी बहुत सी बातों के मफहूम पूछने हैं, आप कॉल मिलाती रहे, अभी कॉल लेते हैं बैक टू बैक। आकर रिजवान सदीकी हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, आई एम फाइन। और कहते हैं सर की जाने वाली मोहब्बत को तो बदला जा सकता है, लेकिन जो मोहब्बत हो जाए उसे कैसे बदले। आगे ना आपसे इस पे पूरी थ्योरी है, बात करेंगे, ऐसे नहीं होता। जब्त ओएसटी मतलब आई टेल यू आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं होता। जब्त सुने और उसके बाद आते हैं बैक टू बैक कॉल्स लेते हैं।

लेट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:53 और आज है जी 12 अगस्त 2026 का सन। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी विद आरजे डॉक्स, और मेरे साथ आज है आरजे फरहान खान। एंड अभी यहाँ पे हमारी बात चल रही है कि चाहना या चाहे जाने का एहसास। आओ आओ ड्रामे।

0: अच्छा अभी ये एक मैं 7771 का मैसेज पढ़ लूँ और फेसबुक का नाम ले लूँ, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ जाते हैं, फिर रहमान का शो है तो उससे को 10 मिनट बोरो कर लेंगे हम हैं। सोफिया है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम आज़े और फरहान, कैसे हैं आप? एंड कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक।
0: किस को चाहना या चाहे जाना एक ही तरफ से ही क्यों होता है? किसी को चाहना या चाहे जाना एक ही तरफ से होता है क्यों? दोनों तरफ से होना चाहिए, फिर ही चाहना और चाहे जाने की बात बनती है, क्योंकि एक की तरफ से या दोनों चाहना या चाहे जाना नाकामी ही होती है। अच्छा, नाकामी तो इस सूरत में कंसिडर की जाती है सोफिया, कि आपको मुयस्सर नहीं हुआ, यहाँ आपको मिल नहीं पाया, लेकिन चाहत का एहसास ये होता है कि मैंने किसी को चाहा और वो एहसास आपके साथ तब तक चलता है जब तक आप और मैं हम सारे रहते हैं। और आप ज़िंदगी में ना जाने कितनी चीज़ों को चाहते हैं, कितने लोगों को चाहते हैं, किस किस अंदाज में चाहते हैं, महज अपनी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर बनाने के लिए नहीं। और हर कोई, हर चीज़, हर बात आपकी पूरी नहीं होती। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली बात करते हैं वो होती है आपके अंदर से उठने वाली ख्वाहिशात, जिसे हम छोटी से छोटी चीज़ में ये समझते हैं कि आपने क्या खाना है, कहा जाता है आज मेरा दिल कह रहा है मैं ये खाऊं, वो आपका एक छोटा सा पहलू है आपकी चाहत के इजहार का, और वो होता है फॉर टाइम बीइंग। और कुछ चाहतें होती हैं फॉर फ्यू डेज, कुछ होती हैं फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ होती हैं लाइफ टाइम। वो अंदर से ही इजहार आता है। और बेशुमार आपकी और मेरी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो मेरे अंदर एक चाहत की शक्ल में मौजूद हैं, नहीं मिली, मुयस्सर नहीं आई, और वो आखिरी दम तक रहेंगी। तो चाहत ख़त्म नहीं होती, कोई मिले या ना मिले ये एक अलहदा डिस्कशन है। और जी फरहान भाई,
1: उस्मान रजा साहब हमारे साथ हैं जी, बड़े प्यारे दोस्त हैं, और बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात एक भेजी, मैंने कहा चलें सुनने वालों तक पहुंचाई जाए। कहते हैं एक चाहत यह है कि मैं किसी को चाहता हूं और चाहता हूं कि वो मेरा हो जाए,
0: ओके,
1: मुझे मेरी चाहत मिल जाए और मैं मुतमिन हो जाऊं, मेरा महबूब मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ढल जाए, मेरे चाहने पर अपना आप, अपना दिल, अपना मन बदल दे,
0: ओके।
1: और एक चाहत यह है कि मैं किसी को चाहता हूँ मगर इसे अपने मुताबिक बदलने की बजाय इसकी चाहत में ख़ुद को बदल दूँ, इसके लिए ऐसा हो जाऊं कि इसे पसंद आ जाऊं।
0: बहुत अच्छा।
1: इसकी मोहब्बत पाने के लिए इसके चाहने पर अपना आप, अपना दिल, अपना मन बदल दूं। शायद चाहत की हकीकी खूबसूरती इसी दूसरे रास्ते में है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि महबूब मेरी चाहत के मुताबिक हो जाए, बल्कि ये भी है कि मोहब्बत मुझे इस काबिल बना दे कि मैं महबूब की चाहत के मुताबिक हो जाऊँ। रूमी की फ़िक्र के सामने रखें तो मोहब्बत सिर्फ महबूब को हासिल करने का नाम नहीं, मोहब्बत ख़ुद इंसान को तब्दील करने का अमल है। सच्ची चाहत शायद वो नहीं जिसमें हम महबूब को बदलना चाहते हैं, बल्कि वो है जिसमें महबूब की मोहब्बत हमें बदल देती है, और सच्ची ज़ात तो मेरे रब की है।
0: बिल्कुल ऐसी है। इसमें हमारे टीचर कहा करते थे हमें, इश्क की मेराज है आशिक से माशूक हो जाना।
1: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, इश्क की मेराज है आशिक से माशूक
0: हो जाना। वही बात इन्होंने की है कि आप इस कदर उसके लिए बदलते जाते हैं कि उसको फिर आप इस तरह से पसंद आते हैं कि वो आपकी चाहत में मुब्तला हो जाता है, फिर उसके अंदर ही मोटिवेशन बनती है कि अब ये मेरे पास रहे।
1: वो आपकी आगाज वाली बात ना, ऐ इब्ने आदम एक वो है जो तेरी चाहत
0: है। और ये ख्वाहिश देखें, हम बहुत सारी चीज़ों में ना इजहार करते हैं अपने खालिक की दी हुई चीज़ों का। खालिक ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी, और खालिक ने कलाम इलाही में कहा कि सबसे बेहतरीन रंग वो है जो उसका रंग है, तो उसके रंग में रंगे जाना।
1: आए है, वाँ वाँ वाँ।
0: और उसकी जो है क्या इसमें मेरे लिए वो लफ्ज़ जो है वो भी मैं समझता हूँ ये गलत है इस्तेमाल करना, क्योंकि आई बिलीव हज़रत अली का कॉल जो है जिसमें कहा कि तुमने उसे उसकी ज़ात को, खालिक को, उसकी सिफात से महज पहचाना और महज उसी पे फोकस रह के तुमने उसे काबिल इशारा बना दिया, मफहूम बयान कर रहा हूँ, और अगर तुमने उसे काबिल इशारा बना दिया तुमने उसे मखलूक की सफ में ला खड़ा किया, तो ये तो उसकी ज़ात की बात है ना। इसीलिए आप औलिया को देखें तो वो कहते हैं हम ला इला पे ही रुक गए, उससे आगे का सफर ही नहीं हो सका ना, वो आगे की मुश्किल है। अब ये है कि उसका इजहार, क्योंकि जो आर्ट होता है ना, फन पारा जो होता है, वो अपने बनाने वाले मुसव्विर की सलाहियतों का इजहार करता। हमें उसने खल्क किया, कहा हसन तकवीम के दर्जे पे खल्क किया, तो हमसे भी इजहार वो करवा लेता। मोहब्बत वो करता है, हम भी करते हैं,
1: बिल्कुल ऐसे।
0: वो कहीं पे अपने गुस्से नाराजगी का इजहार करता है तो हम भी करते हैं, कहीं पे वो रहम दिल होता है तो हम भी करते हैं। हमने फिर अपनी जात से सरजद होने वाली ऐसी चीजों से ही उसकी मारिफत हासिल की, लेकिन साथ ये जाना वो इससे भी आगे है ना। तो यही चीजें रिफ्लेक्ट हमारे अंदर हो रही होती हैं। तो इसीलिए वो अक्सर मैं मिसाल भी सुना रहा होता हूँ, एक बंदे को मोहब्बत हो गई, उसने दिल में ख्वाहिश जागी, उसने कहा कि जी मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ, खुदा के साथ इश्क करना चाहता हूँ। बाबे ने कहा कि तेरे कभी किसी नल कीते इश्क, उन्हें कहा नहीं, तेरे कुल कुछ है, उन्हें कहा हाँ मेरे कुल एक माझे, उन्हें कहा जाके उदे नाल इश्क कर, मझ नाल कौन करे, उन्हें कहा जे तू मझ नाल नहीं कर सकता तू उदे नाल भी नहीं करना, जा उदे नाल कर। वो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद वापस आता है, उसके बाद बाबा कहना अंदर आओ, कहना मैं नहीं आना। फिर दो तीन दफा होता है, वो कहना अंदर क्यों नहीं आंदा, कहना बाबा मेरे सिंह फंस जाते हैं। तो ये है, वो फिर कैफियत बदलना शुरू होती है, फिर आगे जाके कहीं आप उसकी मारिफत की मंजिल पर पहुंचते हैं। सो दिस इज हाउ आशिक से माशूक होना, जिसके इश्क में आप मुब्तला हैं, आपकी ज़ात के अंदर तब्दीलियाँ जो जाहिर होती हैं, फिर उसके अंदर से भी उसकी चाहतों का इजहार आप पे बरसना शुरू होता है। फिर वो चाहता है कि हुण तू इत्थे ही रह, फिर मोटिवेशन बदलना शुरू हो जाती है। और वक्त 12 बज चुके हैं, रहमान अनवर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच, अगर आप इजाजत दें कि 10-15 मिनट ले सकते हैं, डर लगता था। और हमारे साथ इस वक्त एक गेस्ट भी मौजूद हैं, सलीम साहब हैं, और इनकी अक्सर कॉल भी आती है, आप लोग सुनते हैं। सलीम साहब, कैसे हैं आप?
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ सर, आपका बहुत शुक्रिया, इतना कीमती टाइम आप हमारे लिए निकालते हैं, हम बहुत बेताब रहते हैं आपको सुनने के लिए।
0: मेरे शो जो ताड़ी गिनती थी कॉल आने
1: कॉल सर मिलती भी नहीं ना, अभी तो ना करूँगा,
0: पैसे लगाऊंगा मैं पर मिनट।
2: फरहान भाई, थैंक यू सो मच सर, इतने रात सुहानी बना दी आप दोनों ने माशाल्लाह। सर आरजे डॉक्स, आपको दोनों हाथों से सलूट
0: सर, आपकी मेहरबानी।
1: देखना एक आदमी आपके ना माइक है, डिगलने ना डिगा दी।
2: और हम एफएम 101 का बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने माशाल्लाह एक नई आवाज़ों का आगाज़ किया है, और हमें जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से माशाल्लाह, थैंक यू सो मच।
1: आप एज ए कॉलर जब कॉल करते हैं, जब लिसनर होते हैं जी, आज इस चेयर पे बैठ के कैसा लग रहा है?
2: बहुत खुशी महसूस हो रही है माशाल्लाह, और आपकी जो खूबसूरत अदायगी आप करते हैं वो हमें जो है ना मोहब्बत में ले जाती है।
1: और आपने हमें आज जिंदा देख लिया।
0: जिंदा देख लिया आपने।
1: अरे मैं आप सुनते थे,
0: दोबारा पता नहीं देखो ना देखो, आज देख लिया तुम्हें जिंदा सा।
2: तो आजादी का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाहर भी झंडे लहरा रहे हैं बच्चे बड़े, तो बहुत अच्छा लगा।
0: आपने फिर कंसेशन लगाई है कि नहीं
2: आजादी की? हाँ जी,
0: तानू क्या ऐसी सूटा थे तुसी लानी है
2: सर? लगाई है बिल्कुल,
0: लिख के लाया।
2: काफी औरतों को जो है ना
1: 50 रुपए डिस्काउंट मिलेगा,
0: 50 रुपए नहीं
2: 200 रुपया,
0: 200 रुपया मैंने कहा जी आप आजादी पे
2: पूरा महीना।
1: अच्छा,
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: अगस्त के महीने में 200 रुपया रेगुलर से लगाए, इनकी मेहरबानी है ना, पिछले रमजान भी लगाया
2: सर। आपकी मोहब्बत है, आपने आवाज दी है,
0: वरना बुध वाले दिन च मैं नहीं बंदा किसी ने।
1: अच्छा, अगर आप मेरे रहमान अनवर की सलवार कमीज सीनी हो तो इसके कितने पैसे लेंगे?
2: माशाल्लाह, इनको भी रैट करेंगे,
1: कर देंगे। देखो दर्जीन से डबल पैसे लेते हैं
2: इनके, इनका एक सूट में नहीं बनेगा, डेढ़ सूट में बनेगा सूट इनका।
0: माशाल्लाह हाइटेड है
2: रहमान। तो
1: सही माशाल्लाह से।
2: सर आप हमारे पास अच्छे तशरीफ लाइएगा, और चाचा बस्सा मिठाई वहाँ की खिलाएंगे आपको खालिस। एक तो अब्दुल हमीद भाई है ना खुशी वाले,
0: सारे सुला मार दे जिधर
2: शॉक तो थैंक यू सो मच। और हम एक पैगाम देंगे जो ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक में जो लोग जा रहे हैं, इनमें जो ट्रैक्टर चलाते हैं ना बाहर, वो ट्राली बहुत तेजी से चलाते हैं, ब्राय मेहरबानी जरा इनको स्पीड कम करें, और बाइक छोटी जो चीजें हैं उनका ख्याल रखें, बाइक वाले पैदल वाले। तो थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया,
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फर जी। और हमारे पास मैसेज है, आसमा कहती है आपको बुरा तो नहीं लगा मेरी बात है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इलेक्ट्रिक प्रेम पत्र आते हैं, यकीन करें महबूब खान है जी, और आपको मैसेज मिला, बहुत शुक्रिया जी। आगे मैं फेसबुक के मैसेजेस शामिल कर लूं सर, इजाजत
1: जी? जी सर प्लीज।
0: फिजा हैं, ओके थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज दादा, गुलाम मुश्तबा शाह साहब हैं, कहानी होती है कुछ कुछ बनानी पड़ती है, किसी से दोस्ती हो जब निभानी पड़ती है, जब एक रास्ता मिलना हो, जब एक रास्ता मिलाना हो दूसरे के साथ, जो दरमियान में हो दीवार ढानी पड़ती है, किसी की ज़ात पर अंधा यकीन रखते हुए जहां में प्यार की कीमत चुकानी पड़ती है, कोई भी शय मेरे सामान से निकलती है दिखाई दी हुई उसकी निशानी पड़ती है, लहू में घुल के फकत शायरी निखरती है, कलम को लफ्ज की कीमत चुकानी पड़ती है, क्या बात है। और अफजल खोखर साहब ने कहा नाइस शो, मरीना बिलाल ने भी कहा सलाम किया, वालेकुम सलाम, हमारा फ़याज साहब ने सलाम किया, इस्लाम है आज लाइव नहीं जा रहे आप अपने पेज पे, मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, नहीं नज़र आ रहा आपको, कोई इंटरनेट का मसला हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी कवल ला साहिबा जी बहुत शुक्रिया जी, नाइस पिक्चर बहुत शुक्रिया। अकबर खान साहब बड़े अच्छे लिसनर है कराची से, उनका पैगाम मिला सदा सलामत रहे पाकिस्तान आमीन। एंड हुमैरा फयाज, वतन की मिट्टी गवाह रहना, बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। सैफ रजा शाह है, होश रहा ना खुदी रही हमको जाना, जब से देखी तेरी शराब सी आंखें, लफ्ज़ बैन है गजब, में पढ़ता शो ना बैन हो जाए, एक पल में दीवाना क्या हमें खुद से बेगाना किया, एक पल में दीवाना किया हमें खुद से बेगाना किया, कितनी पुरकशिश है तेरी महताब सी आंखें, क्या बात है। मुझ में कयाम करके नींदे हराम करके, अब जीने नहीं देती ये लाजवाब सी आंखें, अच्छा है अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा, मुझे जल्दी है रहमान सर पे बैठा कह रहा ख़त्म करें। अब्दुल्ला मलखेल साहब हैं जी, बहुत शुक्रिया, और ओके थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों के पैगाम पढ़े, और इसके अलावा किसके आए मुझे देख लेने दें, मैं थोड़ा नहीं आज बहुत लेट आया हूँ, तो यकीनन आपको बुरा लग रहा होगा, हाँ मुझे पता, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड आपको बुरा लग रहा हो, कोई बात नहीं। सैफ रजा शाह भाई थैंक यू वेरी मच, मैं ना वो होता ये है कि बंदा फ्लू में चल रहा हो ना तो फिर बंदा पढ़ लेता है, या मैं पहले इसको पढ़ लेता एक दफ़ा तो अच्छा था, फिर पढ़ने में मज़ा आता। आपकी बहुत अच्छी ये तहरीर है जो आपने शेयर की है, हमें ख़राब ना हो जाए, माज़रत कबूल करें, तुम फिर से उसी अदा से अंगड़ाई लेकर हंस दो, आ जाएगा पलट कर गुजरा हुआ ज़माना, नहीं आता कहने की बातें होती हैं, जितनी मर्जी अंगड़ाइयाँ ले लें ज़माना वापस नहीं आता जो गुजर गया, यकीन करें आप, यकीन करें, तसल्ली बस देता है इंसान और कुछ नहीं होता। अच्छा जी, इस्लामाबाद वाले मैसेजेस को भी शामिल कर लेते हैं, हेलो साथ कॉल भी लेते हैं, हेलो,
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
3: फरा बात कर रही हूं, फरा जी।
0: कैसी हैं फरा आप, ठीक हैं?
3: जी मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छा हूँ।
3: बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक।
0: अच्छा चले मेहरबानी,
3: बहुत नाइसली आप एक्सप्लेन करें परान भाई की, और बहुत अच्छा लगा।
0: ये मौजू पे अगर कहीं रहमान भाई थोड़ा सा हमारा साथ दे ना, बड़ा मजा आए, आए तो सही, मौजू पता क्या है, चाहे जाने का एहसास मोटिवेट ज्यादा करता है या चाहने का?
3: अच्छा
0: जी बताइए,
3: मैं बोलूं सर?
1: जी जी जी, आप बोलें, बोलें,
0: आप जब बोलती हैं सिर्फ आप ही बोलती हैं,
1: हाँ पाकिस्तान
3: से। सॉरी सॉरी, आप लोग बोल,
1: नहीं नहीं नहीं आप बोलें, आप बोलें, हम आपको सुन रहे हैं।
3: अच्छा सर, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक चीज करना सीखी है, जब हम कुरान की तफसीर पढ़ते हैं तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, ईमान वाले सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। दुनिया की मोहब्बतें आपको थकाती हैं, मोटिवेट तो करती हैं पर वो एक लाहासिल मोटिवेशन होती है। लेकिन जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर आपका फोकस, आपकी डायरेक्शन सेट हो जाती है, और फिर अल्लाह ताला आपको ये बताते हैं कि मुझ तक पहुँचने के लिए मेरे नबी के ज़रिए आओ, तो फिर आपके पूरा एक सिस्टम सेट हो जाता है, आपको फिर ना थकन नहीं हो।
0: बिल्कुल ठीक।
3: चाहना जो है ना, जो चाहना है असल मोटिवेशन वो प्रोवाइड करता है। चाहे जाने में भी अगर हम दुनियावी तौर से बात करें ना, तो आज सामने वाले को फोर्सफुली नहीं कह सकते कि हमें चाहो, क्योंकि ये उसकी अपनी विल है ना। एक चीज आपको पसंद आ रही है, गवे तो नहीं है उसको पसंद आए, कोई आपको अच्छा लग रहा है गवे तो नहीं है आप उसे अच्छे लगे, ठीक है। क्योंकि हर एक का मायार मुख्तलिफ है, हर एक की अप्रोच डिफरेंट है, चीज़ों को देखने का परसेप्शन अलग है, हर एक के मुशाहिदात अलग हैं। उन चीज़ों पे बेस करके ही फिर वो अपनी मोहब्बतें रिसर्च करते हैं। लेकिन फिर जब आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के एक स्टेप ऊपर जाके सोचते हैं कि जिसने हमें पैदा किया वो जब खुद हमें बता रहा है कि किससे मोहब्बत करनी है, तो फिर बिला वजह इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है।
0: बिल्कुल।
3: ऑन दिस आयत वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, ईमान वाले सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। उसके बाद सारे चैप्टर क्लोज हो जाते हैं, फिर वो आपकी झोली में वो चीज डालता है जो आपको पसंद होती है, क्योंकि वो कहता है आप मेरा बंदा बेनियाज हो गया अल्लाह समझ। तो वो आपने परवीन का मुझे बेखुदी ये तूने भली चाशनी चखाई, किसी आरजू के दिल में रही अब नहीं समाई।
0: क्या बात।
3: ना विसाल है ना हिजरा, ना सुकूत है ना गम है, जिसे कहे ये ख्वाब गफलत तो वो नींद मुझ पे छाई।
0: तो
3: वो चीज जो है ना, आप अपने आप को उस लेवल पे जाके फिर पाएंगे अगर आपने सही निशानदेही कर ली कि मोहब्बत करनी किससे है, चाहना किसको है।
0: जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच,
1: जबरदस्त
0: फॉर दिस ब्यूटीफुल फीडबैक।
3: थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, जजाक
1: बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, आप
0: हाफिज साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाफिज आरजे रहमान अनवर मुद्दज़ल्ला अली,
1: मुद्दज़ल्ला
0: जनाब मोहतरम
4: डॉक्स, मुझे ना एक बार सवाल जो है वो दोबारा रिपीट करते हैं।
1: अच्छा,
4: आपका सवाल क्या है?
0: तो मैं बार बार नहीं पूछता, एक दफा पूछ लिया, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं नहीं दोहराऊंगा।
1: आप रिपीट
0: नहीं है ना, ना वैसे मेरी लड़ाई चल रही है थोड़ी।
1: अच्छा,
0: हाँ नहीं करना, बह के आप ही लबन पढ़ा चल रहा साडा जरा।
4: अच्छा, मैं ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा, अच्छा लगता।
0: मतलब बंदा यहाँ पे बैठा किस दुनिया में था? ये
1: आप थे कहाँ वैसे?
0: हाँ।
4: पहले भी बताया कि अच्छा, मैं अभी जो कॉलर की कॉल से जो मैं समझ पाया हूँ वो
0: चाहने का एहसास या चाहे जाने का एहसास, मोटिवेट ज्यादा कौन सा एहसास आपको करता है?
4: चाहने का एहसास या चाहे जाने का एहसास, मोटिवेट। वाह वाह वाह, ये बहुत प्यारा टॉपिक
1: है ना।
4: मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नज़दीक चाहने का एहसास मुझे ज्यादा मोटिवेट करता
0: है ना।
4: यस, चाहे जाने का नहीं,
0: चाहने का एहसास मोटिवेट ज्यादा करता है।
4: हाँ।
0: वो थोड़े से पागल होना चाहिए ना आपको, फिर ही मोटिवेट करता है। नॉर्मल लोगों को एहसास हो है ना चाहे जाने का करता है कि मुझे
4: नहीं, मुझे चाहते मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे ये को सिर्फ ये चाहिए कि मुझे लोग चाहें।
0: हाँ।
4: मुझे अपनाने की ख्वाहिश करें। लेकिन मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि किसी को चाहने का, आपके दिल के अंदर अगर कोई जज्बा पैदा होता है, आपके दिल के अंदर अगर कोई ऐसा ख्याल तश्कील पाता है, तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है। यहाँ से आपकी नफ़ी का जिक्र शुरू होता है, जब आपको इनकार किया जा रहा होता है, जब आपको माना नहीं जा रहा होता, आहिस्ता आहिस्ता आप टूटते हैं, टूटकर बिखरते हैं और फिर
1: निखरते हैं।
4: आपकी दोबारा से क्या खूबसूरत आपने हम वजन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, निखरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप फिर तश्कील पाते हैं, मुख्तलिफ रास्तों को अपनाते हैं और फिर उस जगह पे पहुंचते हैं जहां तक उसने चाहा होता है कि आपको लेके आना। मुझे ऐसा लगता है।
1: अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ मेरे जो जहन में आपकी बात से बिखरने से आई, बिखरने निखरने के लिए बिखरना जरूरी है,
4: बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
1: कि ऐसा भी हो सकता है कि बगैर बिखरे आप,
4: और बगैर बिखरे आप डिफरेंट हैं, वो अल्लाह ताला ने बांट डिफरेंट कर रखी है, वो लोग अलग अलग तख्लीक किए हैं, उसने चुने हैं, उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए,
1: हमारे लिए जरूरी है,
4: बिखरना बहुत जरूरी है, तभी वो दोबारा।
1: अच्छा डॉक्टर, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो बगैर बिखरे निखर गए हैं?
0: है ना,
4: उनका नाम है आरजे डॉक्स।
0: ऐसे नहीं, वो है यहाँ पे। चलें इसी पे थोड़ी सी बात करके, एक साहब ने बात की कि किसी को चाहना, ख़ुद से चाह लेना और एक आपको हो जाती है, दोनों में क्या फ़र्क है ना जी, उसके बारे में बात किसी ने यहाँ पे लिखी हुई थी। मैम हाँ, रिजवान कहते हैं कि की जाने वाली मोहब्बत को बदला जा सकता है, लेकिन जो हो जाए उसे कैसे बदलें। भाईजान, की जाने वाली या हो जाने वाली अगर मोहब्बत हो, बदली नहीं जा सकती, सिंपल सी बात है।
4: एक अगर वो उसमें सवाल हर प्रोग्राम में आता,
0: अगर जो है आप ये कह रहे हैं ना कि जो हो गई है वो मुख्तलिफ है, जो की जा रही है वो मुख्तलिफ है, इसका मतलब है आपको हुई नहीं। अगर मैंने ये कहा तो मुझे भी नहीं हुई, कोई ए बी सी डी जो भी बात कर रहा है, अगर उसने कहा तो उसे हुई नहीं। होना ये है कि फिर आप अपनी, जिस तरह रहमान अभी बात कर रहे थे ना, कि आप अपने आप को, जिस तरह वो भाई ने भी आपको, उस्मान साहब ने भी मैसेज किया, जिसको आप चाहते हैं ना, जिससे आपको हो जाती है, या आप किसी से करना शुरू करते हैं, फिर आप अपनी तमाम तन मन धन हर तरह से एफर्ट्स लगाते हैं, इसलिए कि मुझे इसके मुताबिक बनना है, मुझे ये लाइफ में चाहिए और मुझे इससे मोहब्बत करनी है, तो फिर आप उसे एक्चुअली करते हैं। और मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल से, आप करते हैं, आप सुबह शाम अपनी ज़ात को उस सर्कल में जब चलाते हैं, तो हो जाने वाली से ज़्यादा शिद्दत से वो मोहब्बत होती है जो ख़ुद पे आप फ़र्ज़ करते हैं। और जब फ़र्ज़ की जाती है ना मोहब्बत, तो उसमें आप फ़राइज़ की अदायगी से चूकते नहीं,
1: गाफिल नहीं होते उससे।
4: बड़ा मसला ये है कि जब आप शुरू करते हैं ना बात, तो फिर मुझे गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि आगे बात निकल रही है, आप कोशिश नहीं कर रहे होते, आप दरअसल उसको चाह चुके होते हैं, उसके बाद आपकी तख्लीक शुरू होती है दोबारा।
0: सर, दो पॉइंट ऑफ व्यू
4: आपका डिफरेंट है।
0: मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल
4: की जाती है, नहीं उससे हो जाए तो फिर हो जाती है
0: सर,
4: ये जरूरी नहीं होता कि फिर बदले में मुझे भी मिले।
0: सर, दो बातें, ये
4: मेरा एक,
0: ये एक नुक्ता अलहदा हो गया, बदले में मिले ना मिले, इसको हम रखते हैं एक तरफ।
4: यस,
0: हम पहले हिस्से पे रहते हैं, मोहब्बत मैंने की या मुझे हो गई, पहले तो थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी करते हैं।
4: yes.
0: मुझे उससे मोहब्बत हो गई, जिसे नॉर्मली कहा जाता है कि जी वो क्या है, देखते ही जिसको मोहब्बत हो जाए, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसे,
1: फर्स्ट साइट।
0: हाँ, फर्स्ट साइट लव जो है, देखते ही मोहब्बत हो गई ना, या जिस तरह भी कोई पैरामीटर बना। एक ये कि मैंने कहा कि मैं इससे मोहब्बत करूं, ये महज कहने में जुमले मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक्चुअली बैकग्राउंड इनके रूट एक ही है।
4: नहीं, कुछ लोग जिद्दी भी होते
0: हैं। सर रूट एक ही है, मादा एक ही है, मुझे फर्स्ट साइट हो गई या मैंने एफर्ट करके मोहब्बत की, दोनों सूरतों में मोहब्बत वही रहती है। और एक होता है एक्सेप्शनली कि आप खुद पे फर्ज पहले करते हैं, मोहब्बत बाद में होती है।
4: क्या करते हैं?
0: खुद पे फर्ज पहले करते हैं कि मुझे इससे मोहब्बत करनी है।
4: अच्छा, ये है आपका पॉइंट ऑफ व्यू,
0: ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है।
4: ठीक है,
0: इसकी सिंपल मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, अरेंज मैरिजेस अक्सर होती हैं, शादी पहले हो जाती है, मोहब्बत उन्हें बाद में
4: होती है।
0: وقت گزارنے کے بعد میں محبت ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل چھوٹی سی میں دے رہا ہوں, اور ادروائز اور بھی بہت ساری ایک لمبی کہانی ہے جو ہو سنائی نہیں جا سکتی آپ, اور نہیں سناؤں گا میں تو, آہو میں نہیں سنانی ابھی. اس پہ آیان شیخ آپ کا میسج ہے, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. سائم تبسم ہے, السلام کیا, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور پروگرام کرنے کا انداز بہت پیارا آپ نے پسند کیا سر, آپ کی بڑی مہربانی, آپ پسند کرتے ہیں. کنگ فضل کاکڑ ہیں اور ریاض بھٹی صاحب ہیں, بہت شکریہ جی. اینڈ اس کے علاوہ اور کون ہے ہمارے ساتھ, سیف رضا شاہ, آپ کی یار بڑی اچھی پوئٹری ہے, میں رحمان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا وہ اسے اچھے انداز میں پڑھ سکیں گے, میرے سے بہت اچھے انداز میں وہ پڑھتے ہیں, میں نہیں پڑھ سکتا پوئٹری, یقین کریں. ہوش رہا نہ خودی رہی ہم کو جانا, جب سے دیکھی ہیں تیری شراب سی آنکھیں. اچھا ہے یہ, رحمان بھائی پڑھ سکتے ہیں, پھر میں بولتا جائے اب میں بین ہی نہ ہو جاؤں. رحمان بھائی بیٹھے نا, تشریف رکھیں, بیٹھ جاؤ. اٹھو, ہیلو, اچھا ہو گئی مکمل یہاں پہ گفتگو. ہیلو
5: جی, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام شہزاد صاحب, کیسے ہیں؟
5: ماشاء اللہ جی, آپ کی دعائیں بہت اچھا ماشاء اللہ, آج تو موجود کے پروگرام بہت اچھا ہو رہا جی.
0: سر بڑی مہربانی,
5: اور ماشاء اللہ ہمارے ستارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, کیا بات ہے جی. عمران خان صاحب بھی اور رحمان صاحب بھی اور سلیم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, سب کو آپ کو بوتا بوتا میرا دل سے سلام جی. آپ
0: بوتا بالکل ٹھیک ہے, مہربانی سر.
5: اردو پنجابی مکس
0: نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا.
5: تو ماشاء اللہ دیکھے جی, ہم تو چاہتے ہیں نا جن سے محبت کرتے ہیں,
0: جی جی جی جی,
5: اتنی دیر ہمیں خوشی نہیں ہوگی جب وہ نہیں ہم سے محبت کرے.
0: ہاں بالکل ٹھیک ہے سر,
5: ہاں تب معلوم پڑے گا ہم محبت کو کتنی کر رہے ہیں, وہ ہمیں کیا کر رہا ہے, ہم سے محبت کر رہا ہے کہ نہیں. ہم تو وہ محبت میں شیبے بھی کٹا رہے ہیں, کٹنگ بھی کرا رہے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, یہ تو وہ بتائے گا تو پھر ہمیں خوشی ہوگی.
0: سر چاہ گئے, بہت اچھا,
5: شیئر بھی کر رہے ہیں. بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے,
0: تھینک یو,
5: آپ کو میرا سلام.
0: وعلیکم السلام جی,
5: اوکے
0: جی, اللہ حافظ. فرحان بھائی جاتے جاتے anything you want to say.
1: سر پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے شو میں مجھے موقع دیا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ بات کرنا, اور ہم تو طفل مکتب ہیں جی.
0: ہاں جی,
1: ہم سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں.
0: میں بڑا ہو کے باہر کاٹتا ہوں,
1: جاننے کی کوشش
0: کر رہا ہوں, تین بہت سکھانے کی کوشش کی تھی,
1: تیرا کچھ نہیں بننا,
0: تیرا کچھ نہیں بننا,
1: بالکل. تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو, سب سننے والوں کو. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اور اسی اپنے پن کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, پاکستان زندہ باد.
0: تھینک یو ویری مچ جی. رحمان بھائی اینی تھنگ اس حوالے سے کوئی بات آپ نے پھر کہنا ہے کہ وہ گال چھڑی سی تو پھر
4: نہیں نہیں بالکل,
0: اینی تھنگ یو وانٹ اس پہ ڈسکس کریں.
4: کر لیا ہم نے ڈسکس,
0: میں نے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا سکتا تھا, بس وہ میں نے بتا دیا, ارینج میرج اور بعد میں محبت.
4: بالکل, یہ بڑی بڑی خوبصورت مثال ہے,
0: اس سے آگے اور نہیں بتا سکتا.
4: ہاں نہیں بالکل, یہ سب سے بیسٹ مثال ہے. ہاں محبت کے الگ جو رنگ ہیں تصویر کے, جتنے بھی رخ ہیں وہ الگ الگ ہیں, لیکن ان کی بھی اپنی اپنی الگ الگ سچائیاں ہیں. یس, تو مجھے لگتا ہے میرے نزدیک تو یہی ہے, مجھے چاہنے کہ میں اگر کسی کو چاہوں
0: وہ زیادہ موٹیویٹ
4: مجھے موٹیویٹ کرتا,
0: مجھے بھی وہی چیز ہے,
4: مجھے سب سے زیادہ وہ موٹیویٹ کرتا,
0: وہی چیز,
4: لیکن صرف وہی موٹیویٹ کرتا یہ کہوں گا میں. اس کے علاوہ دوسرا زیادہ
0: مجھے بھی صرف وہی چیز موٹیویٹ کرتی نظر آتی ہے, اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے.
4: ٹھیک ہے, کیونکہ آگے میں نے پروگرام کرنا ہے ورنہ میرے ذہن میں خاکے چلنے لگیں گے. ہاں ٹھیک ہے, بہت بہت اچھا.
0: نہیں ایسے ہی ہے, مطلب آپ خود کو بدلنا شروع کرتے ہیں اس کے لیے.
4: یس,
0: آپ ایفرٹ کرتے ہیں کہ میں کس طرح سے اس قابل بن جاؤں, وہ جو قابل بننے کی جستجو ہے نا,
4: یس
0: اسی کو کہتے ہیں موٹیویشن.
4: یس,
0: اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. और आप तसव्वुफ में भी जाएंगे उसमें भी यही है कि वो राह सलूक में चलते हैं ना, तो वहाँ पे भी उनकी यही एफर्ट है कि हम किस तरह से इस काबिल बन जाएं कि हमारा खालिक हमारे आमाल और अफाल से राजी हो जाए।
4: आमीन। यस,
0: यही कोशिश होती है, बाकी गलतियाँ कोताहियाँ सारों से होती हैं।
4: बिल्कुल।
0: सो दिस इज़ आर ओपिनियन, लेकिन आपका बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हर किसी की अपनी राय है। और हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक आपके जज्बात से है, उसमें कोई चीज़, कोई लफ्ज़ हरफ़ आखिर नहीं होता,
4: नहीं होता।
0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, इंटरनेशनल कॉल मिल गई। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका मैंने काफ़ी ज़्यादा कीमती वक्त लिया, और मैं इसी के साथ अपने तमाम सुनने वालों से इजाज़त लूँगा, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह 10 से 12, और कल हम 12 बजे जश्न आज़ादी का सफ़र का आगाज़ करेंगे, और प्रोग्राम हम बिल्कुल वेलकम करेंगे 14 अगस्त को, और उसके बाद फिर हम मुकम्मल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दिस इज़ आर द डॉग साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड यस, रहमान भाई हैं यहाँ पे, वो आ रहे, जाना नहीं है फिर।

0: This is FM 101. This is FM 101. This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: FM 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन
3: FM 101 The sound of new millennium.
4: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101
3: FM 101, the sound of new millennium.

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: FM 101, hamare dil ki awaaz, aapke dil ki dhadkan.
3: FM 101, the sound of new millennium.
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.
3: FM 101, the sound of new millennium.
0: This is FM 101.
1: शुक्रिया
2: आपने FM 101 ट्यून किया. FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन.
3: FM 101, the sound of new millennium.
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं, जहां फाख्ताओं की फड़फड़ाहट से नगमाए राज़े हयात में, झनझनाती सांसों की झांझरें छनक उठें तो धनक के रंगों में भीग जाएं हवास तक, जहां चांद मांद ना हो कभी, जहां चांदनी की रिदा बने मेरी बांझ धरती के बासियों का लिबास तक, जहां सिर्फ हुक्मे यकीन चले, जहां बेनिशा हूं कयास तक, जहां आदमी के नितको लब पे न शहर यार का खौफ हो, जहां सरसराए न आदमी की रगों में कोई हरास तक, जहां वहम हो ना दिलों में वहम का सहम हो, जहां सच को सच से हो वास्ता, जहां जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता, जहां जहां खुशबुओं से बदलती रुत को हसद ना हो, जहां पस्तियों से बुलंदियों को कभी कद ना हो, जहां ख्वाब आंखों में जगमगाएं तो जिस्मों जाके सभी दरीचों में तीरगी का गुजर ना हो, कोई रात ऐसी बसर ना हो कि बशर को अपनी खबर ना हो, जहां दाग दाग सहर ना हो, जहां कश्तियां हो रवा दवा तो समुंदरों में भंवर ना हो, जहां बरगोबार से अजनबी कोई शाख कोई शजर ना हो, जहां चहचहाते हुए परिंदों को बारिशों के आजाब का डर ना हो। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं, जहां तेरी मेरी मोहब्बतों पे गमे जहां का असर ना हो, रहो रस्में दुनिया की बंदिशें गमे जात के सभी जाए के, सिमे कायनात की तलखियां किसी आंख को भी ना छू सकें, जहां मेरी सांस की ताजगी तेरी चाहतों के कवल में हो, तेरा हुस्न मेरी गजल में हो, जहां कायनात की एक सदी शबो रोज के किसी पल में हो, जहां नौहाए गमे जिंदगी मेरी हिचकियों से आया ना हो, जहां लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग कोई निशान ना हो, कोई शहर ऐसा कभी कहीं जहां धूप छाओं गले मिले, जहां बांझ रुत में भी गुल खिले, जहां चाक हो कोई पैरहन ना सुखनवरों की जबां कटे, न जमीरे लौहो कलम हो सैदे सितम गरा, ना गदागरी का रवाज हो, ना सपाहो लश्करे अहले हर्फ के लब से लें, कोई कोई शहर ऐसा कभी कहीं जहां चाहतों के हुजूम में कभी गीत अमन के गाऊं मैं, जहां जिंदगी का रिज्स पढ़ूं जहां बेखलल गुनगुनाऊं मैं, जहां मौज मौज की ओट में तू किरण बने मुस्कुराऊं मैं। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं मैं।

मेरे अतराफ में जितनी भी लाइट्स थी मैंने ऑफ कर दी। अभी लगता है कि रात का ये जो दरमियाना पहर होता है अब पुरसकून होने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता वो जो मुझे चाहिए वो मिलने लगा है, जिस तरह से मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसा वैसा होने लगा है। तारीख बदल गई, 13 अगस्त है, अगस्त का महीना है, गर्मी अपने उरूज पर है। बहरहाल इन दिनों हमेशा की तरह ये जो खास हिस्सा होता है साल का, इसमें पंजाब के कई इलाकों में एक अजीब सी कैफियत होती है। दर्जा हरारत अपनी जगह, लेकिन दरअसल जो इम्तिहान होता है, दरअसल जो लड़ना होता है हमने, वो इस हब्स से लड़ना होता है। वो हब्स जिसमें पंखा चल रहा हो, एयर कंडीशनर चल रहा हो, खिड़की खुली हो, मगर फिर भी लगता है जैसे हवा आ ही नहीं रही, रुकी हुई है। हब्स की एक अजीब सी कैफियत है। बारिश हो तो फिर भी कभी कभी मौसम ठंडा होना चाहिए, लेकिन इन दिनों ऐसा होता है इस हब्स के मौसम में कि बारिश होने के बाद मज़ीद बोझल हो जाता है, नमी बढ़ जाती है, कपड़े पसीने से तर होकर जिस्म से चपकने लग जाते हैं। सांस लेते हुए भी महसूस होता है जैसे हवा में भी एक वजन आ गया है। बहरहाल लेकिन जहाँ पे ये इस तरह की सूरतयाल होती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ उसने बगैर किसी अच्छाई के पैदा नहीं की। हर चीज़ का जो इस दुनिया में मौजूद है, कोई ना कोई काम उसके ज़िम्मे है। ये जो मौसम है, नमी का मौसम, ये पसीने का मौसम, गर्मी का मौसम, यही नमी, यही पानी, यही बारिश ज़मीन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सूखी हुई ज़मीन को नमी मिल जाती है, पौधों को ज़िंदगी मिल जाती है, दरख्तों के पत्ते जो होते हैं वो धुल जाते हैं, फिज़ा में हल्की हल्की मिट्टी की जो बारिश होने के बाद पानी और मिट्टी की जो अमेजिश होती है, उसकी भी एक अजीब सी बड़ी सूंधी सूंधी सी खुशबू है जो मिलने लग जाती है। बहरहाल जहाँ पे किसी के लिए तकलीफ है तो किसी के लिए ये ज़िंदगी है। इंसान की भी कुछ ऐसी ही कैफियत होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कैफियत, एक ही एहसास किसी इंसान को तोड़ कर रख देता है और किसी दूसरे इंसान को या फिर उसकी ज़िंदगी को अक्सर बदल देता है। कभी कभी ज़िंदगी के मौसम भी बड़े अजीब होते हैं। बाहर गर्मी होती है लेकिन अंदर सर्दी होती है। बाहर सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर का मौसम बिल्कुल अच्छा होता है लेकिन इंसान अपने अंदर किसी ऐसी कैफियत से गुजर रहा होता है, किसी ऐसे आलम से गुजर रहा होता है जिसका किसी को इल्म नहीं होता। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो आज रात मामूल के मुताबिक काम कर रहे होंगे, जैसे बिल्कुल मामूल के मुताबिक मैं यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ। इसी तरह किसी ने खाना खाया होगा, किसी ने बच्चों को सुला दिया होगा, किसी ने ये उम्मीद बांधी होगी कि आज रात उससे फ़ोन पर बात हो जाएगी, तो किसी ने सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया होगा, किसी ने शायद किसी का स्टेटस, किसी की स्टोरी देखी होगी और कुछ देर के लिए वहाँ पर रुका होगा, फिर कुछ देर के बाद आगे बढ़ गया होगा। कुछ लोगों के मैसेजेस इनबॉक्स में ब्लू टिक के इंतज़ार में रह कर अपनी उम्मीद गंवाने की आखिरी स्टेज पर होंगे।
یقین کریں. کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، انسان اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. باہر شادیاں نے بج رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اندر ماتم کا سما ہوتا ہے یا پھر اسی طوفان کی آمد ہوتی ہے. ان سب کے دوران، ان سب کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ایک ایسی بات چل رہی ہوتی ہے جس کا اسے خود بھی پوری طرح علم نہیں ہوتا، اسے پوری طرح پتہ نہیں ہوتا. یہ سب سے عجیب بات ہے. ہماری ایک کیفیت ہوتی ہے، ہم دوسروں کے سامنے اپنی زندگی کا ایک الگ چہرہ رکھتے ہیں، لیکن اندر ایک دوسری دنیا آباد ہوتی ہے. ہم مسکرا سکتے ہیں لیکن اندر سے بہت پریشان ہوتے ہیں. سامنے سے ہم یہ بھی بول دیتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، حقیقت میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر وہی شخص ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے رویے پر بھی پوری رات سوچتے سوچتے گزار دیتا ہے. دوسری طرف کوئی خواب و خیال میں، نیند کے حصار میں ہوتا ہے. کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے ان تمام باتوں پر؟ کبھی کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوالات کیے ہیں کچھ؟ خود شناسی کا سفر کبھی کیا ہے آپ نے؟ اپنے آپ کو جاننے کا سفر شروع کیا ہے آپ نے کبھی؟ اپنے بارے میں کتنے یقین سے آپ کون کون سی بات کہہ سکتے ہیں؟ میں ایسا ہی ہوں، میرا مزاج ہی ایسا ہے، میں دکھ بھرا مزاج رکھتا ہوں. مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود ہی سب پہ بھاری ہوں، میں بہت مضبوط ہوں، میں جلدی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. غصہ میرے ناک پہ رہتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے. بہت زیادہ چکا چوند میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے، لائم لائٹ مجھے اچھی نہیں لگتی. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ مجھے چاہیں، سب لوگ مجھے جانیں. کیا کبھی آپ نے ان تمام باتوں میں سے کسی بات کے بارے میں سوچا؟ ساحل سمندر پر سن سیٹ کا نظارہ کرتا ہوئے، دور سمندر کی لہروں میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہوئے یا پھر اگتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر کس طرح کا احساس محسوس کیا ہے؟ وہ جو نیورونز ہیں، وہ جو آنکھ سے ایک تصویر کو کیپچر کرنے کے بعد ریٹینا پہ ظاہر ہوتے ہیں اور پھر الیکٹریکل سگنلز کی صورت میں نیورونز تک پہنچتے ہیں، اور پھر دماغ جو ہر لمحہ مائکرو سیکنڈز کے اندر پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے، ہر سوچ کی، ہر کیفیت کی، ہر خیال کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے، رنگوں کو الگ الگ آمیزش سے رنگ دے رہا ہوتا ہے. کئی پرندے تو ایسے ہیں جن کو رنگ نظر ہی نہیں آتے، یقین کریں. اس لمحے وہ جو پروسیس ہونے کے بعد جو امیج سامنے آتی ہے ہمارے دماغ میں واضح ہوتی ہے، اور ایک ایک لمحے میں لائیو جو اس کا ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں سامنے، اس کے بعد وہ اندر کون کون سا احساس جنم لیا ہے اور کس کس احساس نے دم توڑ دیا ہے، کبھی اس حوالے سے سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ہم نے اپنے بارے میں بہت سارے جملے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر تو میں نے ابھی کیا ہے، اور انہی جملوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہوتا ہے. سوال کیا ہے آخر؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ہماری شخصیت ہوتی ہے، یا صرف ہماری زندگی کے تجربات کا نتیجہ ہوتی ہے؟ مثلا بعض اوقات ایک بچہ بار بار
ये सुनता रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हत्तल इम्कान मुमकिन है। बड़ा होकर वह बाहर तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आएगा, लेकिन अंदर कहीं वो मुसलसल खुद को दूसरों से कमतर समझेगा। अंदर उसके कुछ ना कुछ एहसास से महरूमी रह जाएगी। दूसरी तरफ वो इंसान जिसने कभी किसी करीबी इंसान से धोखा खाया, किसी बहुत अपने से, वो जो घर के अंदर हमारे अपने रहते हैं, मौजूद होते हैं, जिन्हें हम मुख्तलिफ रोल्स में देखते हैं, कभी बाप की शक्ल में, कभी माँ की शक्ल में, कभी भाई की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में, कभी बीवी की शक्ल में, कभी शौहर की शक्ल में, कभी बेटे की शक्ल में, कभी बेटी की शक्ल में, हो सकता है या फिर दोस्तों की शक्ल में धोखा खाया हो, कोई बात ऐसी जो दिल के ऊपर तीर की तरह लगी हो, बहुत गहरा जख्म कर गई हो। और फिर उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं, जब ये जख्म बार बार लगते रहते हैं, बार बार लगते रहते हैं, जब ये तकलीफ बार बार महसूस होती है, जब बार बार उसको उसी अल्फाज से, उसी अलकाबात से, उसी तरीके से बुलाया जाता है, उसी तरीके से उसे पुकारा जाता है, उसी नजर से उसे देखा जाता है, उसी तरह से उसे कहा जाता है, लहजा, अल्फाज का चुनाव, वो जो इंसान होता है ना, ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे सिर्फ वो नहीं होते जो 6 से लेकर 11 साल की उम्र तक के होते हैं, बच्चे वो भी होते हैं जो टीन एज में होते हैं या फिर टीन एज से बाहर निकलकर 23, 24, 25, 26 तक पहुंच चुके होते हैं। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनके वालिदैन दौरे हाजिर में बाहर के बहुत सारे लोगों को देखकर, तजुर्बात को देखकर, मुआशरे की बहुत सारी अपनी आंख से देखी हुई, नंगी आंखों से देखी हुई सच्चाइयों को देखकर वो अपने घर में भी वही वाला माहौल पैदा कर देते हैं, उसी तरीके से, उसी शख्स से, उसी तजुर्बे से। अभी बात की ना मैंने कि दिमाग जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है हर लम्हे, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरे ख्यालात अल्फाज की सूरत में जज्बात से गुजरते हुए आप तक पहुँच रहे हैं, अल्फाज के अंदर एक्सप्रेशंस आपको महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सब हमारे तजुर्बे की बुनियाद पर है, जो हमने गुज़िश्ता सोचा, देखा, जाना, मुशाहिदा किया, सुना, जिस जिस लफ्ज़ को जिस जिस तरीके से हमने सुना, अगर उस लफ्ज़ को हम हटा दिया जाए हमारे दिमाग से, प्रॉपर तौर पर महव कर दिया जाए, बिल्कुल हमें ना पता हो कि पीला रंग जो होता है उसका नाम येलो है, पीला है, तो फिर हम उसे किस नाम से पुकारेंगे, किस नाम से पुकारेंगे? किसी नाम से नहीं पुकार सकते। बस कहीं ख्याल में जिसने उसका नाम सीखा है वो उसको पीला कहेगा, दूसरा उस रंग को देखेगा उसी नजर से, क्योंकि दिमाग उसी तरह से प्रोसेस कर रहा है, उसी तरीके से सोच रहा है जो दूसरा देख रहा है। ये परिंदों की बात नहीं हो रही, उनमें से बहुत से लोग रंग नहीं देख सकते, बहुत से परिंदे रंग नहीं देख सकते, उन्हें नहीं इल्म होता कि ये कौन सा रंग है। ये 7 रंग जो हमारी आंख के पर्दे के ऊपर अता कर दिए गए हैं और उनसे मिलते जुलते कई अलग अलग शेड्स रंगों के हमें नज़र आते हैं, ये हमारी हसासियत है, ये उस अजीम इंजीनियर का कमाल है। खुदाए बुजुर्ग बरतर जो है, हमसे जो बड़ा है, सुप्रीम पावर है, ये उसकी निशानियों में से एक निशानी है। और किन किन निशानियों पे गौर नहीं करेंगे? बहरहाल बात मैं ये कर रहा था, बहुत ज्यादा अगर ऐसा किया जाए अपने बच्चों के साथ, वो जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर वो जो टीन एज में होते हैं या वो फिर 24, 25, 26 साल की उम्र तक होते हैं, लड़के लड़कियां, आप उनको जमाने माशरे की नज़रों से ना देखें, अलग अंदाज में देखें। लेकिन उन बच्चों के लिए भी आज के प्रोग्राम में बहुत से सबक है, लेकिन क्या करूं, 1:09 हो गए प्रोग्राम में, बहुत सारी बातें हैं। अभी हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है जब भी प्रोग्राम का आगाज करता हूं तो 1 या 2% प्रोग्राम डिलीवर हो सकता है, टॉपिक का 1 या 2% या 10% 20% डिलीवर हो सकता है,
मुकम्मल तौर पर आज तक डिलीवर नहीं हो पाया, इसलिए इस प्रोग्राम का नाम अधूरी बातें रख दिया। किसी टॉपिक को मुकम्मल नहीं करता हूं मैं, उसमें से नई चीजें निकलकर सामने आती। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, सवाल आपके सामने रखूंगा, आपकी कोई लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, आज सिर्फ आपसे बात करूंगा और हो सकता है अगले आने वाले चंद प्रोग्राम में भी आपसे बातें हो पाए, आप सुन पाए। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास दो तरीकेकार हैं। सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज है जो कि पोस्ट लग गई है, अब आप वहां पे जाके अपने कमेंट्स, अपने जो भी आप ऐसा साथ फील कर रहे हैं लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं और मेरी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। मुबशर सईद का बड़ा खूबसूरत सा शेर आज मैंने पोस्ट पे लगाया हुआ है, तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं हो के दिखाऊं तुझको। वहां पे जाके पोस्ट को लाइक कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में अपने होने का हमें एहसास दिलाइएगा। सवाल पूछूंगा तो उस सवाल के हवाले से आपका जो भी दिल चाहे वो बता सकते हैं। खुद शनासी का सफर है, अपने आप को जानने का सफर है, इस सफर में आपकी आपसे मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ और सुनने का मन है, किसी और तरह से किसी और चीज को सुनने का दिल चाह रहा है, तो बहुत और रेडियो स्टेशंस भी हैं, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। लेकिन मोहब्बत को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए ये रास्ता बिल्कुल सही रास्ता मुंतखब किया है आपने। सो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि रुकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा एहसास मिलेगा।

वो हर्फगर है और ऐसी उम्दा के लफ्ज उसके हसीन पूरों को छू के बाबे सनत पे सजदे गुजारते हैं। मानी उसकी नफासतों के हजार सदके उतारते हैं। वो लफ्ज बुनती नहीं है कागज पे काटती है, मजाल है, मजाल है वो गुलाब लिखे। ओ माय गॉड, मजाल है वो गुलाब लिखे तो कागजों से महकना आए। ये कैसे मुमकिन है रंग लिखे तो कागजों पे धनक ना आए। वो कोरे कागज को छू ले तो खुशबुओं से निहाल कर दे। वो लफ्ज लिखे तो नज्म कर दे, वो नज्म लिखे कमाल कर दे। वो जैसे चाहे, वो जैसे सोचे हर एक तखयल में रंग भर दे। हर एक तरह से हसीन लफ्जों से खेलने का उसे हुनर है। वो हर्फ कर है और ऐसी उम्दा कि लफ्ज उसकी हसीन पूरों को छू के बाबे सनद पे सजदे गुजारते हैं।

خود کلامی خود شناسی کا سفر ہے. سفر میں بہت سارے موڑ آ رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی اگر اپنے کسی بہت قریبی انسان سے دھوکہ ملے یا کچھ ایسا ہو جو ہمیں پسند نہ ہو تو انسان اعتبار کھو دیتا ہے. کوئی اپنی جگہ پر نہ رہے, اس جگہ سے چلا جائے. جو پہلے میسر تھا وہ غیر حاضر ہو جائے, اعتبار ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو, سکتا ہے کہ اسے اعتبار ہو لیکن دوبارہ زخمی ہونے سے خوف آتا ہو. جہاں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے تنہائی پسند ہے, لیکن ہم ذرا زیادہ گہرائی میں جائیں, اپنے اندر اترنا شروع کریں تو ہمیں یہ معلوم ہونے لگے گا آہستہ آہستہ کہ شاید ہم تنہائی پسند نہیں ہیں, ہم صرف لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے نا, وہ ایک اور شخص ہے, وہ یہ کہتا ہے میں بہت آزاد خیال ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. لیکن شاید اپنے اندر وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ اسے کسی کے چھوڑ جانے سے فرق نہیں پڑتا یا کبھی فرق نہیں پڑے گا. یہاں سے, ان سوالات سے خود شناسی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے, اپنے آپ کو جاننے کا سفر شروع ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو صرف اتنا نہ جاننا کہ میں کون ہوں, بلکہ یہ جاننا کہ میں ایسا کیوں ہوں, میرا رد عمل ایسا کیوں ہے, میری خواہش ایسی کیوں ہے, مجھے فلاں بات اتنی زیادہ کیوں چبھتی ہے, میں کسی خاص انسان کی توجہ کا اتنا محتاج کیوں ہوں, مجھے کسی انسان کی آواز کی اتنی ضرورت کیوں ہوتی ہے. اور کبھی کبھی کسی انسان کے خاموش ہو جانے پر اپنی توہین کیوں سمجھنے لگ جاتا ہوں. محبت ملنے کے باوجود محبت پر یقین کیوں نہیں کر پاتا, کیوں بور ہو جاتا ہوں, بہت زیادہ قریب کیوں نہیں آنے دیتا کسی کو, اچانک فاصلے کیوں پیدا کر لیتا ہوں. یہ سوالات عام سوالات نہیں ہیں, یہ وہ سوالات ہیں جو دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے ملتے ہیں, اپنے اندر سے انسان حاصل کرتا ہے. اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر بات ہر سمجھ کے لیے نہیں ہوتی, کچھ باتیں بہت خاص ہوتی ہیں. خود شناسی کا جو سفر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. بعض اوقات دوسروں کو سمجھنا مختلف فارمولاز کی صورت میں نسبتاً آسان ہو جاتا ہے, ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. ہم کسی بھی انسان کے رویے کی وجہ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں, تلاش کر سکتے ہیں گزشتہ معلومات کی صورت میں. کسی بھی انسان یا اپنے گھر میں موجود اس انسان کے مزاج کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں جس سے ہمیں کبھی بھی خوبصورت احساس نہیں ملا, اپنائیت کا احساس نہیں ملا. اپنے محبوب کے کسی بھی جملے کا تجزیہ کر سکتے ہیں. بات اپنے اوپر آتی ہے تو اکثر ہم ذرا تھوڑے سے ڈر جاتے ہیں یا پھر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو فوراً سے ہم جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں, تلاش کرتے ہیں میں نے ایسا کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی, یہی وجہ ہے. میں نے غصہ اس لیے کیا تھا کیونکہ سامنے والے نے مجھے مجبور کر دیا تھا, اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا. خاموش میں اس لیے ہوا تھا کیونکہ مجھے تکلیف ہو گئی تھی, میں دور ہو گیا تھا کیونکہ مجھے تم سے ڈر لگنے لگا تھا. یہ سارے سوالات میرے اپنے ہیں, اپنے آپ سے ہیں. لیکن خود شناسی ابھی بھی دور ہے, ابھی بھی ایک قدم آگے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سامنے والے نے مجھے تکلیف دی ہے, لیکن
उस तकलीफ ने मेरे अंदर पैदा क्या किया है, जगाया क्या है मेरे अंदर? ये सवाल खुद शनासी के सफर का आगाज है। क्योंकि जो होना होता है ना, वो हो जाता है, हमारे इख्तियार में नहीं होता उसे रोकना। हादसे का रोकना, वाकये का, सानहे को रोकना हमारे इख्तियार में नहीं होता। लेकिन उस वाकये के बाद, उस सानहे के बाद हमारे अंदर क्या पैदा होता है, हाँ, उसे समझने की कोशिश की जा सकती है। ये हमारे इख्तियार में हो सकता है। मसलन किसी ने आपको जवाब नहीं दिया। एक शख्स सोचेगा शायद वो मसरूफ है, दूसरा सोचेगा वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तीसरा सोचेगा मैं उसके लिए अहम नहीं। एक ही वाकया, लेकिन एहसासात डिफरेंट है ना? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो हुआ है या जो हमने सोचा है, ये सिर्फ बाहर नहीं होता है, हमारे अंदर भी एक दुनिया आबाद होती है। हम जब किसी को मैसेज करते हैं और रिप्लाई फौरन नहीं मिलता, तो गुज़िश्ता मालूमात की सूरत में हम ये फैसला करते हैं कि वजह क्या हुई होगी। हो सकता है बिजी हो सकता है वो अभी देख ना पाया हो सकता है उसने साइलेंट पे मोबाइल किया हुआ हो सकता है इंटरनेट का मसला हो सकता है ये, हो सकता है वो, हो सकता है डबल टिक के बाद ब्लू टिक जो है ना, ब्लू टिक तक जो सफर होता है उसमें हमारे अंदर बहुत सारे एहसास जन्म लेते हैं। पूरी दुनिया बनती है हमारे अंदर। ये सारी की सारी जो दुनिया होती है, ये कायनात जो है, हमारे तजुर्बात, हमारी यादों, हमारे खौफ, हमारी तवक्कुआत, हमारे यकीन से मिलकर बनती है। यही वजह है कि कभी कभी सामने वाला इंसान वो नहीं कह रहा होता जो हम सुन रहे होते हैं, वो सिर्फ खामोश होता है और हम उस खामोशी में अपनी पूरी कहानी लिख देते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसलिए अक्सर कहा करता हूँ, अंदाजे मत लगाया करें। वो सिर्फ मसरूफ हो सकता है और हम समझ लेते हैं कि वो बदल गया है। वो सिर्फ थका हुआ हो सकता है, जेन्युइन उसके पास वक्त नहीं हो सकता और हम समझ लेते हैं कि उसे हमारी परवाह नहीं रही। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन तो होना चाहिए। और फिर एक दिन, एक पल में ही बात खत्म कर देते हैं। एक दिन वो हमसे बात ना करे, हमारे जहन में कैसे कैसे अंदेशे और कैसे कैसे ख्यालात जन्म लेने लग जाते हैं। हर इंसान की बात करो, फैसला बहुत जल्दी हम कर लेते हैं। मसला फैसला करने से पैदा होता है, बहुत जल्दी फैसला करने से। बारह, 1:27 हो चुके हैं। बहुत सारे पैगामात हैं जो मुझे मौसूल हो रहे हैं, मेरे मोबाइल में भी और मुख्तलिफ दूसरे सोशल नेटवर्क्स के ऊपर जहां जहां पे मैं अवेलेबल हूं। बार बार नोटिफिकेशन जो सामने आता है उससे ये अंदाजा हो रहा है कि हर इंसान जो इस लम्हे में मुझे सुन रहा है और वो किसी भी जगह, किसी भी वजह से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे मुझे अपने मैसेजेस कर रहा है और वो सारे मैसेजेस मुझे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाने हैं। ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इस्लाम, सबसे पहले इस्लाम का जिक्र करूँगा। इस्लाम मेरा बहुत प्यारा सा भाई है। 101 पे इंटर्न की सूरत में हमारे पास तशरीफ लाए और फिर उसके बाद टैलेंट नज़र आ जाता है, दिखाई दे जाता है, लाइट ब्लिंक होती है, बहुत दूर से वो ब्लिंक होती हुई लाइट नुमाया हो जाती है, क्योंकि मुनफरिद होता है, उसमें कुछ अलग होता है। सो इस्लाम, थैंक यू वेरी मच। आज का जो पोस्टर है वो इस्लाम ने डिजाइन किया है, थैंक यू वेरी मच इस्लाम। बहुत खूबसूरत लबो लहजा, उर्दू पर काफी महारत है इस्लाम को। थैंक यू वेरी मच इस्लाम, सलामत रहो, आबाद रहो, खुश रहो।
बहुत प्यारी सी छोटी सी राजकुमारी है, बेटी है, अभी एक साल की होने वाली है, बल्कि हो चुकी है 13 अगस्त को। राहिमा की बर्थडे है। राहिमा, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप सुन तो नहीं पाएंगी, हो सकता है सुन पा रही हूँ, कह नहीं पाएंगी, बदले में आ ऊ कह सकती हैं आप। सालगिरह बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो, हमेशा खुशियों भरी जिंदगी हो। अल्लाह ताला आपका नसीब हमेशा बहुत अच्छा करे, आपको, आपकी आंखों को, आपके वालदैन के लिए ठंडक का जरिया बनाए। बेटियों की जो आंखें होती हैं ना, वो ऐसा लगता है मुझे कि जैसे नूर की खिड़कियां होती हैं, छोटी सी बेटियों की जो आंखें होती हैं, वो जब पूरी आंखें खोलकर देखती हैं तो दिल को मुकम्मल सुकून महसूस होने लग जाता है। मुझे तो ऐसा ही मिलता है सुकून, मुझे तो ऐसा ही एहसास मिलता है। छोटी सी बेटी की आंखों को जब देखे, हर बच्चे के अंदर वही सुकून है, वही एहसास है। बहरहाल रहमा, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबादो शाद रखे, मुस्कुराता रखे, जीता रखे। बहरहाल इनबॉक्स में मुझे स्पेशल एक रिक्वेस्ट आई थी और मुझसे ये कहा गया था कि आज मेरी सालगिरह है तो प्लीज़ आज मुझे बहुत अच्छे तरीके से विश कर दें। बहुत अच्छा तरीका क्या होता है, अब आपकी नज़र में कौन सा अच्छा तरीका है? अच्छा, शायरी लिखी है आपने, शायरी पढ़कर मुझे विश करें और अपनी मर्ज़ी से पढ़कर मुझे विश करें। बहरहाल अभी इस वक्त तो मेरे जहन में कोई इतनी ख़ास शायरी है इस लिहाज से नहीं आ रही, लेकिन आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो फायजा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराती रहें, जीती रहें। पिछले 6 साल से आपके साथ सफ़र कर रही हूं, हर प्रोग्राम में शामिल होती हूं, मौजूद होती हूं, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं मैसेज लिखती हूं, लिखने के बाद मिटा देती हूं, क्योंकि बात का जवाब मुझे फौरन मिल जाता है उसके बाद, जैसे ही मैं कोई सवाल लिखने वाली होती हूँ। हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत खुशी होती है जब भी आप तशरीफ लाते हैं। आपके अलावा अभी तक किसी और को सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन अभी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से सुनने का इत्तेफाक हुआ है, आपसे पहले जो आरजे प्रोग्राम कर रहे थे। लगता है कि काफ़ी दिली वाबस्तगी है आपके साथ उनकी, कि वो आपका काफ़ी टाइम ले लेते हैं और आप हंसकर मुस्कुराकर उनको टाइम दे देते हैं। बहरहाल वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। जी हाँ, आरजे डॉक्स नाम है जी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं नाइट थेरेपी के नाम से, और भाइयों में ऐसा चलता रहता है, कोई बात नहीं। बहरहाल आपकी मोहब्बत का, आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ार होता है, आपने कहा 1 हफ्ते से, तो ज़रा जल्दी आ जाया करें। आ तो वैसे मैं जल्दी जाता हूँ। चफाइज़

अच्छा एक मिनट, आपने अभी एक शेर पढ़ा था, उस शेर की एक गजल है, वो प्लीज अगर आपके पास मौजूद है तो वो सुना दें। कौन सा शेर पढ़ा था मैंने? मुझे लगता है अभी तो मैंने बस एक ही शेर पढ़ा अभी तक, क्योंकि बातें ज्यादा आज हो रही थी। खुद शनासी का, अपने आप को जानने का सफर है, तो उसमें मैं खोया हुआ था। मुबशर सईद का शेर मैंने पढ़ा, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है, गजल है वैसे। बहरहाल कुछ ऐसे है कि हालत हाल में क्या रो के सुनाऊं तुझको, तू नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको। साहिब होश को मदहोश बनाने के लिए आयत हुस्न पढ़ूं देखता जाऊं तुझको। तू नहीं मानता मट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं हो के दिखाऊं तुझको। कर लिया एक मोहब्बत पे गुजारा मैंने, चाहता था कि मैं पूरा भी तो आऊं तुझको। अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है, अब जरूरी है कि मैं वजद में लाऊं तुझको। क्यों किसी और की आंखों का कसीदा लिखूं, क्यों किसी और की मिद्दत से जलाऊं तुझको। ऐन मुमकिन है तेरे इश्क में जम हो जाऊं, और फिर ध्यान की जन्नत में न लाऊं तुझको। उसने एक बार बड़े प्यार से बोला था सईद, मुबशर सईद की गजल है। उसने एक बार बड़े प्यार से बोला था सईद, मेरा दिल है कभी सीने से लगाऊं तुझको। 1:35 आपके मैसेजेस इसके बाद फौरन प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। ये ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट है और ये मुझे फायजा ने रिक्वेस्ट किया है। सो फायजा, ये आपके लिए, आपकी सालगिरह तो चले, मान लिया, लेकिन आपने आगे ये भी लिखा था, मर्जी हो तो चलाइएगा, आप अपनी मर्जी करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा लगता है कभी कभी इसको सुनना मुझे, तो चलें आए सुनते हैं।

Once again, welcome back. प्रोग्राम है अधूरी बातें और आपके साथ आपका मेजबान रहमान अनवर। अरसलान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं सरगोधा से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कह रहे हैं कि इस वक्त शेखुपुरा से सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, कह रहे हैं कि पहली मर्तबा सुना है और बहुत सुकून मिला, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अवैस खुश रहें, आबाद रहें।

आपने नाम लिखा है प्यारी लड़की और मैसेज में लिखा है कि ये पहली मर्तबा सुना है जिसमें टॉपिक को डिस्कस मुकम्मल तरीके से करने की कोशिश की जा रही है और बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि वो फिल्म की तरह मेरे दिमाग पे चल रहा है। फिर कभी अपना नाम बताऊंगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप और ट्रैक सिलेक्शन भी कमाल है। ये वाला जो ट्रैक आपने चलाया है ये मेरा फेवरेट ट्रैक है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आगे से आपने ये लिखा है कि इस तरह से अपने आप को जानने की मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन आपकी बातों से बार बार अपने अंदर भी झांकने की कोशिश कर रही थी कि इन सवालात का जवाब क्या है, तो मुझे बहुत मजा आने लगा। आपने अपने आप से मिलवाया है। अच्छा, आपने अपने आप से मिलवाया है मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।

किरण राणा हमारे साथ हैं और लिख रही हैं कि ये कहानी जो आपने शुरू की है, इसमें जहाँ पे जिक्र अपने घर वालों का आया, उस वक्त मेरी आंखें नम हो गईं। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मुझे भी तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थीं जब तक कि मैं अपनी जॉब नहीं करने लगी और ज़िंदगी को पूरे तरीके से इन्जॉय नहीं करने लगी। बाज़ औक़ात हमारे बड़ों को नहीं मालूम होता हमारे दिल के ऊपर क्या गुज़र रहा है, और बाज़ औक़ात वो आपके घर के सरबराह होते हैं, बड़े होते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाता है, आप वहाँ से निकल जाते हैं। ये जितने भी आपने सवालात किए हैं, ये सब सवालात उन दिनों मैं किया करती थी। इन दिनों बहुत खुश हूँ, और आपकी की बात है कि खुशी में बाज़ औक़ात इस तरह के सवालात जन्म नहीं लेते। इससे पहले प्रोग्राम में आप जब बैठे आकर और आपने जब नफ़ी का ज़िक्र किया तो बहुत अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल की बात कर दी हो। इतना इनकार सुना है रहमान मैंने कि मुझे अब किसी भी चीज़ से खौफ नहीं आता, और मोटिवेशन चाहने से मिलती है, चाहे जाने से। आप बेमुरवती इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है। बहरहाल किरण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लंबे मैसेजेस आज मौसूल हो रहे हैं, आज आपके सारे पैगामात पढ़ूंगा मैं।

सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101lahore, और कमेंट सेक्शन के पैगाम पढ़ूंगा, उसके बाद आऊँगा वो तमाम पैगाम पढ़ूंगा जो कि मुख्तलिफ दूसरे सोशल नेटवर्क्स के ऊपर हमें मौसूल हुए। सो आप भी अगर कमेंट करना चाहते हैं तो फौरन से कमेंट सेक्शन में आकर, FM 101 लाहौर का ऑफिशियल फैन पेज है और वहां पे आकर कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब, अपना ख्याल, अपना एहसास लिख सकते हैं खुद शनासी के हवाले से। महजबीन हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान। वालेकुम अस्सलाम महजबीन, शुक्रिया। उस्मान बिन अमदाद हमारे साथ है, जद्दा से सुन रहा हूँ, बहुत आला प्रोग्राम रहमान भाई, आपकी बातें सुनकर लाहौर की ज़िंदगी की याद आ गई, ब्लेस यू ऑलवेज सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उस्मान, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। किंग फजल खान कक्कड़ हमारे साथ हैं, वेलकम कह रहे हैं। मरीना बिलाल, आरजे रहमान वेलकम कह रही हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहें। राना मुजाहिद राना हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मैं आपको लाइव देख रहा हूँ, वीडियो नहीं आई, लाहौर बत्ती चौक से। अच्छा, मैं लाइव पे नहीं आया, बहरहाल सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं, आरजे रहमान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। महजबीन कह रही हैं कि टॉपिक को रिपीट करें, खुद शनासी की बात कर रहा हूँ, अपने आप को जानने की बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू है आज, आज बात है बस। राना मुजाहिद हमारे साथ हैं सर, वेलकम जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। गुलाब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सज्जाद अली लाडला हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, सदा हंसते और मुस्कुराते रहें इसी तरह, जो कोई दुख और कोई परेशानी आपके पास है, अल्लाह पास ना आए, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, चलिए थैंक यू। खिताब खान हमारे साथ हैं, जर खिताब खान, दिल भेजा आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किंग फजल खान कक्कड़ फ्रॉम शाहीन क्वेटा पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहो, वेरी वेरी नाइस शो। गुलाब कह रहे हैं बहुत शुक्रिया, तमाम सुनती समातों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पाकिस्तान पंजाब एंड पाक आर्मी को सलाम, बहुत शुक्रिया। सज्जाद अली लाडला कहते हैं कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा, तुम गिराने में लगे थे तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसल कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा।

क्या मैं बेवफा बन जाऊंगा, हो जाऊंगा? किंग फजल खान कक्कड़ ने दिल भेजा है, राना मुजाहिद ने भी दिल भेजा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आयशा सुल्तान हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, अपनी असल हालत इंसान हमेशा मख्फी रखता है, एक खौफ भी होता है कि दुनिया पागल समझेगी, लोग क्या सोचेंगे, हमारा क्या इमेज रह जाएगा। इंसान में बहुत से राज पोशीदा हैं। बाकी इंटर्नशिप पर आपने हमारा प्रोग्राम बराह रास्त सुना और प्रोग्राम पर दाद दी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा आयशा, आप प्रोग्राम करती हैं यानी इंटर्न हैं आप यहाँ पे, मुझे नहीं मालूम था। बहरहाल वेलकम कहता हूँ आपको, आप जितने भी इंटर्न्स हैं बहुत काबिल हैं, बहुत काबिल हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस इवेंट को चार चांद लगाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा है। बहरहाल क्वालिटी इंसान के अंदर मौजूद होती है, प्लेटफॉर्म मिलने की देर होती है, और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। गुलाब हमारे साथ हैं, कह रहे हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, अरे क्या बात है, खूबसूरत शायरी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूं और 1:51 हुआ चाहते हैं, टाइम जो है 9 मिनट बाकी है हमारे पास।

न्यूएस्ट कमेंट्स में आया, सर मैं इस्लाम के साथ मौजूद थी। अच्छा ठीक है, इस्लाम जो है ना वो बहुत प्यारा भाई है, इस्लाम सलामत रहो। ये मेरा फर्स्ट टाइम है आपको लाइव सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। और आपका जो नाम है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पता नहीं माही लिखा है या मानी लिखा है, और ये इतना बड़ा सा नाम लिखा हुआ है आपने तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जिम सॉक लिखा है, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा है। जुनैरा फ्रॉम लाहौर, आई वॉन्ट टू अ क्वेश्चन विद यू, व्हाई आई फील अलोन। अभी मैंने बात की थी प्रोग्राम में कि बाज़ोकात हम जब तन्हा महसूस कर रहे होते हैं अपने आप को, दरअसल ऐसा तो नहीं है कहीं जुनैरा कि बाकी जितने भी लोग हैं हमारे आसपास हम उनसे मायूस हो चुके होते हैं। वैसे ही सवाल रहमान ब्रो आपसे एक बात पूछनी थी, मतलब आपकी बात से एक बात याद आई, अभी जो आपने किसी को विश कर रहे थे बर्थडे में, इतना इस बात की नहीं रखता लेकिन आप बेहतर जानते हैं मुझे। बहरहाल बहुत लंबा मैसेज, नेक्स्ट ये मैसेज मैं पढ़ने के बाद जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। एक और बार रिफ्रेश करते हैं और फिर उसके बाद आपके कुछ पैगामात जो मेरे पास मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पे मुझे टाइम हमेशा लग जाता है, क्या करूँ मैं, हमेशा हमेशा हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। टॉपिक जो है वो अधूरा रह गया फिर से, अभी बहुत सी बातें थी, बहुत बहुत सी बातें, क्या करूँ। जीशान हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, सही कहा आपने, आजकल जाहिर कुछ बातें कुछ है, ऐसा ही। अरे वसीम साहब तशरीफ ला चुके हैं, वेलकम कहते हैं वसीम साहब को दूसरी तरफ खिड़की के उस पार। खुद शनासी ही तो असल सफर, असल सफर जीस्त होती है, इसके अलावा बंदगी का सुरूर क्या। हाँ फरा अफजाल हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सलमान हूँ, सलमान वेलकम। ये तुमने कैसे कैसे किया है, इतना लंबा सा नाम है, क्या है इसमें लुड्डो के

खाने बने हुए और पता नहीं क्या क्या इसमें तुमने। बहरहाल ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सलमान। खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो। यहाँ के नाम जल्दी से शामिल करते हैं, सलमान, जीशान, फसीहा, जन्नत, अमल, हबीब, सज्जाद अली, लाडला, मरीना, बिलाल, फखरुल हसन, उम्मे जुनेद हमारे साथ मौजूद, गुलाब, साजिद अली, मोहम्मद तुफैल, अहमद, राना मुजाहिद, आयशा सुल्तान, किंग फजल खान कक्कड़ हमारे साथ मौजूद, रियाज भट्टी, सोमरो, अरबाब अली, जर खिताब खान, महजबीन, नसीमुद्दीन, ठीक है, या नाजिमुद्दीन, ऐसे ही कुछ नाम होगा।

बहरहाल प्रोग्राम में इख्तितामी मराहिल हैं। अपने आप को देखने के लिए बहरहाल हिम्मत चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात अपने आप को देखना हमेशा खूबसूरत नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, वहाँ ऐसे बहुत सारे हिस्से नज़र आते हैं जिन्हें हमने बरसों से छुपा के रखा होता है, ऐसा है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट हील व्हाट यू रिफ्यूज टू सी। जिस चीज़ को देखने से ही इनकार कर दें उसे समझ कैसे पाएंगे। और जैसे बहुत से लोगों ने कहा है कि जिसे समझ ना पाए उसे बदल कैसे पाएंगे। इसलिए अपने अंदर के इंसान से मत घबराइए, उसके करीब जाइए, उसे सुनिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कहीं कोई कमज़ोरी मिले तो उससे नफरत नहीं, शऊर की नज़र से देखना चाहिए। अगर कोई ज़ख्म मिले तो उसे शर्मिंदगी से नहीं, उसे अता समझना चाहिए, शफकत, शफकत का पानी देना चाहिए उसे, या शफकत का मरहम लगाना चाहिए। अगर कोई गलती मिले तो उसे एक्सक्यूज़ नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। और अगर कोई खूबसूरती मिल जाए, जो कि अक्सर बहुत से लोगों को अपने अंदर सबसे पहले वही मिल जाती है, तो उसे छुपाइए नहीं, उसे भरपूर तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। आज का जुमला जो मेरे जहन में है, खुदशनासी दरअसल अपने आप को कामिल पाने का नाम नहीं है, अपने आप से सच मिलने का नाम है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को एतराज हो, दुनिया को समझने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर को, अपने अंदर की इस कायनात को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं क्या चाहता हूँ ये जानना ज़रूरी होता है, तब यकीन पैदा होता है गुफ्तगू में, बात में। हम सारी ज़िंदगी लोगों को तलाश करते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं जो हमें समझ सकें। हमें ऐसे लोग मिल जाएं, मिल भी जाते हैं, कोई ऐसा शख्स जो हमारी खामोशी समझ ले, हमारे फ़ोन कॉल का इंतज़ार करें, कोई ऐसा शख्स जो हमारे लहजे के पीछे छुपी हुई थकन को समझ ले, कोई ऐसा शख्स जो हमारी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दुख को समझ ले, जो ऐसा हमसे पूछे तुम वाकई ठीक हो, सच बताओ ना, आज का सबसे बेहतरीन पल कौन सा था तुम्हारा, तुम ठीक हो ना। ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको जिम्मेदारी समझो कि तुमने बात करनी ही है मुझसे, बस मैंने पूछा है, बताओ, नहीं बताना ना बताओ, लेकिन तुम्हारे साथ हूँ मैं। ऐसा कोई बड़ा चाहिए कि सारे दिन की थकन के बाद अगर तुम्हारे मन में कुछ सवालात हैं, कुछ ख्यालात हैं, कुछ मुझसे गलत हो गया है, माफ़ कर दो मुझे। आज के दिन में अगर कुछ मैंने कह दिया है, माफ़ कर दो मुझे। अपने बच्चों से ऐसा कहना शुरू करें जो बड़े मुझे सुन रहे हैं, और जो छोटे सुन रहे हैं वो कोई बात नहीं है। अगर बड़े ऐसा नहीं भी कर रहे तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ नया ज़रूर करेंगे, मैं जानता हूँ। बहरहाल टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के, हाँ ख़त्म हो चुका है। आज की रात खुद से आपने मिला, मुझे ऐसा लगता है कि खुद से मिलना जो होता है वो हमेशा बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा करता है, हमें बेहतर बनाने की कोशिश करता। मैंने बहुत बार दस्तक दी है आज, मुझे लगता है कि आपने दरवाज़ा ज़रूर खोला होगा, आप अंदर भी गए होंगे, अपने आप से मिले होंगे। बाज़ औक़ात तो आपको ऐसा भी लगा होगा कि ये तो अजनबी है जो मेरे ही अंदर रह रहा है, लेकिन आप खुद से मिले हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। खुद शनासी का जो सफ़र है अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया है। ये बहुत बहुत कम है जो आपसे गुफ्तगू की सूरत में निकलकर सामने आया। बहरहाल अगर कल के प्रोग्राम में मैं आ सका तो ज़रूर आपसे और किसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस खुदशनासी के टॉपिक पे दोबारा कभी ज़िंदगी में अगर मौका मिला, अगर ऐसा एहसास दोबारा फील किया तो ज़रूर बात करेंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इस्लाम ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कुछ टॉपिक्स के हवाले से, उसको भी, उनके कुछ हिस्सों को भी हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। उम्मीद करते हैं
کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ، کوئی نہ کوئی سرا ضرور ملا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو طفل مکتب سمجھ کر، یہ سوچ کر کے ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوں، درگزر کر دیجئے گا یا پھر معاف کر دیجئے گا، بڑے لوگ ہیں آپ۔ لیکن اگر کوئی ایک بات کسی ایک انسان کے لیے بھی مشعل راہ ہو گئی، یہاں پہ آنے کا، پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل یا پھر نیکسٹ ویک ونسڈے یا پھر 14 اگست کے کسی پروگرام میں، ہو سکتا ہے۔ کل ہم 14 اگست کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اس جشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے سانس لینے کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے، آزادی سے سانس لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ پاکستان، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ میں زمین سے ایک دن آسماں کو آؤں گا، تم پہلے آسماں پہ میرا انتظار کرنا۔ اللہ حامی ناصر۔

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: This is FM 101.

0: smile and dial 111-000-101 FM.
1: This is FM 101.

Music. Q101 Electric. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

जो भी दुख याद न था याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया, आज क्या जानिए क्या याद आया। फिर कोई हाथ है दिल पर जैसे, फिर तेरा अहदे वफा याद आया। जिस तरह धुंध में लिपटे हुए फूल, एक एक नक्श तेरा याद आया। ऐसी मजबूरी के आलम में कोई याद आया भी तो क्या याद आया। याद आया था बिछड़ना तेरा, फिर नहीं याद के क्या याद आया। जब कोई जख्म बड़ा दाग बना, जब कोई भूल गया याद आया। ये मोहब्बत भी है क्या रोग फराज, ये मोहब्बत भी है क्या रोग फराज, जिसे भूले वो सदा याद आया। जो भी दुख याद न था याद आया, आज क्या जानिए क्या याद आया। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आपके लिए आपकी पसंद का प्रोग्राम गुंजे शौक लेके मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले, जितनी भी समाते हैं, तमाम समाते बिल्कुल खैर खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। आपका मेरा साथ इस प्रोग्राम में रात के 2 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक होता है। रात का ये आखिरी पहर होता है जिसमें हम बहुत सारी शायरी आपके लिए लेके आते हैं, कुछ गुजरे हुए ज़माने की बात करते हैं, कुछ यादों की बात करते हैं, कुछ ख्वाहिशों की बात करते हैं, कुछ नामुकम्मल अधूरी ख्वाहिशों की बात करते हैं, और कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि दिल के अंदर मौजूद होती है मगर हम कभी किसी को कह नहीं पाते, उन चीज़ों की बात करते हैं। गुजरे हुए तवील ज़माने के बाद भी दिल में रहा वो छोड़ के जाने के बाद भी, गुजरे हुए तवील ज़माने के बाद भी दिल में रहा वो छोड़ के जाने के बाद भी, पहलू में रह के दिल ने दिया है बहुत फरेब, रखा है उसको याद भुलाने के बाद भी। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं हमारे, जो कि हमारे दिल में हमारे दिमाग में समा जाते हैं, और हम जितना मर्जी चाहें कि हम उनकी यादों से उनकी सोचों से अपने आप को अलग कर ले, नहीं कर पाते। वो हमारे दिल के नहा खाने में कहीं छिप के बैठ जाते हैं और हम उन्हें लाख चाहें कि वो वहाँ से निकल जाए, वो नहीं निकल पाते क्योंकि हमारा दिल उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता और यादें कभी वहाँ से उनको बाहर निकलने नहीं देती। वो कहीं भी चले जाएं, दिल में मौजूद रहते हैं। कहते कि कभी कभी हमें जवाब नहीं चाहिए होता, कभी कभी हमें जवाब नहीं चाहिए होता, सिर्फ कोई ऐसा शख्स हमें दरकार होता है, ऐसा शख्स हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो जो हमारी बात पूरी तरह सुन ले। और इसी को हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करता है तभी तो हमारी बातें सुनता है, तभी तो हम उससे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और कह भी देते हैं। मगर ऐसे शख्स मिलते कब हैं, बहुत रेयर, बहुत बहुत कहीं कहीं बहुत कम है कि कहीं कोई ऐसा शख्स हमारी ज़िंदगी में आए जो कि हमारी बातें सुनता रहे। क्योंकि बातें कहना बहुत आसान है, बातें सुनना बहुत मुश्किल है। चाहे वो कितनी ही मीठी क्यों ना हो, एक वक्त आता है कि हम उन मीठी बातों से भी बोर हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि अब कोई और बात हो, कोई इसी और तरह से, और कुछ ना कुछ जवाब हम ज़रूर दे देते हैं। मगर फिर भी
अगर ऐसा शख्स हमारी जिंदगी में मौजूद है जो कि हमारी बातें सुनता है, जवाब चाहे नहीं देता, तो यकीन मानिए हम अपने आप को खुशकिस्मत कह सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ होते हुए भी जिंदगी बिल्कुल खाली खाली सी क्यों लगती है। हम देखते हैं कि हमारे पास हर चीज मौजूद है, यहां तक कि हमारे पास वक्त भी मौजूद है किसी से मिलने का, किसी से बातें करने का, कहीं जाने का टाइम भी हमारे पास मौजूद है, किसी को फोन करने का भी टाइम मौजूद है, टेलीफोन भी मौजूद है, और इसके साथ साथ सारी फैसिलिटीज हमारे पास दस्तियाब हैं, मगर फिर भी जिंदगी खाली खाली लगती है। हम देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या कमी है। हम सोचते हैं कि कौन सा खाना खाया जाए, हम वो खाना अल्लाह ताला में दे देते हैं, हम वो खाना खाते हैं जो हमारा दिल चाहता है। बेशुमार नेमतें हमारे पास मौजूद होती हैं, इसके बावजूद हम इधर ध्यान करते हैं, उधर ध्यान करते हैं, हमारा दिल नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ होते हुए भी कभी कभी जिंदगी खाली खाली क्यों लगती है? आपके पास अगर इसका कोई जवाब है तो ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रेम का यही टॉपिक है, और प्रेम आपका जाना बचाना गुंचा शौक, और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरे प्रेम को सुन रहे होंगे। आप लोगों का इसलिए मैं ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग रात के इस पहर में जबकि बिल्कुल नींद गहरी होती हो जाती है, आप लोग जाग रहे होते हैं और मेरे प्रेम को सुन रहे होते हैं। ना सिर्फ सुन रहे होते हैं बल्कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। आपके कमेंट्स फेसबुक पे आते हैं, आपके SMS आते हैं, आपके ऑफ एयर कॉल्स आते हैं, आपकी ऑन एयर लाइव कॉल्स हम लेते हैं वो भी आपकी बहुत सारी आती है। तो यकीन मानिए लगता नहीं है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि ये वाला टाइम है, बल्कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आम दिन के शाम का कोई टाइम है। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है जो कि 11FM के साथ है और हमारे साथ है कि आप इस वक्त भी हमारे प्रोग्राम को बहुत गौर से सुनते हैं और उसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। मोहतरम सामीन, क्योंकि प्रोग्राम बेस करता है पोइट्री के ऊपर, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अशार जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शायरी आपको सुनाऊँ। तो मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि जब आप आएँ या हमें मैसेज करें, तो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छी आप खुद लिखते हैं, शायरी करते हैं, तो अपना शेर भेजिए। अगर आपके पास बहुत अच्छी कलेक्शन मौजूद है तो आप वो हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी आपकी खूबसूरत जो पसंद है आपकी उसको एंजॉय कर सकें। अब तो उसके दिनों में बहुत दूर तक आसमां है नए और नई धूप है, अब तो उसके दिनों में बहुत दूर तक आसमां है नए और नई धूप है, अब कहां याद होगी उसे रात वो, अब कहाँ याद होगी उसे रात वो जिसके गुजरे हुए एक ज़माना हुआ, अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं, अब कहाँ याद होगी उसे रात वो जिसको गुजरे हुए एक ज़माना हुआ, अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं, जाने मन अब वो दिन लौटने के नहीं, छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ। तो साहब जो किस्सा पुराना हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए, मगर क्या है कि दिल कमबख्त ऐसी चीज है कि बार बार उसी किस्से को दोबारा से छेड़ता है, उसी जमाने को याद करता है, उसी जमाने में जाने की बात करता है। और जब इसी तरह से हम वापस बार बार अपने उस ज़माने में जाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि वो एक अजीब गम का शोला जो है वो लपक पड़ता है, और अपने आप को हम बिल्कुल तन्हा और बिल्कुल गैर महसूस तरीके से अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं।
ऐसे लगता है कि जैसे हम बिल्कुल तन्हा हैं, अकेले हैं, सहरा है चारों तरफ, आंधियां हैं, तूफान है, हम अकेले खड़े हैं, कोई सहारा नहीं है साथ। ऐसे लगता है कि जैसे धड़कन सी जो है वो थम सी जाती है। अब्दुल हमीद आदम का कलाम है कि शोले गम की लपक और मेरा नाजुक सा मिजाज, शोले गम की लपक और मेरा नाजुक सा मिजाज, मुझको फितरत के रवैये पे हंसी आती है, और तो दिल को नहीं है कोई तकलीफ अदम, और तो दिल को नहीं है कोई तकलीफ अदम, हाँ जरा नब्ज किसी वक्त ठहर जाती है। कभी कभी किसी की याद जो होती है वो भी दिल की धड़कन को थमा देती है, एकदम से हम रुक जाते हैं, सारा जमाना रुक जाता है, हर तरफ एक खामोशी छा जाती है, और हम कभी भी उन यादों से अपने आप को बाहर नहीं ला पाते। मेरा ख्याल ये इसलिए होता है कि जिंदगी में किसी एक शख्स की इतनी अहमियत होती है कि वो हमारे दिल में धड़कन की तरह समाया होता है। जब कभी हम उसको शिद्दत से याद करते हैं तो हमारी धड़कन तेज हो जाती है और कभी रुक सी जाती है। और इसी तरह से आपके लिए और बहुत सारी बातें हमारे पास मौजूद हैं, आपकी पसंद की बहुत खूबसूरत पोइट्री हमारे पास मौजूद है, आपके मैसेजेस का, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार होता है। और दिल की बात अगर हम करें तो दिल तो जनाब अजीब मुसाफिर है, अजीब मुसाफिर है, अजीब इसकी इसके चाल चलन है, अजीब इसके रवैया है कि जहां से लौट आता है वहां की खुशबू साथ ले आता है। वो कहते हैं कि जब दिल कहीं से लौट के आता है वहां की खुशबू साथ लाता है, खुशबू के साथ वहाँ की जो है वो ऐसा साथ वो भी साथ लाता है, और उन लोगों की तस्वीर भी साथ लेके आता है। तो जब हम अपने दिल की जानिब निगाह उठा के देखते हैं तो हमें वो खुशबू भी मिलती है, वो एहसास भी जाग उठता है, और हमारे इर्द गिर्द खुशबू का हाला भी बन जाता है, और हम उस शख्स की तस्वीर को भी देख लेते हैं जो हमारे दिल में समाया होता है। इसी तरह से जनाब आपके लिए और मेरे पास से बहुत खूबसूरत सा कलाम है, उसे प्रोग्राम में शामिल करता हूं। गम की मियाद बढ़ा जाओ कि कुछ रात कटे, गम की मियाद बढ़ा जाओ कि कुछ रात कटे, हिजर में आहो बका रस्में कुहन है, लेकिन आज ये रस्म ही दोहराओ के कुछ रात कटे, गम की मियाद बढ़ा जाओ के कुछ रात कटे, हिजर में आहो बका रस्में कुहन है, लेकिन आज ये रस्म ही दोहराओ के कुछ रात कटे, यूं तो तुम रोशनी कल्बो नजर हो, लेकिन आज वो मोजज़ा दिखलाओ कि कुछ रात कटे, दिल दुखाता है वो मिलकर भी मगर आज की रात, दिल दुखाता है वो मिलकर भी मगर आज की रात, उसी बेदर्द को ले आओ कि कुछ रात कटे, दिल दुखाता है वो मिलकर भी मगर आज की रात, उसी बेदर्द को ले आओ कि कुछ रात कटे, धम घुटा जाता है उसरदा दिली से यारो, दम घुटा जाता है उसरदा दिली से यारो, कोई अफवाह ही फैलाओ कि कुछ रात कटे, मैं भी बेकार हूं और तुम भी हो वीरान बहुत, मैं भी बेकार हूं और तुम भी हो वीरान बहुत, दोस्तों आज ना घर जाओ कि कुछ रात कटे, छोड़ आए हो सरे शाम उसे क्यों नासिर, छोड़ आए हो सरे शाम उसे क्यों नासिर, उसे फिर घर से बुला लाओ कि कुछ रात कटे,
गम की मियाद बढ़ा जाओ कि कुछ रात कटे। हिजर में आहो बका रस्म कुहन है, लेकिन आज ये रस्म ही दोहराओ कि कुछ रात कटे। आज ये रस्म ही दोहराओ कि कुछ रात कटे।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: Smile and dial 111-000-101 FM.
2: This is FM 101.

सुरों संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरों संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं गुंचे शौक। मैं हूं आपका मेज़बान आरजे वसीम अहमद, सुबह के 4 बजे तक मेरा आपका साथ। और आप ये प्रोग्राम नेटवर्क पे सुन रहे हैं FM 101 के, उसके साथ साथ आप हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर भी आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं और सुन रहे हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारा रेडियो पाकिस्तान का ऐप जो है अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसी तरह से आप हमारी वेबसाइट पे जाके जिसका पता है www.radio.gov.pk, वहाँ पे जाके भी आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के आप हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं और उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ये नज़र की जिद है ज़ालिम मेरा दम निकल न जाए, ये नज़र की जिद है ज़ालिम मेरा दम निकल न जाए, मुझे सिर्फ इसका डर है कि ये तीर चल न जाए। ये नज़र की जिद है ज़ालिम मेरा दम निकल न जाए, वो उठी है आतिश गम के नफस नफस से सोजा, वो उठी है आतिश गम की नफस नफस है सोजा, मेरी रूह तपना उठे मेरा जिस्म जल न जाए। वो उठी है आतिश गम की नफस नफस है सोजा, मेरी रूह तप न उठे मेरा जिस्म जल न जाए। मेरी राजदान से हंसकर वो खताब कर रहे हैं, काबिले गौर शेर है। मेरे राजदान से हंसकर वो खताब कर रहे हैं, कहीं थपकियों में आकर कोई राज उगल न जाए। तेरी बज्म में जो हम हैं तो यहाँ पे गैर क्यों हो, तेरी बज्म में जो हम हैं तो यहाँ पे गैर क्यों हो, ये खलिश निकल न जाए ये अजाब टल न जाए। वो उठा रहे हैं चिलमन वो दिखा रहे हैं सूरत, वो उठा रहे हैं चिलमन वो दिखा रहे हैं सूरत, कहीं होश उड़ न जाए, कहीं होश उड़ न जाए, कहीं दिल मचल न जाए। मैं चिरागे नातवा हूँ कोई दम का मेहमा हूँ, मैं चिरागे नातवा हूँ कोई दम का मेहमा हूँ, मेरे सामने से उठकर कोई एक पल न जाए। वो नसीर सुन रहे हैं मेरे दर्द का फसाना, वो नसीर सुन रहे हैं मेरे दर्द का फसाना, मुझे हर घड़ी है धड़का कहीं रुख बदल ना जाए। मेरी राजदान से हंसकर वो खिताब कर रहे हैं, कहीं थपकियों में आकर कोई राज उगल ना जाए। ये नज़र की जिद है ज़ालिम मेरा दम निकल ना जाए, मुझे सिर्फ इसका डर है कि ये तीर चल ना जाए। 101 FM पाकिस्तान, आपका अपना फैमिली स्टेशन, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपने हमारे फेसबुक पेज भी आ सकते हैं जिसका पता है www.facebook.com/fm101lahore। SMS के लिए आप लिखेंगे 101 स्पेस देंगे, अपना नाम पैगाम लिखेंगे और सेंड करेंगे 4471 पे। आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत करते हैं। मुझे इंतज़ार होता है आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का। तो प्रोग्राम में सबसे पहले जो कॉल हम तक पहुंची वो अब्दुल हमीद की फारूकाबाद से पहुंची। उन्होंने बोधी जट को, मोहम्मद शहजाद को और अनिल जी को और सारे सुनने वालों को सलाम भेजा। अब्दुल हमीद, आपका बहुत शुक्रिया, रात के इस पहर में आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और प्रोग्राम में कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं आपको टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शहजाद हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं, शादबाग से कह रहे हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे लिए दुआ करें। तो जनाब आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द से तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। कैसरा हमारे प्रोग्राम में शामिल है, तमाम सुनने वालों को सलाम। आपका आना इस वक्त क्योंकि बहुत मुश्किल है इस वक्त आना, आप आते हैं तो आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। हम तो मजबूर वफा हैं मगर जाने जहां अपने उस शाख से ऐसे भी कोई करता है, हम तो मजबूर वफा हैं मगर जाने जहां अपने उस शाख से ऐसे भी कोई करता है। तेरी महफिल को खुदा रखे अब तक कायम, हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के हमारा क्या है। बहुत शुक्रिया आपका कैसरा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फैज़ अहमद फैज़ का
पोइट्री आपने प्रोग्राम में शामिल की। कहते कि इंसान जो होता है ना, वो हम कहते हैं कि जनाब हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इस तरह से अपने दिल को बहला लेंगे, हम इस तरह से अपने दिल को बहला लेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बिता लेंगे, अपनी उम्र इस तरह गुजार लेंगे। अगर गौर किया जाए तो इंसान अपनी उम्र नहीं जीता, बल्कि वो अपने याद रह जाने वाले लम्हे जीता है। जो लम्हे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, असल में हम उन्हीं लम्हों के अंदर, अगर गौर किया जाए तो इंसान अपनी उम्र नहीं जीता, बल्कि वो अपने याद रह जाने वाले लम्हे जीता है। जो लम्हे

गो की हाल ही सब कुछ होता है, मगर वो भी हमें फीका फीका सा महसूस होगा। और खैर मुस्तकबिल की तो बात ही नहीं की जा सकती, उसके बारे में हम अंदाजे लगा सकते हैं बस, क्योंकि वो भी आना है, हमें पता नहीं वो कैसा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। माजी जो होता है, जो यादें होती हैं, वो माजी में पोशीदा होती हैं, उन्हें कुछ लोग कुरेदते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें कुरेदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो यादें हमेशा उनके साथ जुड़ी रहती हैं। असल में होता क्या कि हम वक्त को गुजरता हुआ समझते हैं कि वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है, हकीकत में वक्त हमें बदलता हुआ गुजर रहा होता है, वक्त हमें बदल देता है। जैसे जैसे वो गुजरता है हमारे अंदर तब्दीलियां पैदा होती चली जाती हैं। कुछ चीज़ें जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं उस वक्त कि अपनी ये हमें मेरी चाहे कोई जान ले ले और मुझे उसके बदले में ये चीज़ दे दे, वही चीज़ें वक्त बदलने के साथ साथ, वक्त उनकी जो वक्त है, जो उनकी हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश होती है, उसको बहुत कम कर देता है। वही चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती हैं, वो लोग हमारे सामने मौजूद होते हैं, मगर हमारे अंदर वो पहले वाली तड़प, वो पहले वाली मोहब्बत, वो पहले वाला प्यार, वो पहले वाली जो कसक है, वो मौजूद नहीं होती। एक और बहुत मज़े की बात है, अक्सर मैं सोचता हूँ कि जनाब हम ये कहते हैं कि जी कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा एक आधा दोस्त है, मैं उससे क्या मिलूँ, कितना मिलूँ, बार बार उसी से मिलूँ, क्या करूँ, तन्हाई है, अकेलापन है, क्या क्या चीज़ है। मगर जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं कि हम अकेले हैं, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि भीड़ में भी कोई हमें समझने वाला नहीं। हम बाहर निकलते हैं, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, हम अपने घर के करीब गर्भोजवार में जाते हैं, हम अपने मोहल्ले में जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, मगर कोई भी हमें समझने वाला नहीं मिलता। जब तक हमें कोई समझने वाला नहीं मिलेगा, हम अपने आप को अकेले ही महसूस करेंगे। इसलिए अगर कोई हमें समझने वाला मिल जाए, हमारी ज़िंदगी में आ जाए, तो समझिए कि आपको बहुत बड़ी नेमत जो है वो मैसर आ गई, कि कोई शख्स आपकी बात को सुन रहा है, कोई शख्स आपकी बात को समझ रहा है, कोई आपके दिल की धड़कन को महसूस कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि दिल जो है वो ऐसा मुसाफिर है कि जहाँ से लौट के आता है वहाँ की खुशबू साथ लाता है, तो जो लोग हमारे दिल में बस जाते हैं उनकी खुशबू हमारे साथ मौजूद रहती है, उनकी मोहब्बत, असल में वो खुशबू जो होती है, वो मोहब्बत होती है, वो हमारे साथ में हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है।

आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया। आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया, अपने उजड़े हुए गुलशन को बहुत याद किया। आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया, अपने उजड़े हुए गुलशन को बहुत याद किया। जब कभी गर्दिश तकदीर ने घेरा है हमें, केसुए यार की उलझन को बहुत याद किया। शमा की जोत पे जलते हुए परवानों ने एक तरह शोले दामन को बहुत याद किया। शमा की जोत पे जलते हुए परवानों ने एक तरह शोले दामन को बहुत याद किया, जिसके माथे पे नई सुबह का झूमर होगा। हमने उस वक्त की दुल्हन को बहुत याद किया। आज टूटे हुए सपनों की बहुत याद आई है। आज बीते हुए सावन को बहुत याद किया। आज टूटे हुए सपनों की बहुत याद आई। आज बीते हुए सावन को बहुत याद किया। मुतमईन हो ही गए दामो कफस में सागर।

पर हम असीरों ने नशेमन को बहुत याद किया, आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया, अपने उजड़े हुए गुलशन को बहुत याद किया, आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया।

0: खुदाबंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो ना पूरी हो वो क्यों पलती है सीने में, सब कुछ होते हुए भी जिंदगी खाली खाली क्यों लगती है। ये हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है और आपके कुछ पैगामात मुझ तक पहुंचे हैं। आपके पैगामात की तादाद जो है वो मुझे कम लगती है हमेशा, चाहे जितने क्यों ना हो, मगर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इस वक्त अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रही हैं, फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भिजवाइए। सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स की जानब बढ़ूँगा, फिर इसके बाद लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करूँगा। टाइम बताते चलूँ कि 3 बज रहे हैं सुबह के, और महजबी ने और हमीद गुल साहब ने, सज्जाद अली लाडला साहब ने, जिशान नोमान नोमान जुम्मन, इन्होंने हमारे प्रोग्राम को लाइक किया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो जो आपके कमेंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं कि आपने जो हमें कमेंट्स भेजे हैं उन्हें प्रोग्राम में हम जमा करें और जगह भी दें और जमा भी करें ताकि आपसे बात हो सके। महाजबीन ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वसीम, वालेकुम अस्सलाम। महाजबीन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। और सज्जाद अली लाडला कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू, वेलकम टू द शो, सत बिस्मिल्ला जी आयानो, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और आपको पहली बार सुन रहा हूँ, सुन के अच्छा लग रहा है, सलामत रहें आप, आमीन। सज्जाद अली लाडला, आप मुझे अच्छा इस वक्त पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वैसे तो आप मेरे बड़े पुराने लिसनर रहे हैं। सज्जाद अली लाडला, आपको मैं वेलकम करता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त भी मुझे सुन रहे हैं। जिशान नोमान जुम्मन, इन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हमारे वतन को क़यामत तक सलामत रखे, आमीन आमीन जनाब, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जिशान नोमान जुम्मन। आपने ये नहीं बताया कि आपने कहाँ से हमें मैसेज किया है। सज्जाद अली लाडला ने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। हमीद गुल हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और इन्होंने एक शेर भी भेजा है कि रात हिस्सों में बढ़ चुकी है हमीद, रात हिस्सों में बढ़ चुकी है हमीद, रत जगा नींद ख्वाब तन्हाई। ब्यूटीफुल, क्या बात है जनाब, रत जगा नींद ख्वाब तन्हाई। ओके जनाब हमीद गुल साहब, आप जब भी आते हैं ना कमाल करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सज्जाद अली लाडला ने कहा कि जी बहुत दिन बाद आपको सुन पा रहा हूँ, अच्छा लगा आपको सुन के। सज्जाद अली लाडला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे प्रोग्राम में इस वक्त भी शामिल हुए हैं, पंजाबी के प्रोग्राम में भी आप शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम हमीद गुल साहब कह रहे हैं, सलामत रहें हमेशा, बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब आपका। और सारे सुनने वाले समातों मेरे वालों अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान पंजाब एंड पाकिस्तान आर्मी नू सलाम। सज्जाद अली लाडला का पैगाम है जनाब पंजाबी दे विच, असीं शामिल कर लिया। और माजबी कहते हैं कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। माजबी हमें बहुत अच्छी पोइट्री भेजती हैं, माजबी आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपकी पोइट्री शामिल करता हूँ। रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है, एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है चल पड़ता है, अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है, रोज पत्थर की हमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। बहुत शुक्रिया। सज्जाद अली लाडला कहते हैं कि सर आप ना बोला करें, आप समझो कि आपकी मोहब्बत की वजह से लोग आपके साथ होते हैं, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाडला। कहते हैं कि ना सो सका हूँ ना शब जाग कर गुजारी है, अजब दिन है सुकून है ना बेकरारी है, करार की है ये सूरत के आओ सो जाएं, ये रात जागने वालों पे सख्त भारी है, कहो तो और भी कुछ देर रोक ले इसको, शब फराक से अपनी पुरानी आ रही है। सज्जाद अली लाडला बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने हमें लिखे भेजा है। गुरबतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे, अपना ये हाल के जी हार चुके लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाडला, आपके ढेर सारे मैसेज मुझ तक पहुँचे हैं। और ब्रदर जी दिल कर रहा है इस वक्त आपसे आज एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मुनासिब समझेंगे तो इन्होंने गाना गाने की फरमाइश भी की है। चले जनाब, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पसंद प्रोग्राम में शामिल हो सके, अगर हो गई तो गुड हो जाएगा, अगर नहीं तो आपने नाराज नहीं होना। ओके, तो जनाब सज्जाद अली लाडला हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं बहुत खूबसूरत पोइट्री लेके और खूबसूरत मैसेज दिन के अंत तक पहुँचे हैं। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और जनाब इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम में SMS भी कर सकते हैं, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम पैगाम लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 4471 पे। जैसे आपके पैगाम मुझ तक पहुँचेंगे और मैं उनको प्रोग्राम में शामिल करूँगा तो अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बना लूँगा आपके कमेंट्स, आपके SMS की वजह से। ये अरसलान अरशद राजपूत फ्रॉम इस वक्त शेखुपुरा से सुन रहा हूँ और आपको योर सब सुनने वालों को सलाम एंड एडवांस 14th August इंडिपेंडेंस डे मुबारक। बहुत शुक्रिया अरसलान अरशद राजपूत साहब, आप शेखुपुरा में हमें इस वक्त सुन रहे हैं और आपका ताल्लुक आपने जो लिखा है मुझे उसका पूरा समझ नहीं आ रही कि आपने क्या लिखा है। एनीवेज आप शेखुपुरा से हमें सुन रहे हैं और आपने 14 अगस्त की यानी कि आज़ादी की मुबारकबाद दी है, तो आपको भी बहुत बहुत आज़ादी की जश्न आज़ादी की मुबारकबाद कबूल हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें SMS किया और प्रोग्राम में शामिल हुए। 04-2111-0101 हमारा टेलीफोन नंबर है, 04-2111-0001। सब कुछ होते हुए भी जिंदगी खाली खाली क्यों लगती है? अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम।
0: जी कौन
1: सर, कैसे?
0: हेलो
1: जी सर, लाहौर से इरम बात कर रहे हैं सर, कैसे हैं आप?
0: जी इरम शुक्र है, लगा ठीक है, आप खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है मालिक।
0: आप अपने रेडियो सेट की आवाज बंद करें।
1: जी सर अब ठीक है सर।
0: जी जी अब ठीक है जी, क्या कहेंगे?
1: जी सर पोएट्री जी शायरी लेकर आया, जैसा सुनने वालों को सलामती की दुआ और इस्लाम और आज़ादी की मुबारक हो, अनिल आपी को भी सबको, और सर शायरी लेकर आए। उनके इश्क के समंदर में बहते रहेंगे, उनके इश्क के समंदर में बहते रहेंगे, वो लाख गम हमें हम सहते रहेंगे। लोग कहते हैं कि वो नहीं मिलेंगे कभी तुझे, पर हमें तो मोहब्बत है उनसे, हम कहते थे और कहते रहेंगे। सर सलामत रहे। और एक बुल्ले शाह का है सलाम है।
0: जी जी।
1: अलिफ अग लगी विच सीने से,
0: सीना तप के वांग तंदूर होया,
1: कुछ लोका दे तानिया मार सुतिया, कुछ सज्जन खा तू दूर होया। एक शीशा लिया सी यार वेखन लई, ओ भी डिग जमीन ते चूर होया,
0: चूर होया।
1: बुल्ले शाह लोकी हस के यार मना लेंदे, साडा रोना भी ना मंजूर।
0: बहुत अच्छे इरम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी पोएट्री सुनाई, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज़। ओके जी। शीशा भी चूर होया। 04-2111-0101 हमारे टेलीफोन नंबर, देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम हमीद गुल साहब, वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
2: आप ठीक हैं? आपको खुशामदीद।
0: थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे मुंह के लफ्ज जो है ना वो मुझसे चुरा लिए, छीन लिए। मैं आपको कहने वाला था,
2: बड़ा खूबसूरत स्टार्ट लिया आपने,
0: बहुत शुक्रिया।
2: वो जब पाकिस्तान की बात होती है ना
0: जी,
2: तो वाकई अच्छा लगता है।
0: सही बात, सही बात। अभी मैं जब आ रहा था ना, तो चूंकि रात का तकरीबन एक डेढ़ बजे का टाइम था, तकरीबन पौने दो डेढ़ का, डेढ़ बजे का, तो मैं लाहौर से चूंकि बात कर रहा हूँ तो लाहौर की बात ही करूँगा, तो मैं चेयरिंग क्रॉस पे पहुँचा जहाँ पे पंजाब असेंबली है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं दो तीन चौक के अंदर ना, तो यकीन मानिए वो ग्रीन लाइट्स थी और वो सुकून था सड़क के ऊपर, मतलब बहुत कम ट्रैफिक थी और असेंबली हॉल सजा हुआ था, समिट मीनार सजा हुआ था, वाबना हाउस सजा हुआ था और लाइटिंग इतनी डिसेंट, इतनी खूबसूरत ग्रीन और वाइट लाइटिंग थी पाकिस्तान के झंडे की थीम की। यकीन करिए कि इतना दिल खुश हो रहा था उसको देख के, मैं अकेला था, तन्हा था, मगर मुझे लग रहा था कि सारा पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं और सब खुश हैं।
2: जाग उठा है सारा वतन।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक,
2: ऐसे ही है
0: जी।
2: एक कता है बशीर बदर का
0: जी।
2: आज आपने अब्दुल हमीद आजम की बात भी की, मैं अब्दुल हमीद आजम की गजल सुनाता हूँ आपको
0: जी, सुनाइए।
2: लेकिन एक बशीर बदर का भी 28 मई 2026 को ना बशीर बदर की डेथ हुई
0: जी।
2: आखिरी उम्र में उनको निशान की बीमारी बड़ी हो गई थी, बिल्कुल कुछ याद ही नहीं था उनको, लेकिन क्या खूबसूरत लहजे थे शायर थे बशीर बदर साहब। बशीर बदर साहब ने कहा था कहीं कि दूसरों को हमारी सजाएं ना दे, दूसरों को हमारी सजाएं ना दे, चांदनी रात को बददुआएं ना दे, दूसरों को हमारी सजाएं ना दे, चांदनी रात को बददुआएं ना दें। और शेर देखिएगा वसीम साहब के, सब गुनाहों का इकरार करने लगे, सब गुनाहों का इकरार करने लगे, इस कदर खूबसूरत सजाएं ना दे।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी,
2: खूबसूरत सजाएं ना दे। हाँ जी, बशीर बदर साहब की गजल के दो चार शेर आपके साथ। कहते हैं कि ये मतलब आपकी नजर कर रहा हूँ कि हंस के बोला करो बुलाया करो। वैसे आप हंस की बोलते और बुलाते भी सबको बड़े प्यार से। हंस के बोला करो
0: बुलाया
2: बुलाया आपका घर है, आया जाया करो,
0: आया जाया करो।
2: और मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, उसी जमाने में ये इस पे एक मशहूरी भी आई थी, मुस्कुराइए ना दांतों पे,
0: जी जी
2: याद होगी पीटीवी पे। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, रूप बढ़ता है मुस्कुराया करो, और हद से बढ़कर हसीन लगते हैं।
0: वाह
2: क्या खूबसूरत ख्याल है कि हद से बढ़कर हसीन लगते हो, जूठी कसमें जरूर खाया करो।
0: बहुत बढ़िया,
2: जूठी कसमें जरूर खाया करो, और हुक्म करना भी एक सखावत है, हुक्म करना भी एक सहावत है, हमको खिदमत कोई बताया करो, और बात करना भी बात चाहत है, बात करना भी बात चाहत है, बात करना ना भूल जाया करो। और देखिए ख्याल को कि इस नेकी का कोई अजर नहीं, सॉरी ऐसी नेकी का कोई अजर नहीं, ऐसी नेकी का कोई अजर नहीं, हम गरीबों का दिल लुभाया करो। हम गरीबों का दिल लुभाया करो, और तुमको पीने की क्या जरूरत है, तुमको पीने की क्या जरूरत है, तुम हमेशा हमें पिलाया करो। और मकता देखिए अब्दुल हमीद आजम कहते हैं कि हम हसद से अदम नहीं कहते, हम हसद से अदम नहीं कहते, उस गली में बहुत न जाया करो।
0: बहुत अच्छी,
2: उस गली में बहुत मजा। दो शेर आपके साथ अपने
0: जी, फेसबुक
2: पे एक आध शेर लगा देता हूँ आपके साथ, कथा मैं तो दो शेर और सुना देता हूँ। एक कथा है मेरा के देखें इस ख्याल को कि अपनी सांसें बहाल करते हुए, अपनी सांसें बहाल करते हुए, थक गया हूँ सवाल करते हुए, अपनी सांसें बहाल करते हुए, थक गया हूँ सवाल करते हुए, और उम्र गुजरी है दश्तो सहरा में।
0: ब्यूटीफुल,
2: उम्र गुजरी है दश्तो सहरा में, रक्स करते धमाल करते हुए।
0: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया,
2: रक्स करते धमाल करते,
0: बहुत
2: अजीब सा एक रक्स है और अजीब सा धमाल है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: मैं किसी दिन आपके साथ, मैं ये کوشش کروں گا کہ کسی دن میں کسی ایک مضمون کو لے کر شاعری کے مختلف پہلوؤں سے بات کروں آپ سے, کیونکہ یہ شاعری کا پروگرام ہے.
0: جی جی,
2: لوگوں تک ایک بات ایسی پہنچے گی کہ اصل شاعری میں مضمون کیا تھا اور کس کس طرح سے لوگوں نے نا مضمون کو باندھا, کس طرح.
0: صحیح بات, صحیح بات, ضرور کس طرح.
2: یہ اس پہ کسی وقت ضرور بات کریں گے.
0: بالکل بالکل, ٹیکنیکلی ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی لوگوں کے.
2: نہیں نہیں, وہ ٹیکنیکلی تو اتنی آسان ہے میرے لیے.
0: نہیں نہیں, میں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مطلب اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ باریکیاں جو ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گی.
2: نہیں وہ باریکیاں تو خیر وہ تو عروج کے اپنا ایک وہ ہے, بیر الگ ہے ان کی, وہ الگ چیز ہے, لیکن ان کو اتنا سمجھ آ جائے گا کم سے کم کہ جو شعر جو ہے اس کے مضمون کو کس نے کس کس طریقے سے کہا,
0: کس انداز سے, کس کس طریقے سے کہا.
2: جیسے سیف الدین صاحب کا شعر ہے نا,
0: جی جی,
2: کہ ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں, تو اس شعر کی وضاحت میں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کسی پروگرام.
0: ضرور کیجیے گا, ضرور کیجیے گا.
2: بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں.
0: تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. اوکے جی, حمید گل صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, خوبصورت انداز اور خوبصورت پوئٹری شامل کرتے ہیں. خیال یار تیرے سلسلے نشوں کی رتے ہیں, مجید امجد کا شعر ہے. خیال یار تیرے سلسلے نشوں کی رتے ہیں, جمال یار تیری جھلکیاں گلاب کے پھول. جب خیال باندھا جاتا ہے, جب شعر کہا جاتا ہے, جب مضمون لیا جاتا ہے, تو کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آتی ہیں. دوبارہ سے سناتا ہوں. خیال یار تیرے سلسلے نشوں کی رتیں, جمال یار تیری جھلکیاں گلاب کے پھول. ہلو,
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: جی آپ کا لاسٹ کالر تھا, میں پچھلے آپ کے پروگرام میں پچھلی جمعرات کو,
0: جی
3: بہت کو سوری, علی حسن ملتان سے.
0: جی علی حسن, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, مجھے یاد آ گیا ملتان سے.
3: اللہ پاک کا کرم ہے جناب, آپ اپنا سنائیں. بس ابھی دکان سے چھٹی ہوئی تھی تو جا رہے تھے, مجھے یاد آیا, میں نے کہا نمبر تو آج تم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے کہا نمبر سیف ہوا ہوا ہے, میں نے کہا کال ملائیں. تو آپ کی ابھی پہلے حمید گل صاحب کی جو ابھی کال آئی ہوئی تھی وہ سنتے رہ گئے ہم, تو ابھی کوشش کی ہے, لگ گئی ہے میری کال بھی.
0: بالکل ٹھیک ہو گیا, بڑی خوشی مجھے.
3: تھینک یو. یہ آج کا یہ کس موضوع پہ اپنا
0: آج کے, کہ کبھی ویسے تو ساری شاعری آج کے پروگرام میں شامل ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا ٹاپک بھی ہوتا ہے ہمارے پاس, اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اگر کوئی شعر سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں, اگر کوئی ویسے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. ٹاپک یہ تھا, بلکہ ٹاپک یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی زندگی میں کمی سی محسوس ہوتی ہے, ایسا کیوں کیوں ہوتا ہے؟
3: بالکل, بات تو آپ کی صحیح ہے. ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. نہ دل ہوتا نہ دل روتا, نہ دل دل سے جدا ہوتا. نہ دل ہوتا نہ دل روتا, نہ دل دل سے جدا ہوتا. نہ آپ اتنے ہنسی ہوتے, نہ ہمارا دل آپ پر فدا ہوتا.
0: واہ, بہت اچھے, بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. حسین ہونا ہی اصل مصیبت بڑی ہے.
3: بالکل بالکل,
0: بہت شکریہ.
3: کیونکہ میرا اسکول ٹائم میں, کیونکہ ابھی تو مجھے تقریباً نائنتھ کے میں نے پیپر دینے تھے 3-4 سال پہلے, تو اس ٹائم میں اسکول چھوڑ کے میں ذرا اپنی دکان بنا لی تھی ملتان میں برگر کی, تو ادھر آ گیا تھا. میرا ایک دوست تھا, یہ جیسے کہتے ہیں نا ایک طرفہ محبت ہوتی ہے, کچھ ایسا ہی تھا اس کے ساتھ بھی. مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت تھی, لیکن نا اس کو میرے ساتھ اتنی محبت نہیں تھی. میں کہیں بیٹھا ہوتا نا کہ میرے دل کے اندر ایسا ہوتا کہ نا یہ گزر کے گئے میرے پیچھے سے, اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو وہی گزر کے جا رہا ہوتا تھا, اتنی محبت تھی ہماری.
0: ادھر سے خیال آیا, ادھر سے دماغ میں خیال آیا, ادھر سے چھم سے وہ سامنے آ گئے.
3: بالکل, یہ کشش ہوتی ہے نا دوستوں کی.
0: بالکل ہے, ایسے ہی ہے, محبت اسی کا نام ہے. بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری,
3: بالکل,
0: بہت شکریہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. اوکے جناب, کہتے ہیں کہ جو بھی آپ لفظ بولیں, جو بھی بات کہیں, ذرا سوچ سمجھ کے. لفظ جو ہوتے ہیں یہ ان کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے اور یہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں. امجد اسلام امجد کہتے ہیں, لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے, لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے. امجد گل صاحب غور سے سنیے گا, آپ کے لیے بھی یہ شعر ہے, ویسے وہ سب کے لیے. لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے, جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ, اس سے بہتر ہے چھپ رہا کیجیے. اور اس کے اندر باریک باریک باریکیاں ہیں, تو بہت اچھا لگا مجھے یہ شعر پروگرام میں میں نے شامل کیا ہے. یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا, اور آپ سے بھی میں امید کرتا کہ کچھ آپ اور عنایت کریں گے فیس بک کے تھرو, تو مجھ تک آپ کا پیغام ضرور پہنچے گا. جبی پہ بل بھی نہ آیا گواہ کے دونوں جہاں, جو جن سے ہم محبت کرتے ہیں نا, جن سے ہم پیار کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے بہت بہت اہمیت رکھتے ہیں. کئی دفعہ وہ سب سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں, جو لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں ان سب سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ بہت ہی بہادر ہوتے ہیں, وہ کسی بھی بات پہ اپنی شکست نہیں مانتے, تنہائی کو بھی ہرا دیتے ہیں, دشمنوں کو بھی ہرا دیتے ہیں, طوفانوں کو بھی ہرا دیتے ہیں. کہتے ہیں احمد ندیم قاسمی کہ جبی پہ بل بھی نہ آیا گواں کے دونوں جہاں, جو تو چھنا تو میں اپنی شکست مان گیا. کیا بات ہے جناب. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کون
4: جی؟
0: محمد عثمان. جی محمد عثمان رہوشا بولیں گے.
4: جی جی اب آواز آ رہی ہے.
0: جی جی پہلے بھی آ رہی تھی, اب ذرا کلیئر ہے. جی کیا, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
4: جی لاہور سے.
0: لاہور سے. جی کیا کہیں گے؟
4: جی میں نے آپ سے ایک پوڈ کاسٹ سنی, آئی ایم بلائنڈ.
0: اچھا
4: دھوکا ہوا ہے ہمارے ساتھ.
0: جی
4: پاکستانی.
0: کیا کہہ رہے؟
4: پاکستانی.
0: آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے, ذرا اونچا بولے.
4: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے شیئر سننا ہے. محبت کے بارے میں دھوکا ہوا ہے, آئی ایم بلائنڈ.
0: اچھا تو میں آپ کو کوئی اس سچویشن میں کوئی شعر سناؤں آپ کو؟
4: جی.
0: اچھا اچھا جو تو ابھی میں نے جو سنایا میرے خیال کے وہ کافی ہے. جپی پہ بل بھی نہ آیا گوا کے دونوں جہاں, جو تو چھنا تو میں اپنی شکست مان گیا.
4: تھینک یو
0: بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. تھینک یو اللہ حافظ. اوکے جی. جو گفتنی نہیں وہ بات بھی سنا دوں گا, جو گفتنی نہیں وہ بات بھی سنا دوں گا, تو ایک بار تو مل سب گلے مٹا دوں گا, تو ایک بار تو مل سب گلے مٹا دوں گا. مجال ہے کوئی مجھ سے تجھے جدا کر دے, مجال ہے کوئی مجھ سے تجھے جدا کر دے, جہاں بھی جائے گا تو میں تجھے صدا دوں گا. تیری گلی میں بہت دیر سے کھڑا ہوں, مگر کسی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا. بہت مشکل ہو جاتا ہے نا, آپ بے مقصد ہی کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور دیر سے کھڑے ہیں, لوگوں کے لیے آپ بالکل بے مقصد کھڑے ہیں, مگر آپ کو پتا آپ کیوں کھڑے ہیں. دوبارہ سے پڑھتا ہوں. تیری گلی میں بہت دیر سے کھڑا ہوں, مگر کسی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا. میری خاموش نگاہوں کو چشم کم سے نہ دیکھ, میں رو پڑا تو دلوں کے طبق ہلا دوں گا. یوں ہی اداس رہا میں تو دیکھنا ایک دن, تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا. یوں ہی اداس رہا میں تو دیکھنا ایک دن, تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا. بے پاس صحبت درینہ کوئی بات ہی کر, نظر ملا تو سہی میں تجھے دعا دوں گا. بلاؤں گا نہ ملوں گا, نہ خط لکھوں گا تجھے, بلاؤں گا نہ ملوں گا, نہ خط لکھوں گا تجھے, تیری خوشی کے لیے خود کو یہ سزا دوں گا. بلاؤں گا نہ ملوں گا, نہ خط لکھوں گا تجھے, تیری خوشی کے لیے خود کو یہ سزا دوں گا. وہ درد ہی نہ رہا ورنہ اے متائے حیات, مجھے گما بھی نہ تھا میں تجھے بھلا دوں گا. ابھی تو رات ہے کچھ دیر سو ہی لے ناصر, ابھی تو رات ہے کچھ دیر سو ہی لے ناصر, کوئی بلائے گا تو میں تجھے جگا دوں گا. मुझाल है कोई मुझसे तुझे जुदा कर दे, जहाँ भी जाएगा तो मैं तुझे सदा दूंगा। तेरी गली में बहुत देर से खड़ा हूँ, मगर किसी ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा, तो जवाब क्या दूंगा। हेलो,
5: अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम जी,
5: कैसे हैं सर?
0: शुक्र अल्लाह, ठीक हूँ। कौन बोल रहे हैं
5: सर? इस वक्त आपके चाहने वाले ही होते हैं जो बात कर रहे होते हैं। अतवाज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से।
0: कौन?
5: अतवाज फ्रॉम रावलपिंडी।
0: जी जी, कैसे हैं अकनवाज भाई? ठीक ठाक हैं
5: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप बताएं, आप कैसी तबीयत आपकी?
0: जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा लग रहा है आपको शो? अच्छा लग रहा है,
5: जबरदस्त आला। आज काफी टाइम के बाद आपको सुन रहा हूँ।
0: अच्छा,
5: तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक दो वीक हो चुके हैं। असल में मैं ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपकी बात से बात निकल आई है। मेरे चाचा जी का इंतकाल हो चुका है।
0: ओहो।
5: तो दो हफ्ते हो गए मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था, अभी फिर से स्टार्ट किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम सुन के।
0: चलिए जी, उनके लिए बहुत सारी दुआएं और अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। और जिंदगी है, जिंदगी के साथ साथ तो फिर चलना पड़ता है ना, फिर क्या करे बंदा, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में होना चाहिए ताकि थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भी हो जाए बंदे का। एनीवेज, हम आपको वेलकम कहते हैं, दोबारा से आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं।
5: बहुत शुक्रिया सर। छोटा सा कथा आपकी नजर पेश करना चाहूंगा।
0: जी जी जी जी, इरशाद।
5: अपने चाचा हजूर की याद में ही, मतलब शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए।
0: वाह,
5: दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को जश्न आजादी मुबारक, और आपको स्पेशली
0: बहुत शुक्रिया जी।
5: हाँ जी, ये जश्न आजादी का दिन मुबारक हो।
0: आपको भी
5: अल्लाह ताला ये ता कयामत हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे।
0: आमीन आमीन,
5: इसी तरह सब मुस्कुराता रखे।
0: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नवाज जीते रहिए, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, महबूब अली साहब की कॉल बहुत देर पहले मेरे प्रोग्राम में पहुंची थी। हक नवाज साहब की कॉल भी मुझसे मेरे पास तकरीबन आधा पौना घंटा पहले पहुंची थी, और फिर कॉल्स। तो महबूब अली, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अनिला जी का मैसेज हम तक पहुँचा था, प्रोग्राम खूबसूरत, पोइटी इनको अच्छी लगी, तमाम समातों को सलाम पहुँचाया उन्होंने। तो महबूब अली कह रहे हैं कि जी पंजाबी के प्रोग्राम में अनिला जी ने मुझे सलाम भिजवाया था, उनका बहुत शुक्रिया। तो जनाब अनिला जी, सब जो रेगुलर लिस्टनर हैं, सब लिस्टर्स को वो सलाम भेजती रहती है। वो हमारी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी कॉलर है, बहुत अच्छी लिस्टनर है। प्रोग्राम में आती है तो रौनक लग जाती है, उनका आना सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो महबूब अली आपका भी बहुत शुक्रिया, अकनवाज आपका भी बहुत शुक्रिया, अब्दुल मीद आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शहजाद आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हर फूल फसल गुल में पुराना लगा मुझे, मैं क्या किसी पे संग उठाने की सोचता। हर फूल फसले गुल में पुराना लगा मुझे, मैं क्या किसी पे संग उठाने की सोचता। अपना ही जिस्म आईना खाना लगा मुझे, ए दोस्त झूठ आम था दुनिया में, इस कदर तूने भी सच कहा तो फसाना लगा मुझे। अब उसको खो रहा हूँ बड़े इश्तियाक से, अब उसको खो रहा हूँ बड़े इश्तियाक से, वो जिसको ढूंढने में जमाना लगा मुझे। मोहसिन हजूम यास में मरने का शौक भी, मोहसिन हजूम यास में मरने का शौक भी, जीने का एक हसीन बहाना लगा मुझे। हर फूल फसले गुल में पुराना लगा मुझे, मैं क्या किसी पे संग उठाने की सोचता। अपना ही जिस्म आईना खाना लगा मुझे। 042-111-000-101 इज द नंबर टू डायल, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद क्यों खाली खालीपन मौजूद होता है, क्यों महसूस होता है कुछ कमी है। हेलो,
6: वसीम साहब आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और जश्न आजादी मुबारक। मैं मोहम्मद सलमान बाट सलमानबाद लाहौर से बोल रहा हूँ।
0: जी मोहम्मद सलमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
6: अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं?
0: जी शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक।
6: मैं कहता हूँ यकीन करें, आपको सुनता हूँ, मुझे लगता है आप ना एक्टर हैं। दोपहर के प्रोग्राम में बिल्कुल और होता है, रात को और होता है, जैसे कोई अदाकार नहीं होता।
0: अच्छा।
6: बहुत मजा आता है, क्या क्या बात है। बाकी ये है कि मैं कहता हूँ कि जो माइग्रेट के वक्त जो लोग शहीद हुए, मेरे दादाजी भी शहीद हुए थे।
0: अच्छा।
6: उनको भी दोनों हाथों से सैल्यूट और बानी कायद आजम मोहम्मद अली जना साहब को बहुत बहुत सैल्यूट और ट्रिब्यूट कि उन्होंने हमारे पे एहसान किया है। मैं जब ये सुनता हूँ ना ये कायद एहसान कि तूने पाकिस्तान बनाया और हमें हमारे लिए एहसान है, मैं रो पड़ता हूँ। बहुत बहुत मजा आता है।
0: सही बात है, बड़े सही बात है।
6: और मेरे यकीन कर मेरे घर में ना जहाँ 14 अगस्त लिखा हो ना मुझे दिल करता है देखता रहूँ 14 अगस्त।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
6: मेरी मिसेज का आईडी कार्ड पे 14 अगस्त लिखा हुआ है, उनकी बर्थडे वही है।
0: अच्छा।
6: उनका आईडी कार्ड 3 दिन होगा मैंने जेब में डाला हुआ है।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। आप तो बड़े पक्के माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान से जो सच्चे पाकिस्तानी है, हम सारे माशाल्लाह से सारे पाकिस्तानी सच्चे पाकिस्तानी है, वो अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं।
6: मेरे पास ने 7-8 आईडी कार्ड है घर में, लेकिन उनका कार्ड मैंने पकड़ा हुआ उस दिन का, क्योंकि सिर्फ 14 अगस्त लिखा हुआ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जनाब उनको भी एडवांस सालगिरह की मुबारकबाद दे दीजिए, कल 14 अगस्त है।
6: दो के एक आएंगे इंशाल्लाह परसों तो।
0: बहुत शुक्रिया आपका सलमान, आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, कह रहे हैं पंजाबी के प्रोग्राम में आप बिल्कुल कुछ और होते हैं, उर्दू में कुछ और होते हैं। मेरी तन्हाई में मुझसे गुफ्तगू करता है कौन, मेरी तन्हाई में मुझसे गुफ्तगू करता है कौन, तू नहीं होता तो मेरी जुस्तजू करता है कौन। किसका खंजर है जो कर देता है सीने को दोनीम, फिर पशेमानी में जख्म दिल रफू करता है कौन। इस खराबे में बगोला सी फिरे है किसकी याद, इस खराबे में बगोला सी फिरे है किसकी याद, इस दियारे रफ्तगा में हाउ हू करता है कौन। खौफ किसका है कि अपने आप से छिपता फिरूं, खौफ किसका है कि अपने आप से छिपता फिरूं, ना घां फिर मुझको मेरे रूबरू करता है कौन। कौन सा मौसम चुरा लेता है गुंचों की चटक, नगमा पैराओं को सुरमा दरगुलू करता है कौन। कौन पी जाता है आखिर मेरे हिस्से की शराब, मैं नहीं होता तो फिर ये खाली सबूत करता है कौन। मेरी तन्हाई में मुझसे गुफ्तगू करता है कौन, तू नहीं होता तो मेरी जुस्तजू करता है कौन। अहमद फराज का कलाम आपने सुना। प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं 0421100001 पाकिस्तान से बाहर से कॉल करें तो आप 0092 मिलाइए, उसके बाद 42 मिलाइए और फिर 1111001 मिलाइए। अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप?
0: जी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। कौन है?
7: मैं हाफिज मोहम्मद तौसीफ बात कर रहा हूँ कनाडा से।
0: हाफिज मोहम्मद
7: तौसीफ
0: कनाडा से। बहुत शुक्रिया जनाब, इतनी दूर से आप दूसरी दुनिया से कॉल कर रहे हैं हमें, ग्लोब के दूसरी तरफ से। वेलकम जनाब, वेलकम।
7: सबसे पहले तो एडवांस आजादी मुबारक सबको।
0: खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो।
7: भी यहाँ पे हमारे, मैं क्योंकि टोरंटो में रहता हूँ तो इधर आसपास है वो रिजवे प्लाजा, हम वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, लास्ट ईयर भी हुए थे सारे दोस्त वगैरह, तो काफी हल्ला गुल्ला होता है, बल्कि
0: सेलिब्रेट करते हैं आजादी के जश्न को मनाते हैं।
7: बल्कि लास्ट ईयर तो लड़ाई भी हो गई थी हमारी।
0: लड़ाइयाँ नहीं करनी, जश्न मना रहे, खुशियाँ मनानी है ना।
7: वो असल में कुछ लोग वो उधर से भी थे ना, 15 अगस्त मनाने वाले भी थे, वो भी आ गए। अच्छा। हम भी थे तो हो गया थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वरना एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए, अच्छी बात है। और ये बताइए कि आज आपकी तरफ वो एक्लिप्स है, सूरज ग्रहण लगा हुआ है आपकी तरफ?
7: लगा था, अब तो खत्म हो गया। वो लगा था तकरीबन 12:30 से 1:30 या 2:30 बजे के दरमियान था, तकरीबन 1:30 बजे कुछ फील हुआ था।
0: अच्छा,
7: क्योंकि आज वैसे भी थंडरस्टॉर्म था और काफी हैवी रेनिंग भी थी, तो उस वजह से इतना फील नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो रोशनी से पता चल रहा था कि जो है ना कुछ लगा हुआ।
0: हाँ, एक दफा यहाँ भी पाकिस्तान में मैंने देखा, तो बहुत पुरानी बात है, तो वो जो रिंग बनता है ना डायमंड रिंग, वो मैंने देखा था बनते हुए, बिल्कुल अंधेरा हो गया था।
7: इधर इतना ज्यादा नहीं था, इधर आई गेस 40-25% था।
0: अच्छा अच्छा,
7: उसमें मैंने चेक किया था 25% था।
0: अच्छा अच्छा, मगर चले एनीवेज आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। और कोई शायरी आपको अच्छी लग रही है?
7: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं भी वो थोड़ा सा अगर कहते हैं तो
0: जरूर पढ़ देता हूँ। जरूर इरशाद इरशाद प्लीज।
7: वो कहते हैं कुछ भी ना सही जब्त की तजहीक तो है ना, कुछ भी ना सही जब्त की तजहीक तो है ना, पूछे जो कोई हमसे कि सब ठीक तो है ना।
0: वाह।
7: ऐज़ीस्त वजाहत नहीं, ऐज़ीस्त वजाहत नहीं दे, दिलासा दे के मैंने, नुक्ता जो उठाया है वो बारीक तो है ना।
0: हाँ हाँ, नुक्ता जो उठाया है वो बारीक तो है ना।
7: कैसे मैं करूं सब्र के तेरा ये दिलासा, कैसे मैं करूं सब्र के तेरा ये दिलासा, मेरी खुददार तबीयत के लिए भीख तो है ना।
0: हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
7: पूछे जो कोई हमसे कि सब ठीक तो है ना।
0: बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आप आइंदा भी हमें जरूर कॉल कीजिएगा, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। पाकिस्तान में आप कहाँ से ताल्लुक आपका?
7: मैं लाहौर इस्लामाबाद से।
0: वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जनाब, वेलकम अगेन आपको, थैंक यू।
7: मैं कोशिश करता रहता हूँ कॉल करने की, कभी मिल जाती है तो बात हो जाती है, क्योंकि मेरा ये टाइम होता है पाकिस्तानी कहने के 10 से लेके रात 3-4 बजे तक, मैं ऑलमोस्ट 5 बजे तक भी फ्री होता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं 2 बजे तक सुनता हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद वो जो है ना नॉर्मली ईद लगना शुरू हो जाते हैं, तो सॉन्ग्स वगैरह मैं ज्यादा नहीं सुनता, इस वजह से मैं फिर बंद कर देता हूँ। आज मैं सुन रहा था तो प्रोग्राम चल रहा, मैं चले
0: चल चल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज
7: अल्लाह हाफिज।
0: टोरंटो कनाडा से हमारे प्रोग्राम में अभी एक कॉलर शामिल हुए थे, पाकिस्तान के जश्न की, आज़ादी के जश्न की मुबारकबाद दे रहे थे, कह रहे कि हम यहाँ पे भी जश्न मनाते हैं और सब लोग इकट्ठे होते हैं। बड़ी बात है जनाब, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी होंगे, ऊपर से आप लाहौरिए हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ पर आपका ताल्लुक है, तो डेफिनेटली आपको भी बहुत मतलब जहाँ भी पाकिस्तानी हैं, लाहौरिए हैं, जब पेशावर के लोग हैं, कराची किसी भी शहर के लोग हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो वो पाकिस्तान के जश्न को ज़रूर मनाते हैं। बल्कि मुल्क से जो बाहर लोग होते हैं उनको ज़्यादा शिद्दत से अपने वतन की याद भी आती है, अपने हमवतनों की याद भी आती है, और आज़ादी को भी सेलिब्रेट करते हैं। एक दफ़ा फिर तमाम सुनने वालों को आज़ादी के जश्न की मुबारकबाद कबूल हो। ये जो चेहरे से तुम्हें लगते हैं बीमार से हम, खूब रोए हैं लिपट कर दरो दीवार से हम, ये जो चेहरे से तुम्हें लगते हैं बीमार से हम, खूब रोए हैं लिपट कर दरो दीवार से हम, यार की आंख में नफरत ने हमें मार दिया, मरने वाले थे कहां यार की तलवार से हम, इश्क में हुक्म अधूरी भी हमें आती है, टलने वाले तो नहीं हैं तेरी इनकार से हम। रंज हर रंग की झोली में भरे हैं हमने, रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने, जब भी गुजरे हैं किसी दर्द के बाजार से हम। बादशाह शायर और मजनू सभी आते हैं यहाँ, लग के बैठे हैं वसी शाह के दरबार से हम, ये जो चेहरे से तुम्हें लगते हैं बीमार से हम, खूब रोए हैं लिपट कर दरो दीवार से हम। अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है
0: जी जी बिल्कुल ठीक जी। कौन?
8: आसिफ महमूद बात कर रहा हूँ आपसे।
0: आसिफ महमूद
8: सर? सर
0: कहाँ से बोल रहे हैं आसिफ भाई?
8: मुल्तान से बात कर रहा हूँ भाई
0: जी, बोलिए क्या कहेंगे?
8: मैं साहब का टॉपिक अच्छा लगा है लेकिन असल बात दरअसल ये है कि इंसान को अगर सब कुछ दे तो फिर वो इंसान अल्लाह को भूल जाता है और इंसान इसीलिए ना मुकम्मल महसूस करता है क्योंकि अल्लाह ने उसको पैसा दौलत सब कुछ दिया होता है लेकिन फिर भी वो कमी महसूस करता है क्योंकि अब जो अल्लाह बनाने वाला है हमारे जिस्म को, हमारी रूह को, हमें जान देने वाला है, तो उस जात ने अगर हमें पूरा मुकम्मल बना तो दिया है लेकिन कंट्रोल हमारे जिस्म का उसके पास है, अगर वो बना के पूरा कर दे तो हम उस जात को भूल, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन हमारी खुशी का तल्लक, हमारे दिल के सुकून का तल्लक
9: उसकी याद में है, उसकी याद में है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात की आपने। जब अल्लाह को याद करेंगे तो दिल का और रूह का सुकून तभी मैसर होगा जब आप खुदा को, अल्लाह को याद करेंगे। उसके बाद कोई चीज, किसी चीज की कमी नहीं रहती। फिर चाहे कोई बाजार किसी चीज की कमी हो भी, उसमें भी उसकी कोई बेहतरी होती है इंसान की, अल्लाह की तरफ से। तो अगर आपके दिल में अल्लाह की याद है तो फिर हर तरफ सुकून ही सुकून है, किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस हो सकती। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बात की। थैंक यू। जी जी जी जी, जरूर जरूर सुनाइए।
8: तो अभी राइटर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शेर इस तरह है कि हजारों सजदे तूने किए, निशानी पे निशान रह गए। तूने किए नमाजें पढ़ी और तू सजदे देता रहा, तो आपके निशानी है जो आपके माथा है वहां पे काले निशान पड़ के, हजारों सजदे तू निशानी पे निशान रह गए। एक ऐसा सजदा कर के जमीन पे निशान रह जाए, है इंसान सिर्फ जमीन पे सजदे करके अपने आप को ये तसल्ली ना दे कि मैं बहुत नमाजी हूँ, मैं बहुत वली हूँ, बल्कि एक ऐसा सजदा कर के तू मरने के बाद तुझे दुनिया याद करे कि ऐसा दोबारा इसे पैदा नहीं हुआ।
9: बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात है की आपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। खूबसूरत बात है, अगर दिल को, रूह को अगर सुकून में यसर आता है वो सिर्फ अल्लाह की याद में आता है। ओके डियर लिसनर्स, असल में होता ही है कि कुछ लोग हमारे, हम सोचते हैं जिनके बारे में, हम जिनको याद करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, उनको भी पता चल जाता है। हम कहते हैं कि यार अभी मैंने तुम्हें याद ही किया था, तुम्हारा फ़ोन आ गया, अभी मैंने तुम्हें याद ही किया था, तुम्हारी तुमने बाहर से आके कॉल बेल बजा दी, दरवाज़ा खटखटा दिया। और अगर कोई आपके लिए बेकरार है तो फिर आपको, आपका ध्यान उस तरफ ज़रूर जाता है। कहते हैं कि रात को सोते वक्त अगर आपका दिल बिस्तर पे लेटते हो, आपका दिल ज़ोर से धक धक करने लग जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो किसी डॉक्टर साहब ने बीमारी बताई थी कि तुम्हारा दिल धक धक करेगा तो ये मेडिसिन खा रहा, तो आप ये क्या बातें बता रहे हैं। अगर कोई बीमारी नहीं है खुदा रखास्ता दिल की धड़कन की, तो अगर आपका दिल धक धक करने लग जाता है ना, तो इसका मतलब है कि कोई आपको शिद्दत से याद कर रहा है, साइकोलॉजी कहती है। हाँ जी, हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ, हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ, ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है। हर एक सांस खींचती है मुझे उसकी तरफ, हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ, ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है। एक खूबसूरत गीत आपके लिए। इसके बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। वक्त बताता चलूं, 3:43, 4 बजे तक मेरा आपका साथ है। ये छोटा सा मुख्सिर सा गाना है, बहुत ही खूबसूरत, फिल्म सरहद से।

0: सरल संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सरल संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: वन वन एफ एम से यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं गुंचे शौक अपने मेजबान वसीम अहमद के साथ, और देखते हैं कि लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनिला जी, वेलकम जी आया नू। की हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक जे?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं दुआ करूँ, अल्लाह ताला सबको जहाँ जहाँ जो जो सुन रहे हैं अल्लाह सबको सलामत रखे, और बहुत सारी दुआएं मेरे बहन भाई सब जो आते हैं।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको महबूब अली खास तौर पे सलाम दे रहे थे आप।
2: वालेकुम सलाम, जीते रहे महबूब भाई, बहुत शुक्रिया। आया करें, रौनक होती है आपके आने से भी। और तारिक भाई, जितने मेरे तीनों तारिक भाई और जितने हमारे बाकी आते हैं सब, जो बहने आती है, शमीम आपी है, फरी जी है,
1: नहीं लाना ना लो, मैं नहीं सुनना। अच्छा, अल्लाह हाफिज।
2: बहुत क्यूट लगती है, मजे की बातें करती हैं वो भी। और भी जितनी हमारी बहनें आती हैं सब सबके लिए बहुत सी दुआएं, सलाम। मरीना सुन रही होती हैं, सोबिया सुन रही होती हैं, और लुबना जी, नुसरा जी, जितनी जो नहीं आती हैं ऑफियर होती हैं, उन सबके लिए भी मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं, सलाम है। और एडवांस में सबको 14 अगस्त मुबारक,
1: खैर मुबारक।
2: अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, कौम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और खूब खुशियां रखे, और बरकतें हमारे मुल्क में अल्लाह ताला अता फरमाए।
1: आमीन।
2: और टॉपिक आपने क्या रखा हुआ था वसीम भाई, रिपीट करें? मैं भूली।
1: टॉपिक ये था कि सब कुछ होते हुए कभी कभी कुछ कमी सी महसूस होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या कहते हैं ना कि खाली खाली आंखें खोखले से जिस्म, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर। मुझे अगली लाइन
1: चले ये भी बहुत है, ये बहुत है।
2: बेयकीन रफाकत में वस्ल क्या जुदाई क्या।
1: वाह।
2: तो बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला के, देखिए इतनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा होता है, और बहुत कुछ, फिर भी हमें कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस होती है किसी ना किसी बात, किसी शख्स, किसी चीज की काम, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कंप्लीट तो कुछ भी नहीं होता।
1: सही बात है,
2: अधूरा पानी होता है। हम कितने काम अधूरे छोड़ के दुनिया से चले जाते हैं, तो कंप्लीट तो कुछ भी नहीं है, मुकम्मल कोई भी नहीं है, तो अधूरापन कहीं ना कहीं महसूस होता जरूर है। तो बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, और इसमें जाएं तो बड़ा डीप बहुत कुछ है।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कुछ सुनाएंगे आज?
2: जी आज शायरी थोड़ी से चंद अशआर सुनाती हूं।
1: जी जरूर,
2: हंसी मजाक वाले भी शुरू में लगेंगे।
1: जी जी।
2: यार जब बेवफा हो जाए तो हमारी बला से मर जाए।
1: वाह।
2: यार जब बेवफा हो जाए तो हमारी बला से मर जाए, क्या मिला है सुधरने वालों को, हम भी क्या सोच के सुधर जाए।
1: वाह।
2: आजकल मैं बहुत उदास हूँ यार, दुआ करो मेरे ये दिन गुजर जाए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
2: फिर से आ गए हैं उनकी कूचे में, अब लेके उनकी कोई खबर जाए। सभी किरदार मर गए कहानी में साहिब, सभी किरदार मर गए साहिब, सभी किरदार मर गए साहिब, अब कहानी में हम किधर जाएं।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
2: यार जब बेवफा हो जाए तो हमारी बला से मर जाए।
1: बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: और अच्छा, हमारे कॉलर रहते हैं सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब, भट्ट साहब बेचारे परेशान हो रहे थे इस्लामाबाद में कॉल करने के लिए। यार जब बेवफा हो जाए तो हमारी बला से मर जाए।
1: बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: और अच्छा, हमारे कॉलर रहते हैं सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब

0: 920-25-40. अब आप दर्द नंबर मिलाए वहाँ पे।
1: चलिए जी, बहुत शुक्रिया।
0: बहुत सारी टाइम आपके लिए, थैंक यू सो मच।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, नीला जी यहीं, बहुत अच्छी इन्होंने बातें की, बहुत अच्छी पोइट्री सुनाई और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने हमारा नंबर भी बताया इस्लामाबाद के स्टूडियो का, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप सही लिसनर हैं हमारे रेडियो पाकिस्तान की FM 101 की, कि आपको सभी नंबर्स जो हैं वो स्टेशंस के तकरीबन इस्लामाबाद के भी, लाहौर के भी, उसके अलावा भी आपको नंबर याद होंगे, तो आपका बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत का 101 FM के साथ, रेडियो पाकिस्तान के साथ करने का। ओके जनाब, कुछ पैगामात हैं फेसबुक पे। जुगनू जूनियर कहते कि फेसबुक नहीं चल रही थी इसलिए देर हो गई। सर बड़ी मेहरबानी जनाब, आप देर से आए मगर बहुत अच्छा लगा आपका आना। आप आ तो गए ना, ये तो नहीं ना कहा कि मैं नहीं आया। जुगनू जूनियर आप वैसे बड़ी गैरहाजिरी करते हैं, गैरहाजिरियाँ ना किया करें, अच्छा नहीं लगता हमें। आर के मुगल, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत आला शो, बहुत शुक्रिया आर के मुगल। और इन्होंने मिली नगमा की फरमाइश की है, चलें जी बहुत शुक्रिया आपका, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे शामिल करूँ। साइम तबस्सम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हो और आपका अंदाज़ बहुत प्यारा है भाईजान, अल्लाह आपसे राज़ी हो, खुश रहो, आमीन। मैं आपका प्रोग्राम पेरिस फ्रांस में सुन रहा हूँ, आपको और सब सुनने वालों को सलाम दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। साइम तबस्सम, आपका पैगाम पिछले प्रोग्राम में भी आया था तो वो लेट मुझ तक पहुंचा था, मैंने उसका रिप्लाई भी किया था आपको, शायद आपने देखा हो। और दूसरा ये है कि आज तो जनाब पहले हमें कनाडा से कॉल आई थी और अभी हमें फ्रांस से कॉल आई है, तो जो लोग बाहर में बैठ के 101 FM को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन से प्रोग्राम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो साइम तबस्सम आपका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने हमें कनाडा से कॉल की थी उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, और उनका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप भी किसी पाकिस्तानी हैं और डेफिनेटली पाकिस्तानी कॉल करेंगे, और अगर आप करना चाहते हैं हमें कॉल या मैसेज भेजना चाहते हैं ज़रूर भेजिए, और अगर आप जश्न आज़ादी के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। आप चाहे दुनिया में किसी कोने में बैठे हुए हैं, आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो। यार के मुगल ने गए जी, बहुत अच्छा शो, और इन्होंने हमें एक फ़ोटो भेजी है कि कमाल हो गया, ठीक हो गया। जुगनू जुगनू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। महाजुबी कहते हैं कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, ये मेरे ख्याल कि मैंने पहले पढ़ा था। ओके जी, बहुत शुक्रिया। हमीद गुल सब कहते हैं ऐप से जब कोई नहीं खाली, ऐप से जब कोई नहीं खाली आदमी चुप रहे तो बेहतर है। वाह जी वाह, क्या बात है हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। सजाद अली लाडला सर आप ना, ओके जी, इन्होंने कहा जी कि आप बस आ जाए करें, सलामत रहें। जुगनू जूनियर ने मैं फूलों की फ़ोटो भेजी है, बहुत शुक्रिया जनाब। माजमी कहते हैं कि वसीम मैं भी लिखने की कोशिश करती हूँ, आज एक कोशिश आपकी नज़र करती हूँ, ज़रूर। आगे ने लिखा कि आईने में बादल छाए, आईने में बादल छाए, मेरी आंख में आंसू आए, सिसकियों में दुआएं निकली, वो जो मांगे उसको मिल जाए, अंधेरा कब तक रहेगा, दिया बुझे तो जुगनू आए, हर आहट पे दर को खोलूं, काश पलट के तू आ जाए, तन्हाई से डर लगता है शायद मुझको मौत आ जाए। बहुत अच्छी जनाब, बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी, ज़बरदस्त, बहुत बड़ी है, कोशिश जारी रखिए और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देंगी, बहुत अच्छी पोइट्री आपकी तरफ से हमें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सज्जाद अली लाडला कहते हैं कि गर्मी है हसरत नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। पूरी गज़ल भेजी आपने मगर मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है इसलिए पूरी नहीं पढ़ सकता, और बहुत सारी पोइट्री है सज्जाद अली लाडला की हम तक पहुंची। और वाजी वाह का कमाल अंदाज बयान सर, बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाडला। हम इतने परेशान थे कि हाल दिल सोजा उनको भी सुनाया जो गमख्वार नहीं थे। क्या बात है जनाब, ऐसे ही होता है कभी कभी, हम उनको भी अपना दर्द सुना देते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती कि वो जो हमें महसूस, जो हमें, जिनके बारे में हमें पता होता है कि वो हमारे हमदर्द नहीं है, ऐसे ही है ना। ओके जनाब, एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बल्कि इससे पहले कि कॉल की तरफ बढ़े, अरसलान अरशद राजपूत का मैसेज हमसे हमारे पास पहुँचा है, जिन्होंने SGD लिखा, मेरे ख्याल सरगोदा लिखा आपने, इस वक्त शेखपुरा में सुन रहा हूँ आपको और सब सुनने वालों को सलाम एंड एडवांस वोटिंग तहत इंडिपेंडेंस डे की मुबारक इन्होंने दी है आपको।

0: भी बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अरसलान, आपके 2 SMS हम तक पहुंची हैं, तो कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है आप
0: जी? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद शहजाद, कैसी है? ठीक ठाक है।
1: हाँ, आपकी दुआएं माशाल्लाह बहुत अच्छा, बेहतर हो गया हूँ। कल तो मैं जब गया ना दवाई लेने डॉक्टर के पास, तो उसने मुझे चेक किया, कहता 103 बाहर है। कहता क्या दोबारा चेक करो, पहले भी 200-250 थी, अब तो थोड़ा कम हो गया। ये बात है, तो आप जब हम शो सुनते हैं ना, यकीन माने आप काफी तबीयत बेहतर हो गई है, और आपका इंतजार था आपसे बात करनी है। तो जो आपने जो मौजू रखा है टॉपिक, उस पे ये मुझे तो ये दिन में आ रहा है, जीने की मुझे भी है आरजू, दौड़ता है इन रगों में भी लहू। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, क्या कहूँ ऐ दुनिया वालों, क्या हूँ
0: मैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद, थैंक यू।
1: बहुत अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, सबको मेरा सलाम जी, बहुत बहुत
0: अल्लाह हाफिज़ होके जी। किसी सूरत मुसाफत में कमी होने नहीं देते, शजर बेदर्द हैं चौंग घनी होने नहीं देते, शजर बेदर्द हैं चौंग घनी होने नहीं देते, सहर होते ही हर जानिब धुआं सा फैल जाता है, ये बादल इस नगर में रोशनी होने नहीं देते। रोज़ शब हमें आजाज पे आजाज देते हैं, मगर एहसास से जिल्लत में कमी होने नहीं देते, ताल्लुक कुछ भी हो कायम हद फासल तो रहती है, वो हमसे दोस्ती या दुश्मनी होने नहीं देते हैं, वो हमसे दोस्ती या दुश्मनी होने नहीं देते हैं।
2: तो रहे हो मुझे तुम,
0: वो हमको नित नए ख्वाबों के आईने दिखाते हैं, मगर उम्मीद की सूरत गिरी होने नहीं देते, उसे जाने नहीं शहजाद देते हम तसव्वुर से कभी वीरां, हम दिल की गली होने नहीं देते।
2: मुझे
0: तुम सामने प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, यकीनन आज के प्रोग्राम को भी आपने पसंद किया होगा, और अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो उससे मैं आपसे उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ।

एक और शेर सुन लीजिए, वो बेहसी है मुसलसल शिकस्त दिल से मुनीर, वो बेहसी है मुसलसल शिकस्त दिल से मुनीर, कोई बिछड़ के चला जाए गम नहीं होता। वो बेहसी है मुसलसल शिकस्त दिल से मुनीर, कोई बिछड़ के चला जाए गम नहीं होता। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने आरजे वसीम अहमद को डेढ़ दो में डेढ़ दफा याद रखिएगा, मैं भी आपको डेढ़ दो में डेढ़ दफा याद रखने की कोशिश करूंगा। कोशिश इसलिए कि कोशिश अक्सर कामयाब होती है। अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।

संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।